ये आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का FM सेंसिटिव चैनल है। FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की सातवीं तिथि, तदनुसार 28 मई 2026 सवेरे के 5:57 हो रहे हैं। हमारी आज की ये सभा आरंभ होती है।

0: जी आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का एफएम सेंसिटिव चैनल है। सवेरे के 6 बजने को अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित ना रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में जो FCI का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनमें डीलर्स का रेमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगे। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली

0: में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन ने बकरी ईद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर टू मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेंगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: जी आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का एफएम संसदीय चैनल है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वंदन भार, विविध भारतीय राष्ट्रीय प्रसारण सेवा से अनुप्रसारित।
2: यह है विविध भारती।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन। भर्तृहरि के नीतिक शतकम के अनुसार विद्वान होने पर भी दुष्ट मनुष्य सर्वथा परित्याग करने योग्य होता है, क्योंकि जैसे मणि धारण करने से सांप की भयंकरता कम नहीं होती, वैसे ही विद्या से अलंकृत दुर्जनों की स्वाभाविक दुष्टता का नाश भी कभी नहीं होता। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत। सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से थोड़ी देर में सुबह 6:35 से सुनेगा श्री रामचरितमानस गान भाग 202। सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से आपको सुनवाएंगे संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला कर्नाटक संगीत पद्धति के राग। कलाकार हैं शकुंतला नरसिंहन। आज श्रृंखला की 6 कड़ी आप सुन सकेंगे। भूले बिसरे गीत, ये कार्यक्रम 7 बजे से।

सुबह 7:30 से सुनेगा हम हैं राही प्यार के, 8:15 से सुनवाएंगे त्रिवेणी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सुबह 8:30 से चित्रलोक, सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से सुनेगा आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा निर्देशक महबूब खान पर। आज सुबह 10 से पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान, इसके अंतर्गत आप सुनिएगा डॉक्टर सुनीता दुबे से यूनुस खान की बातचीत, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। सुबह 11 रात्रि 11 से रंग तरंग, दिन में 12:05 से यादों की महफिल।

दोपहर 1 बजे से सुरीला सफर, दोपहर 2 बजे से त्रिवेणी, 2:30 से आपको सुनवाएंगे दो सदाबहार नगमे। सखी सहेली इस कार्यक्रम का वक्त होता है दोपहर 3 बजे से। इसके अंतर्गत अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत के चलमल नारियल अम्मा की कहानी, मुझे कुछ कहना के अंतर्गत गेमिंग का दलदल, उपयोगी टिप्स के अंतर्गत किचन टिप्स। संवादक हैं सोनाली पाठक और आरती श्रीवास्तव, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। शाम 4 बजे से हेलो फरमाइश, संवादक हैं मंदाकिनी जोशी, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। छाया गीत का पुनर्प्रसारण आप सुनते हैं शाम 5:30 से सुनेगा तराने नए पुराने। झरोखा शाम 6:30 से, 6:35 शाम संध्या रंजन। जयमाला सुनवाएंगे शाम 7 बजे से। शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए के अंतर्गत अभिनेत्री प्रकृति नौटियाल से यूनुस खान की बातचीत सुनेगा प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवाई। रात्रि 8 बजे से हवा महल के अंतर्गत नाटक यादों की परछाइयां भाग 4, लेखन सुरेंद्र गुलाटी का, निर्देशन दीनानाथ। रात 8:15 से चित्रलोक, रात 9 बजे से आपके लिए, और रात्रि 10 बजे से सुनिएगा छाया गीत, आलेख एवं स्वर संगीता श्रीवास्तव, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात 10:30 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम ढलती जाए रात।

तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचकर भरत पुलकित हैं। हृदय में श्री राम सीता और लक्ष्मण के लिए उमड़ते स्नेह से आंखों में आंसू उमड़ आए हैं। निर्दोष भाव से वे भरद्वाज जी के सम्मुख अपने उद्गार प्रकट करते हैं। उन्हें अपनी माता कैकेयी की करनी का कोई विषाद नहीं है और न ही पिता के निधन का शोक है, क्योंकि दिवंगत महाराज का पुण्य और सुयश समस्त जगत में विदित है। जिन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र पाए और पुत्र विरह में नाशवान शरीर त्याग दिया, ऐसी पुण्यात्मा के लिए शोक करना तो उसकी मर्यादा के प्रति अपमान होगा। भरत को सोच इस बात का है कि राम लक्ष्मण तथा सीता मुनियों का वेश धारण कर वन वन फिर रहे हैं, वलकल वस्त्र पहनते हैं, कंदमूल का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछा कर सोते हैं और वृक्षों की छाया में सर्दी गर्मी वर्षा और हवा के झोंके सहते हैं। इसी दुख से भरत की छाती फटती है, न भूख लगती है न नींद आती है। इस दुख का निदान उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देता। निदान मात्र एक है, श्री राम को अयोध्या लौटा लाना।

0: श्रोताओ, संगीत सरिता कार्यक्रम में आजकल आप सुन रहे हैं शकुंतला नरसिम्हन द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम, जिसमें चर्चा की जा रही है कर्नाटक संगीत पद्धति में स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों के बारे में। कल आपने सुना था राग धनाश्री, आज प्रस्तुत है राग दरबारी।
1: नमस्कार श्रोताओं, संगीत सरिता में इस श्रृंखला को पेश करते हुए मुझे बहुत ही खुशी होती है। आज प्रस्तुत कर रही हूँ स्वाति तिरुनाल महाराजा द्वारा हिंदी में रचित एक और कृति, और आज का राग है हिंदुस्तानी पद्धति का दरबारी कानड़ा। इस बंदिश के बोल हैं, देवन के पति इंद्र, तारा के पति चंद्र, विद्या के पति गणेश, दुख भार हारी। वैसे तो राग और भाषा उत्तर भारतीय है, लेकिन रचनाकार दक्षिण के और बंदिश का विभाजन भी कर्नाटक पद्धति के अनुसार पल्लवी और अनेक चरणों के रूप में किया गया है। इस कृति को आपके सामने रखने से पहले जरा साहित्य के बारे में दो शब्द कह दूं। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते समय जो कहते हैं, उसी को दोहराते हुए महाराजा स्वाति तिरुनाल कहते हैं, देवन के पति इंद्र, तारागण में सबसे उत्तम है चांद, मुनिजन में अग्रणी है व्यास ऋषि, और वाद्यों में सबसे उत्तम है वीणा, रागों में सबसे सुंदर है दरबारी कानड़ा। तो ऋतुओं में वसंत ऋतु सबसे सुहावना है, पक्षियों में अति सुंदर हंस पक्षी है, तो मनुष्यों में अवधवासी राम सबसे उत्तम है, पहाड़ों में हिमालय, तो तीनों लोक के पति पद्मनाभ अर्थात विष्णु है। महाराजा स्वाति तिरुनाल ने अपने कृतियों में पद्मनाभ इस शब्द को मुद्रा के रूप में जोड़ा है। कभी पद्मनाभ के जगह कमलनाभ, जलजनाभ भी कहते हैं, लेकिन अर्थ तो सबका एक ही हुआ, यानी कि सब विष्णु के अनेक नाम हैं। तो अब सुनिए राग दरबारी कानड़ा में स्वाति तिरुनाल महाराजा द्वारा रचित एक हिंदी भाषा की कीर्तना।

0: राग दरबारी पर आधारित ये गीत हमने लिया था फिल्म मेरे हुजूर से, आवाज थी मन्ना डे की। स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों की चर्चा कर रही हैं शकुंतला नरसिम्हन। उसी कड़ी में आज आप सुन रहे थे राग दरबारी कानड़ा।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं मुकेश की आवाज में अंदाज़ फिल्म के गाने के साथ। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं नौशाद।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में आन फिल्म का गाना। गीतकार थे शकील बदायूनी और संगीतकार नौशाद। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: सुनिए,
2: कहिए, सुनिए एक खुशखबरी,
3: कहिए ना।
2: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा

की सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।

0: घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
0: कलियां। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में अमर फिल्म का गाना। इसे लिखा है शकील बदायनी ने और संगीत से संवारा है नौशाद ने।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। लीजिए सुनिए तनवीर नकवी का लिखा और नौशाद का संगीत बद्ध किया गाना। आवाज है नूरजहां की, फिल्म का नाम अनमोल घड़ी।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में बरसात फिल्म का गाना। इसे लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत से संवारा शंकर जयकिशन ने।

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
3: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भोले बिसरे गीत। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश सुरैया की आवाज में बड़ी बहन फिल्म से, गीतकार हैं कमर जलालाबादी और संगीतकार हैं हुस्नलाल भगतराम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम हैं राही प्यार के। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में मदर इंडिया फिल्म के गाने के साथ। शकील बदानी है गीतकार और संगीतकार है नौशाद।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं। सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लूं।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है।

0: है इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
1: सखी सहेली।
2: भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। लीजिए अब सुनिए शकील बदायनी का लिखा और नौशाद का संगीतबद्ध क्या गाना। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम सन ऑफ इंडिया।

बीमार मोहब्बत का बस इतना सा फसाना है। ये गाना अभी आप सुन रहे थे तीसरी गली फिल्म से, आवाजें थी हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की, मजनू सुल्तानपुरी ने लिखा था इसे और संगीत से संवारा था चित्रगुप्त ने। लीजिए अब सुनिए हसरत जयपुरी का लिखा और दत्ताराम का संगीतबद्ध किया गाना, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे की, फिल्म का नाम संतान।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में सावन फिल्म का गाना, गीतकार हैं प्रेम धवन और संगीतकार हैं हंसराज बहल।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में प्यार की राहें फिल्म का गाना। गीतकार थे प्रेम धवन और संगीतकार कनु घोष। अब आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में मैंने जीना सीख लिया इस फिल्म से। इसे लिखा है आनंद बख्शी ने और तर्ज है रोशन की।

मैंने जीना सीख लिया इस फिल्म के गाने के साथ ही आज का हम है राही प्यार के कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का एफएम सेंसिटिव चैनल है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर सवेरे के 8 बजने को है। कुछ क्षणों में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार प्रभात सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है।

0: मतलब सोलर पैनल की मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर
2: हर घर सूर्य घर
3: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया बैठक में रेलवे बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतर्राज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है श्री मोदी ने सहयोग समय पर मंजूरी प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतरराज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध जल संरक्षण भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके अनुपम मिश्र आकाशवाणी समाचार दिल्ली
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं
5: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेनदेन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया समाचार कक्ष से आनंद पाठक
3: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे
6: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि सीएसआर पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे जिनमें जेड़वा गांव की झील 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें आगामी ओलंपिक राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी अपर्णा खूंट आकाशवाणी समाचार अहमदाबाद
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में जो FCI का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई हैं। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल है। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।
2: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्तस्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
3: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव गोयल, आकाश भोपाल।
0: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
4: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद

ईद-उल- अज़हा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को

0: उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंज बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद जागृति। एसआईआर पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में खामी नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा एसआईआर। पंजाब केसरी ने लिखा है, शीर्ष न्यायालय के अनुसार नागरिकता की भी जांच कर सकता है चुनाव आयोग। वीर अर्जुन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता दी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अवैध ढांचा को ध्वस्त करें। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले पर खबर दी है। ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को, सीबीएसई ने कहा ये झूठ। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, घरेलू उड़ानों में 22% कटौती करेगी एयर इंडिया। एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27% कमी की घोषणा के 2 सप्ताह बाद ये फैसला किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है, कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ओजोन में अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे मानसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देशबंधु ने ईरानी मीडिया के दावे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, अमेरिका ईरानी क्षेत्र से हटाएगा सेना, खुलेगा हॉर्मुज, संभावित समझौते पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका ने बिहार में एक अनोखी पहल को प्रकाशित किया है, अब ऑन ड्यूटी सब परिवार घूमने जाएंगे सरकारी बाबू। हर 3 महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलिडे, सैलरी भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। अमर उजाला ने मौसम को अहमियत दी है, नौतपा में तप रहा उत्तर भारत, कल से राहत मिलने की उम्मीद।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देशभर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का एफएम सेंसिटिव चैनल है, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत के आगाज में आपने सुना सोनू निगम और सुनिधि चौहान के युगल स्वरों में अरमान फिल्म का गीत। गीत जावेद अख्तर का था, संगीत शंकर एहसान लॉय का।

चिकन करी लॉ फिल्म का ये गीत है, जसप्रीत बजवा की आवाज है, गीत है राजेश मंथन का, संगीत शेखर श्रीलंका।

श्रोता आनंद उठा रहे थे फिल्म संगीत का। ये आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का एफएम सेंसिटिव चैनल है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर सवेरे के 8:30 हो रहे हैं। अब समय है हमारे नियमित कार्यक्रम नमस्कार का, जिसे हम हमारे प्राइमरी चैनल सूर्यनगरी से रिले करेंगे।

0: जय हो शुभ हो माय डियर रेडियो लवर्स, शुभ वाणी लाभ वाणी मधुर वाणी और साप सब की फेवरेट वाणी आकाशवाणी जोधपुर पर शुरू हो चला है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम। नमस्कार,
1: दोस्तों सवेरे के 8:30 हो चुके हैं और इस वक्त आप जुड़ जाते हैं रेडियो सेट के जरिए हमसे और हम आपके लिए लेकर आते हैं ढेर सारे गीतों का खजाना, साथ ही साथ बहुत सारी जानकारियां और प्यारी प्यारी बातें उसी प्रोग्राम पे जिसका नाम है नमस्कार।
0: दोस्तों जैसा कि हमने बात की कि हम इस प्रोग्राम में करते हैं प्यारी प्यारी बातें, तो सबसे पहले एक प्यारी बात ये बताते हैं आपको कि जिंदगी इतनी साफ नीयत से जियो कि अगर कोई तुमसे कहे ना कि तुम्हारे कर्म ही लौटकर तुम्हें मिलेंगे तो हमें डर नहीं सुकून महसूस हो।
1: जी हाँ, इतनी प्यारी बात के बाद अब करवा देते हैं आपको हमारी क्रिएटिव टीम से परिचय। तो हमारी टीम में ट्रांसमीटर HPT पर है नरेंद्र सिंह राठौर और कैलाश चंद्र सोलंकी। FM ट्रांसमीटर पर है CL सोनी।
0: कंट्रोल रूम से प्रोग्राम को टेक्निकली कंट्रोल कर रहे हैं इंजीनियर प्रवीण कुमार।
1: अनाउंसर ऑन ड्यूटी प्राइमरी चैनल से है मोनिका हमारे साथ में और FM से साथ निभा रही है रेखा भाटिया।
0: कार्यक्रम का संयोजन किया है राजेश लामरोड ने और प्रस्तुत करता है संजय व्यास।
1: साथ ही आपके साथ हैं दो साथी, मैं अर्चना चौहान
0: और न्यू नूतन सोनी।
1: और आज के दिन में बहुत कुछ है खास क्योंकि आज है ईद का त्योहार। जी हाँ, आप लोगों को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद और ढेर सारा प्यार, क्योंकि जो ये ईद है ना वो अपने साथ लेकर आती है ढेर सारी खुशियाँ और साथ ही साथ एक बात कि जो ये बलिदान है वो आपका कभी जाया नहीं जाएगा। तो आप सभी को ईद उल अदा की ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है। कहां कहां इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

श्रोताओं, जैसा कि हमने बताया कि आज का दिन बहुत ही पाक और बहुत ही खास है, क्योंकि आज है ईद उल अधा, यानी कि बलिदान का त्यौहार। दोस्तों, इस्लाम धर्म में ना विश्वास करने वाले लोगों का ये एक बहुत ही खास त्यौहार है।

0: और रमजान के पवित्र महीने की समाप्ति के लगभग 70 दिनों के बाद इसे मनाया जाता है।
1: जी हाँ, इस्लामिक मान्यता के अनुसार हजरत इब्राहिम अपने पुत्र हजरत इस्माइल को इसी दिन खुदा के हुक्म पर खुदा की राह में कुर्बान करने जा रहे थे, लेकिन अल्लाह ने उनके पुत्रों को जीवन दान दिया और उन्हीं की याद में मनाया जाता है ये पर्व, जिसे कहा जाता है ईद उल अजहा। और ईद उल अजहा का मतलब ही होता है कि आप कोई भी व्यक्ति जब नेकी की राह पर चलता है तो उसकी राह में ढेर सारी मुश्किल आते हैं और जो इन मुश्किलों से डटकर मुकाबला करता है आखिर में जीत उसी की होती है।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायक हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
3: RGHS व चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायक हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
4: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

डियर लिसनर्स, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि जिंदगी को साफ नियत से जीना चाहिए, ताकि अगर हमें कोई कहता है कि तुम्हारे कर्म ही लौटकर तुम तक आएंगे तो हमें डर नहीं सुकून महसूस हो। तो ये जो डर है ना जिंदगी में, तो इसको तो बिल्कुल हटा ही देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि कहते हैं कि इंसान की सबसे जो बड़ी कमजोरी है वो होती है पैसे की। बल्कि कहते हैं कि पैसा नहीं है तो आप जो है जिंदगी में बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। हमारी जो कमजोरी है वो होती है टूटे हुए हौसलों से। जिस दिन मन में से डर निकल जाता है उसी दिन जिंदगी खूबसूरत लगने लगती है। हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि चार्ली चैपलिन, जो दुनिया को हंसाने वाला एक महान कलाकार, जिसकी अपनी जिंदगी कहते हैं कि दोस्तों आंसुओं से भरी हुई थी। बचपन में उनके पास अच्छा घर नहीं था, न भरपेट खाना था, न ही तमाम सुख सुविधाएं थी। कई रातें ऐसी गुजरती थी दोस्तों जब पेट में भूख होती थी और आंखों में भविष्य का डर। लेकिन उन्होंने अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी कभी भी नहीं बनने दिया। उनकी मां है ना दोस्तों, वो खिड़की पर बैठकर वहां से गुजरने वाले लोगों को देखा करती थी। उनके हाव भाव, चाल और आदतों को देखकर मन ही मन में कहानियां बनाती थी, और छोटा सा चार्ली अपनी माँ की इन बातों को बड़े ध्यान से सुनता था, ऑब्जर्व करता था। शायद वहीं से उसने जिंदगी को समझना शुरू किया, दर्द को महसूस किया और फिर उसी दर्द को अपनी ताकत बना लिया। दोस्तों चार्ली चैपलिन कहते थे, अगर आप हमेशा नीचे देखेंगे तो जिंदगी में कभी इंद्रधनुष नहीं देख पाएंगे, यानी कि जिंदगी के रंग आप देख ही नहीं पाएंगे। सोचिए, जिस इंसान के पास बचपन में कुछ नहीं था, वही आगे चलकर पूरी दुनिया के चेहरे पर मुस्कान ही बन गया, क्योंकि उसने हालात से डरना छोड़ दिया था। दोस्तों आज हम छोटी छोटी परेशानियों से टूट जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, असफल हो गए तो क्या होगा, पैसा नहीं है तो सर्वाइव कैसे करेंगे, यही डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है दोस्तों। लेकिन सच बात यह है कि जिंदगी बदलने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की नहीं, सिर्फ साहस, विश्वास और बड़ी

0: सोच की जरूरत होती है। याद रखिए, मुश्किलें हमेशा जो है फिक्स नहीं रहती, स्थाई नहीं होती जीवन में। अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर होता है, इसलिए अपने सपनों से मत भागिए, डरिए मत, उन्हें जिंदा रखिए, खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि एक दिन वही संघर्ष जो है आपकी सबसे बड़ी पहचान बनेगा और शायद तभी जिंदगी सच में खूबसूरत हो जाएगी।
1: दोस्तों, चार्ली की ये जिंदगी बहुत खूबसूरत थी क्योंकि उन्होंने इसे बनाया था, और इसीलिए कहा भी जाता है कि हौसलों की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

दोस्तों जिंदगी के हौसलों की बात हम कर रहे थे और उसमें एक चीज बहुत जरूरी है, वो है आपकी नेक नियत। कहा जाता है कि इंसान अगर नेक नियत से कोई उम्मीद करता है तो वो उम्मीद हमेशा पूरी होती है। और अगर आप किसी और के जीवन को अच्छा बनाने के लिए दुआ मांगते हैं तो आपकी ज़िंदगी भी संवर जाती है। अगर आप किसी और के लिए अच्छा करते हैं तो आपके कर्म भी अच्छे होने लगते हैं। और जहाँ तक कि दुआ

0: श्रोताओं 9 बज रहे हैं, हम एक न्यूज ब्रेक के लिए रुकेंगे और फिर से लौटेंगे इस कार्यक्रम में 9:10 पर।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी और एफएम सन सिटी चैनल है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। समाचारों के लिए कीजिए थोड़ी देर प्रतीक्षा।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया। ईद उल अजहा का पर्व प्रदेश भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है।

प्रदेश में भीषण गर्मी और नौतपा के असर से जनजीवन प्रभावित, 5 शहरों का पारा 46 के पार। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से शिकस्त दी।

समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा है कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जन भागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों के निर्माण में तेजी लाने का आग्रह किया। बैठक में प्रधानमंत्री ने 9 राज्यों में रेलवे, विद्युत और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत की बुनियादी सुविधाओं की 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन के इस कार्यक्रम में कृषि और संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विषयगत चर्चाएं, राज्यवार भागीदारी तथा प्रस्तुतियां शामिल होंगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ मौसम के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। ये आयोजन खरीफ के मौसम की तैयारियों, कृषि उत्पादकता, मौसम की मार से निपटने के लिए जलवायु अनुकूल खेती, प्राकृतिक खेती, दलहन और तिलहन उत्पादन, डिजिटल कृषि और जोखिम प्रबंधन पर केंद्रित चर्चाओं के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रदेश में भी घर घर कुर्बानी की रस्म अदा की जा रही है। राजधानी जयपुर की जामा मस्जिद सहित अन्य प्रमुख मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई। इनमें बड़ी संख्या में अकीदतमंद पहुंचे और देश में अमन चैन की दुआ की। मुख्य काजी खालिद उस्मानी ने सभी नागरिकों से त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भी त्योहार का उत्साह देखा जा रहा है। भीलवाड़ा, बाड़मेर, पाली, करौली, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर, झुंझुनू और चूरू सहित सभी स्थानों पर यह त्योहार अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। साथ ही पुलिस और प्रशासन ने नमाज के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये त्योहार नागरिकों को मानवता और विशेषकर वंचितों की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुभकामनाएं देते हुए सभी की सफलता और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना की है। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी परिपत्र जारी किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव कल तक स्वीकार किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर।

0: और अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी और नौतपा के असर से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। दिन के साथ रात के तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों में 5 शहरों का अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस श्रीगंगानगर का दर्ज किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि यहां आम नागरिकों के अलावा पशु पक्षी भी गर्मी और लू से बेहाल नजर आ रहे हैं।
1: भीषण गर्मी का असर लगातार जारी है। बुधवार को इस सीजन का सबसे अधिक तापमान 48 डिग्री दर्ज किया गया। भीषण गर्मी के चलते रात को भी लोगों को राहत नहीं मिल पाई। दोपहर के समय शहर की सड़कें सुनसान नजर आई। भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था की गई है। लोगों को रात को भी गर्मी से राहत नहीं मिल पाई। गर्मी के इस दौर में शीतल पेय और खाद्य पदार्थों की मांग में भारी इजाफा हुआ है। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर।
0: भरतपुर में भी बढ़ती गर्मी की वजह से शहर में अघोषित कर्फ्यू देखा जा रहा है। जैसलमेर में प्रचंड गर्मी के साथ साथ बिजली कटौती भी जनजीवन को बेहाल कर रही है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी जिलों में अगले 2-3 दिन तक भीषण गर्मी और उष्ण रात्रि का दौर जारी रहने की संभावना है। वहीं पूर्वी जिलों में आंधी और बारिश से राहत मिलने के संकेत हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज से प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम बदलना शुरू होगा। कल से 31 मई के बीच जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ क्षेत्रों में तेज अंधड़ और कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। इसके चलते तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। इधर राज्य सरकार भीषण गर्मी में आमजन, विशेषकर राहगीरों और मूक पशु पक्षियों के लिए पेयजल और छाया की व्यवस्था सुनिश्चित करने के पुख्ता बंदोबस्त कर रही है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने गत दिनों परिपत्र जारी कर सभी जिला कलेक्टर, स्थानीय निकाय और संबंधित विभागों को ग्रीष्मकाल के दौरान पशु पक्षियों को तेज गर्मी और लू से बचाने तथा उनके लिए पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। मुख्य सचिव ने कल शासन सचिवालय में पीपल के 11 वृक्षों पर दाने और पानी के लिए परिंडे बांधे। राज्य में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इन गतिविधियों का उद्देश्य इस अभियान से ज्यादा लोगों को जोड़ना और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसी कड़ी में सवाईमाधोपुर में आज CSR कार्यशाला आयोजित की जाएगी। जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में होने वाली इस कार्यशाला में औद्योगिक संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं और औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। कार्यशाला के माध्यम से इन इकाइयों और संस्थाओं को जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण तथा सतत विकास से जुड़ी गतिविधियों में सक्रियता सहभागिता के लिए प्रेरित किया जाएगा। करौली में स्वच्छता और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पौधरोपण, गौ पूजन और रणगमा ताल पर दीपदान किया गया। जैसलमेर में स्वच्छता संरक्षण और जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए और पेयजल स्रोतों की साफ सफाई कराई गई। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में कल रात राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। न्यू चंडीगढ़ में पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद की टीम अंतिम ओवर में 196 रन पर ही ऑल आउट हो गई। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में शानदार 97 रन की पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में कल दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम का मुकाबला रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया। ईद उल अजहा का पर्व प्रदेश भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। राज्य में भीषण गर्मी और नौतपा के असर से जनजीवन प्रभावित, 5 शहरों का पारा 46 के पार। और IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से शिकस्त दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: कार।
1: श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार के बाद आपका फिर से स्वागत है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में।
2: और नमस्कार में आज आपके साथ है दो साथी अर्चना और
1: न्यू नूतन सोनी।
2: जी हाँ, हम बात कर रहे थे जिंदगी की, और जिंदगी हर पल हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, हर पल हमें बताती है कि जिंदगी जिंदा दिली से जीने का नाम है। और इसलिए कहा जाता है कि जिंदगी एक उपहार है, कबूल कीजिए। जिंदगी एक एहसास है, महसूस कीजिए। जिंदगी एक दर्द है, बांट लीजिए। जिंदगी एक प्यास है, प्यार दीजिए। जिंदगी एक मिलन है, मुस्कुरा लीजिए। जिंदगी अगर जुदाई है तो थोड़ा सब्र कीजिए। जिंदगी आखिर जिंदगी है, और इसे जी भर के

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दुनिया का सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न सुख एक तरफ,
2: निसंतान दंपतियारे जीवन में खुशियाँ री उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
3: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन, डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
4: पथरी, प्रोस्टेट, गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्ला स्टेडियम के सामने, जोधपुर। मोबाइल 9829027065।

के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: लेखक इयान फ्लेमिंग का जन्म हुआ था। और बात करें 1959 की, तो दो अमेरिकी बंदरों ने अंतरिक्ष की सफल यात्रा की थी।
1: जब यात्रा की बात कर रहे हैं तो 1967 की बात भी कर लेते हैं, जब 65 साल के ब्रिटानी नाविक सर फ्रांसिस चिटचेस्टर ने अकेले नाव में दुनिया का एक चक्कर लगाया था और घर पहुंचे थे आज ही के दिन यानी 28 मई के दिन।
0: और 1996 में रूस चेचेनिया को अधिकतम स्वायत्तता देने पर सहमत हुआ।
1: वहीं 28 मई 1998 का वह दिन था जब बलूचिस्तान की चगाई पहाड़ियों पर पाकिस्तान ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे और परमाणु परीक्षण के विरोध में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाक के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाया था आज ही के दिन।
0: और 1999 में बेंजामिन ने तान्यादू का संसद में इस्तीफा दिया और इसी के साथ तुर्की में नई गठबंधन सरकार का गठन हुआ।
1: इतिहास के पन्नों में थोड़ा पीछे चलते हैं और बात करते हैं 1414 की, और इस दिन खिजर खान ने दिल्ली की सल्तनत पर कब्जा किया और सैयद वंश के शासन की नींव रखी थी। वहीं दोस्तों आज के दिन को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ इस तौर पर, और इस दिन महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े अधिकारों को समग्र कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। साथ ही मासिक धर्म से जुड़ी जो सामाजिक रूढ़ियां हैं उसको तोड़कर स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाती है आज ही के दिन। था आज का इतिहास।

जी हाँ दोस्तों, चांद नज़र आ चुका है और साथ ही साथ ईद का भी डिक्लेयर हो चुका है और आज मना रहे हैं हम ईद उल अदा। और ईद उल अदा के साथ में अब बात कर लेते हैं आज के इतिहास की, यानी आज है 28 मई का दिन और आज का इतिहास क्या कहता है आपसे।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: सो अल्लाह हाफिज रहे तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में थकान नाम की चीज़ आ जाए तो ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। और आज काम की बात में हम आपके लिए लेकर आए हैं थकान से जुड़ी कुछ जानकारियाँ।
1: बिल्कुल दोस्तों, आपने नोट किया होगा कि आजकल एक प्रॉब्लम बहुत ही स्पीडली बढ़ रही है कि लोग बहुत ही जल्दी थकान, कमजोरी और लो एनर्जी फील करते हैं, और वो भी बिना कोई ज्यादा काम किए, है ना। आप भी खुद को रिलेट कर रहे होंगे इस बात से। सुबह उठते ही शरीर भारी लगना और फिर पूरे दिन सुस्ती रहना और काम में मन नहीं लगना।
0: जी हाँ नूतन, जब भी ऐसा लगता है कि भाई हम अब काम करने वाले हैं, लेकिन जो मन है वो ये कहता है कि यार थक गए हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए।
1: दोस्तों, और बिल्कुल ये जो केवल फास्ट लाइफस्टाइल का ये नतीजा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा रीजन है, और वो ये है कि विटामिन की कमी। और ये कमी इसलिए होती है क्योंकि हम बैलेंस डाइट अर्चना नहीं लेते हैं।
0: बिल्कुल, बैलेंस डाइट हमारे उसका हिस्सा नहीं होता, और विटामिन्स की जो कमी होती है वही थकान का कारण बनती है।
1: हाँ, और फिर ऊपर से हम ये करते हैं कि जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, भाई साहब हम रुकते नहीं है, हम पेटू हैं, हम खाते ही चले जाएंगे। और फिर फिजिकल एक्टिविटी की कमी, धूप की कमी, ये सब कारण हमारी बॉडी के लिए जरूरी विटामिन की कमी पैदा करते हैं, जिससे थकान के साथ साथ ही बाल झड़ने लगते हैं, हड्डियों में दर्द होने लगता है, और सबसे बड़ी बात, हम कंसंट्रेट करने में कठिनाई महसूस करने लगते हैं, विच इज वेरी बैड।
0: विटामिन की कमी से हमारे साथ में इतनी सारी परेशानियां होने शुरू हो जाती है।
1: बिल्कुल। तो सो फ्रेंड्स, हमारी जो बॉडी के सही तरीके से काम करने के लिए कई तरह के विटामिन और मिनरल्स उस पर निर्भर करते हैं, जैसे कि विटामिन B12, विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत से। और जब इनकी कमी हो जाती है ना, तो हमारा जो एनर्जी लेवल है वो बहुत इफेक्ट होता है, जिससे हम थक जाते हैं और भरपूर कमजोरी महसूस होने लगती है।
0: तो नूतन, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि हम थकान भी महसूस ना करें और ये जो भी कमियां हैं उसको हम पूरा कर सकें?
1: तो जो पहला उपाय मैं बताने वाली हूँ उससे तुम एकदम चौंक जाओगे, श्रोता भी चौंक जाएंगे कि क्या कह रही है सूर्य नगरी में बैठे बैठे। तो सबसे पहले जो है रोजाना थोड़ी देर धूप में बैठना होगा। मतलब मैं दिन के जो सूर्यदेव तपते हैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, सुबह जल्दी उठ के जो उगता हुआ सूर्य होता है, ठंडी हवा के साथ आप जो है थोड़ी सी जो धूप होती है उसको जरूर जो है लें, वो आपके लिए विटामिन डी आपको देगी, वो आपके लिए बहुत ही जरूरी है श्रोताओं। और पर्याप्त पानी जरूर पिए, और डाइट में हरी सब्जियां, फल, दालें, नट्स और सीड्स जरूर शामिल करें, और डॉक्टर की एडवाइस से सप्लीमेंट्स भी लें। और हाँ, सबसे ज्यादा जरूरी, इस थकान को नजरअंदाज कभी ना करें।

0: दोस्तों वायरस जो अगर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में आ जाए तो उसको भी इफेक्ट करता है, और यदि हमारे बॉडी में भी आ जाए तो हमारी बॉडी को भी इफेक्ट करता है। ऐसे ही आज हम खास बात करते हैं जिसमें हम वायरस की बात करते हैं, और वो वायरस है
1: इबोला वायरस। जी हाँ, अभी एक शब्द बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है और वो शब्द है इबोला वायरस का। और देश जो हमारे बहुत कहते हैं ना अफ्रीका के देश हैं, वहाँ पर इस वायरस के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो हम जानकारी देते हैं आज खास बात में आपको इबोला वायरस के बारे में। इबोला वायरस एक बेहद दुर्लभ और गंभीर संक्रामक बीमारी है जो मनुष्य में हेमोरेजिक बुखार यानी रक्तस्राव का कारण बनती है। यह वायरस हवा में नहीं फैलता बल्कि संक्रामक व्यक्ति या जानवर के शारीरिक तरल जिसमें लार, रक्त, पसीना और इनके सीधे संपर्क में आने से तेजी से फैलता है। इसके लक्षण 2 से 21 दिनों के भीतर दिखाई देते हैं। और इसके लक्षणों की बात कर ली जाए दोस्तों, तो इनके जो इबोला वायरस के लक्षण हैं वो है अचानक तेज बुखार आना, अत्यधिक थकान महसूस करना और कमजोरी महसूस करना, सिर दर्द, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी दस्त, पेट दर्द, और इस तरह की जो रोग अगर गंभीर स्थिति में चले जाएं तो नाक, मुंह और मल के रास्ते से आंतरिक या बाहरी

रक्तस्राव शुरू हो जाता है। और इस रोग की जो कई जगह इसके जो देखे जा रहे हैं वो है मध्य और पूर्वी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में ये तेज़ी से फैल रहा है, इसलिए वहाँ से आने वाले यात्रियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। और अगर इसके बचाव के लिए बात की जाए तो रोगियों के शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क में आने से बचना चाहिए, हाथों को बार बार साबुन या पानी या अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर से साफ करना चाहिए, शरीर में पानी की कमी बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए और साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी भी नहीं होने देना चाहिए। समय पर जो चिकित्सक है, अधिकृत चिकित्सक, उससे सलाह लेनी चाहिए और जो WHO द्वारा निर्देश पारित किए गए हैं उनकी पालना करनी चाहिए। और अगर बात की जाए इबोला वायरस के वाहक की तो इसका वाहक एक चमगादड़ ही है, जैसे कि कोरोना वायरस का था, लेकिन यह चमगादड़ है वो है फ्रूट बेट्स, यानी कि जो फलों को खाने वाले जो चमगादड़ हैं वो। हालांकि हमारे देश में इसके कोई भी सिम्टम्स नहीं हैं, ना कोई रोगी अभी तक मिला है, लेकिन जो बाहर से आने वाली फ्लाइट्स हैं उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। और कहा जाता है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए सचेत रहें और किसी चीज़ की जानकारी आपको हो तो आप उससे बच सकते हैं, इसलिए इबोला वायरस की जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास बात में आपके लिए हम लेकर आए थे आज इबोला वायरस।

0: श्रोताओं, आज है गुरुवार का दिन और गुरुवार के दिन हम आपसे करते हैं हमारे पर्यावरण की बात। और आज पर्यावरण की बात में हम आपके लिए लेकर आए हैं वाहन प्रदूषण मानक। हम सब जानते हैं कि जो ये वाहन होते हैं वो हमारे ज़िंदगी का बहुत बेहतरीन और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन जब बात होती है इसके प्रदूषण की तो इसके लिए भी कुछ मानक तय करना बहुत ज़रूरी है। और आज के समय में सड़क पर दौड़ते हुए वाहन हमारी सुविधा तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके कारण जो प्रदूषण है वो भी बढ़ता जा रहा है और प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। ऐसे में वाहन प्रदूषण मानक यानी व्हीकल इमिशन स्टैंडर्ड्स का महत्व और भी बढ़ जाता है। और जब हम किसी वाहन से निकलने वाले धुएं की बात करें तो उसमें बहुत सारे तत्व होते हैं, जैसे कि
1: दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड और छोटे छोटे सूक्ष्म से कण जैसी हानिकारक गैसों की मात्रा जो है उसको बहुत ही सीमित किया जाना जरूरी है, और वो कर सकते हैं हम वाहन प्रदूषण मानक के द्वारा। और सरकार तय करती है कि कोई वाहन कितना धुआं छोड़ सकता है और उसका जो पर्यावरण पर बहुत बुरा असर नहीं होगा, यानी कि एक लिमिट तय कर रखी है, उसी को हम इसके अंतर्गत लेते हैं वाहन प्रदूषण मानक के अंतर्गत। और भारत की बात करें तो भारत में प्रदूषण नियंत्रण के लिए भारत स्टेज यानी कि BS नॉर्म्स लागू किए गए हैं।
0: जी हाँ, और ये नियम की शुरुआत की गई थी सन 2000 में और समय के साथ इन नियमों को कड़े किए गए ताकि वाहनों से निकलने वाला धुआं कम हो सके। वर्तमान में भारत में BS6 मानक लागू है जो पहले के मानकों की तुलना में कहीं अधिक आधुनिक और पर्यावरण हितैषी है।
1: बिल्कुल दोस्तों, और BS6 मानकों के लागू होने से डीजल और पेट्रोल वाहनों से निकलने वाले हानिकारक तत्वों में एक तरह से कमी आती है और इससे वायु गुणवत्ता सुधारने में भी हमें मदद मिलती है। और ये जो मानक है ना, केवल प्रदूषण कम करने तक ही सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि बेहतर इंजन तकनीक और ईंधन की गुणवत्ता को भी इससे बढ़ावा मिलता है।
0: जी हाँ, वाहनों से होने वाला प्रदूषण केवल पर्यावरण को ही नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। लगातार प्रदूषित हवा में रहने से दमा, एलर्जी, फेफड़ों की बीमारी, हृदय रोग और आंखों में जलन जैसी समस्याएं बढ़ जाती है। साथ ही साथ छोटे बच्चे और बुजुर्गों का इस पर सबसे ज्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अब प्रश्न

0: यह है कि इस समस्या को करने में हम क्या कर सकते हैं?
1: तो दोस्तों, सबसे पहले अपने जो व्हीकल है उसका पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी कि पीयूसी प्रमाण पत्र जरूर बनवाएं। आपने नोट किया होगा, आप आसपास कहीं भी जाते हैं तो आपको एक वैन मिलेगी जिस पर लिखा होता है पीयूसी, तो आप आसानी से वहां जाके उनसे संपर्क करें और अपनी हाथों हाथ पीयूसी बनवा लें वाहन की, और वाहन की जो है सर्विस भी करवाते रहें। और अनावश्यक रूप से यदि आप पॉइंट पे रुके हैं तो अपने गाड़ी को जो वो ड्रन ड्रन करते हुए छोड़ ना दें, उसको एक बार बंद भी किया जा सकता है। और जहां तक संभव हो तो सार्वजनिक परिवहन, साइकिल या कार का जो है उसमें जो है पुल का उपयोग जरूर करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों तथा स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने की दिशा में जरूर कदम उठाएं। और आज दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक वाहन, सीएनजी और हाइड्रोजन आधारित तकनीकों पर जोर दिया जा रहा है। भारत भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, और यदि हम अभी जागरूक होंगे तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण हम दे पाएंगे। तो आइए हम सभी मिलकर संकल्प लेते हैं कि सुविधा के साथ साथ पर्यावरण की सुविधा भी हमारी जिम्मेदारी है।

या ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: बाहर है हप हप, खाता है कोड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: चलिए श्रीमान।

श्रोताओं अब याद करते हैं पंडित दत्तात्रेय विष्णु पलुस्कर की जिनकी आज जयंती है और ये है कौन तो आइए जानते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायक थे ये और इन्हें एक विलक्षण बालक के तौर पर जाना जाता था और डीवी पलुस्कर ने अपना पहला कार्यक्रम क्या आप जानते हैं श्रोताओं महज 14 वर्ष की आयु में कर लिया था पंजाब में हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन में क्योंकि शास्त्रीय गायन में 14 साल की उम्र में प्रोग्राम देना बहुत बड़ी बात है श्रोताओं। और बात करें उत्तराधिकार की तो उत्तराधिकार में उन्हें ग्वालियर घराना और गंधर्व महाविद्यालय मिला। इसके बावजूद खास बात ये रही कि इसके साथ दूसरी शैलियों के स्वागत के लिए भी हमेशा तैयार रहते थे यानी कि वे अन्य घरानों और शैलियों की सुंदर विशेषताओं को अपनाने के लिए हमेशा ही भी रेडी रहते थे। उनकी आवाज बहुत मधुर और सुरीली थी और उनके आलाप उनके गाए राग का स्पष्ट रूप से रेखांकन करते थे यानी कि अगर आप दर्शक दीर्घा में बैठे हैं और उन्हें सुन रहे हैं तो जब वो राग गायन करते थे तो उस राग की पूरी इमेज आपके मानस पटल पर उतर आती थी। इसके बाद उनकी सहज शैली की तानों से सुसज्जित बंदिशें आती थी। उन्हें थोड़ी ही अवधि में राग का संपूर्ण आकर्षक चित्र यानी कि अट्रैक्टिव इमेज प्रस्तुत कर देते थे वो श्रोताओं के सामने। उनकी पहली डिस्क 1944 में बनी और 1955 में भारतीय सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में उन्हें चीन का दौरा करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। शुद्ध शास्त्रीय संगीत के अतिरिक्त वे महान भजन गायक भी थे। उन्हें फिल्म बेजू बावरा में उस्ताद अमीर खान के साथ एक अविस्मरणीय जुगलबंदी के लिए याद किया जाता है आपने भी जरूर सुनी होगी दोस्तों। फिर अन्य फिल्मों की बात करें तो उन्हें एक बंगाली फिल्म शाप मोचन में भी उन्होंने काम किया था।

0: साथ ही जयंती के तौर पर आज हम याद कर रहे हैं गोपाल रामानुजन को, जो एक भारतीय राजनीतिज्ञ और राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सह संस्थापक थे। आज ही के दिन 1915 तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ। भारत के रामनाथपुरम जिले के एडिकोटल गांव में उनका जन्म हुआ और भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
1: इसी के साथ ही साथ हम याद करते हैं विनायक दामोदर सावरकर को, जिन्हें लोकप्रिय रूप से हम जानते हैं वीर सावरकर के रूप में। एक भारतीय राजनीतिज्ञ और विचारक थे और सावरकर ने 1922 में रत्नागिरी में कैद होने के दौरान हिंदुत्व की हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति विचारधारा विकसित की थी, जो बाद में पूरी भारतीय जनता तक पहुंची थी। वे हिंदू महासभा के एक प्रमुख व्यक्ति थे। श्रोताओं, सावरकर ने हाई स्कूल के छात्र के रूप में ही अपनी राजनीतिक गतिविधियां शुरू कर दी थी और पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में उन्हें पूरी तरह से जारी रखा। उन्होंने और उनके भाई ने अभिनव भारत सोसाइटी नामक एक गुप्त संस्था की स्थापना की थी, यानी कि शुरू से ही क्रांतिकारी विचार के थे। जब सावरकर कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए तो वे इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे संगठनों से भी जुड़े। उन्होंने क्रांतिकारी तरीकों से पूर्ण भारतीय स्वतंत्रता की वकालत की और उनकी पुस्तकें भी प्रकाशित हुई। उनकी पुस्तक जो प्रकाशित हुई उसमें से एक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस।

अब आगे की कड़ी में हम याद करते हैं विजय सिंह पथिक को, जिनकी आज पुण्य स्मरण दिवस है। वास्तविक नाम था उनका भूप सिंह गुर्जर। पिजोलिया किसान आंदोलन का वह नाम जिसके बगैर स्वतंत्रता संग्राम की व्याख्या अधूरी मानी जाएगी। 27 फरवरी 1882 उत्तर प्रदेश में जन्मे भूप सिंह के दादा 1857 की क्रांति में वीरगति को प्राप्त हुए। उनके पिता भी हमीर सिंह जी, जो कि अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए, ऐसे परिवार से उनका नाता था। पथिक जब सचिंद्रनाथ सान्याल और राज बिहारी बोस के संपर्क में आए तो देशभक्ति की ये ज्वाला उनमें धधक उठी और लाहौर षड्यंत्र के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर रख लिया विजय सिंह पथिक। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्याग्रह से बहुत पहले उन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन की अलग जगह दी थी। इसके बाद गदर आंदोलन हुआ और राजस्थान में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। आज ही के दिन 1954 में उनका निधन हुआ। उन्होंने अपना पूर्ण जीवन मातृभूमि को समर्पित

0: श्रोताओं, आप साहित्य की तरफ थोड़ा सा रुख करते हैं और बात करते हैं गोपाल प्रसाद व्यास की, भारत के प्रसिद्ध कवियों में से एक, जिन्हें एक कवि, लेखक, साहित्यकार और व्यंग्यकार के रूप में प्रसिद्धि मिली। पंडित गोपाल प्रसाद व्यास का जन्म गोवर्धन मथुरा में हुआ था। वे ब्रज भाषा में रचनाएं लिखा करते थे। उन्हें साहित्य शास्त्र, रस, रीति, अलंकार, नायिका भेद और पिंगल का ज्ञान था। हिंदी में व्यंग्य विनोद की नई धारा के जनक रहे और हास्य रस में पत्नीवाद के प्रवर्तक माने जाते थे। हास्य रसावतार के नाम से प्रसिद्ध गोपाल प्रसाद व्यास ने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया दोस्तों, और स्तंभ लेखन भी किया। 28 मई 2005 को इनका निधन हुआ और आज के दिन हम उन्हें अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं।
1: साहित्य से अब रुख करते हैं हिंदी सिनेमा की तरफ, और हिंदी सिनेमा में आज हम याद कर रहे हैं एक ऐसे निर्माता निर्देशक को जिन्होंने विश्व पटल पर भारत को एक पहचान बनाई और उन्हें युग पुरुष भी कहा जाता है, और हम बात कर रहे हैं महबूब खान की। महबूब खान ने 3 दशक तक दर्शकों को क्लासिक फिल्मों का तोहफा दिया। उनकी बनाई फिल्मों ने देश ही नहीं विदेशों में भी नाम कमाया, और इसमें सबसे पहला नाम जो हमारे जहन में आता है वो है फिल्म मदर इंडिया का। जी हाँ,

मदर इंडिया का निर्देशन करके उन्होंने दुनिया को भारतीय नारी की गरिमा से रूबरू करवाया था। उनकी बनाई अन्य फिल्मों की बात कर ली जाए तो सन ऑफ इंडिया, अमर, तकदीर, रोटी, एक ही रास्ता, अंदाज, अनमोल घड़ी प्रमुख रचनाएं थी। महबूब खान ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बतौर अभिनेता 1927 में प्रदर्शित फिल्म अली बाबा एंड 40 थीव्स में एक चोर के रूप में की थी। वे बहुत मेहनतकश इंसान थे, इसलिए उनके प्रोडक्शन हाउस महबूब स्टूडियो का जो सिंबल था वो था हसिया और हथौड़ा। मदर इंडिया को 1957 में विदेशी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला और महबूब खान का निधन आज ही के दिन 1964 में हुआ था।

0: श्रोताओं, इसी के साथ नमस्कार कार्यक्रम का आज का अंक बस यहीं तक। अब अपनी दोस्त अर्चना चौहान
1: और नूतन सोनी
0: को दीजिए इजाजत और स्वीकार कीजिए
1: नमस्कार।

श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार। ये आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का FM सेंसिटिव चैनल है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम अंताक्षरी।

0: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है। कहां कहां इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
2: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

0: से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर।
2: श्रोताओं बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम अंताक्षरी में। संगीत वो जादू है जो दिलों को जोड़ देता है और अंताक्षरी तो वो खेल है जो हर चेहरे पर मुस्कान छोड़ देता है। तो इसी मुस्कान के साथ शुरू करते हैं आज का संगीत का सफर और आप सबका इंतजार रहेगा हमें और इंतजार रहेगा तो आपको कॉल करना ही होगा और कॉल करने के लिए डायल करना होगा 2553300 और 2554300। और अगर आप कर रहे हैं दूर से कॉल तो इस नंबर से आगे आपको लगाना होगा 0291। और आज का जो अंताक्षरी का सफर है वो शुरू करने जा रहे हैं आपके जैसे रेडियो लवर न्यू नूतन सोनी और मेरे साथ है रेखा भाटिया। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा समा बनाते हैं और शुरू करते हैं कार्यक्रम अंताक्षरी। ओ पहला कॉल आ चुका है, रेखा में इशारा कर रही है, जुड़ते हैं पहले कॉलर से। हेलो
3: जी, नमस्ते।
2: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम अंताक्षरी में। जी खींची साहब, सबसे पहले तो ये बताएं गर्मी कैसी पड़ रही है?
3: बहुत ज्यादा सर।
2: बिल्कुल, और थोड़ा सा आप हमें गुनगुना के सुनाएंगे तो हमें थोड़ी सी जो है थोड़ा रिलीफ मिलेगा हमें।
3: जी
2: बिल्कुल। तो कार्यक्रम के जो पहले पायदान पर आपको जो है गाना सुनाना होगा, फिर रेखा आपको एक म्यूजिकल ट्रैक सुनाएंगी, गाना सुनाएंगी और आपको एक शब्द का अपना चयन करना है, ठीक है? और उस शब्द से आप जितने गाने गुनगुना सकेंगे वो आप गुनगुनाइए और फिर लास्ट में आपको एक कराओके सुनाया जाएगा, उसके साथ आपको गुनगुनाना है, ठीक है?
3: जी
2: जी, शुरू कीजिए।
3: गाना चालू करूँ मैं?
2: जी बिल्कुल।

वाह, इमोशनली आप बहुत ही अच्छा गुनगुनाए, बहुत मजा आया। अब आपको एक गीतांश सुनवाते हैं और आप करेंगे एक शब्द का चयन।

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी सर, आपने चुना अपना शब्द
1: जी,
0: जी? बिल्कुल, बताइए
1: मुझे मुझे
0: मुझे। तो फिर ठीक है,
1: जी
0: शुरू हो जाइए।
1: दीवाना मुझको लोग कहे, मैं समझू जग है दीवाना, मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो।

0: वाह, बहुत अच्छा गुनगुनाए आप। अब
1: थैंक
0: इसी
1: यू।
0: के साथ बहुत बहुत बधाई आपको, आपने दो पायदान क्रॉस कर लिए और आप पहुंचते हैं तीसरे पायदान पर। अब आपको नेमी जो है कराओके सुनाएंगे और आपको साथ में गुनगुनाना है।

0: हेलो जी, गुनगुनाइए।
1: ये आवाज थोड़ी थी, मैं मालूम नहीं पड़ा, थोड़ा टाइम पर वापस गुनगुना।

0: नेक्स्ट कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो
1: हेलो
0: जी, अपना नाम बताइए।
1: जी, मेरा नाम ओम प्रकाश भाभी है
0: जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम अंताक्षरी में। जी आपको गाना तो बहुत अच्छा ही लगता ही होगा, इसलिए आपने कॉल किया है। तो बस बिल्कुल हमें सुनाइए गाना।
1: जी कौन सा गाना सुना दो?
0: हाँ कोई भी, जो आपके पसंद का गाना। जी कोई और गाना भी आप गुनगुना सकते हैं
1: हाँ जी,
0: तो गुनगुनाइए, हमें अच्छा लगेगा।
1: जिसको सत्य है कि भगवान है, मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का, दाता की शान।
0: ये तो सच है कि भगवान है। बहुत अच्छा गाना आपने चुना गाने के लिए। अब नेमी आपको एक गाना सुनाएंगे और उसमें से आपको एक शब्द चुनना है, ठीक है?

0: जी आपने
1: हेलो।
0: शब्द चुना,
1: हाँ जी, दिल।
0: दिल। ठीक है,
1: हाँ,
0: आप दिल
1: दिल
0: से।
1: दिल दिल, मैं तेरे प्यार में खोया, मैं तेरे यार में खोया, दिल दिल दिल, मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहा दिल को गया, न जाने कहा दिल को गया, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, इतनी हमें बहुत है। और ये दिल का, ये बोल मैडम,
0: जी
1: दिल है के मानता नहीं, दिल है के मानता नहीं।
0: जी अब आपको एक कराओके सुनाया जाएगा, उसके साथ
1: हाँ जी,
0: आपको गुनगुनाना है।
1: हाँ जी,
0: ठीक है, रेडी?

0: अगले श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो,
1: गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग सर।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: को प्रणाम। सूर्य नगरी शहर आफ्ताब के नस नस में धड़कता सुरीला संगीत एफएम सन सिटी।
0: जी, ऐसे जो एनर्जेटिक श्रोता होते हैं हम में भी एनर्जी पास कर देते हैं। जी आप अपना, जी आप अपना नाम जरूर बताइए।
1: दिनेश कुमार सोनग्रा।
0: ओके दिनेश कुमार जी, तो बिल्कुल इसी एनर्जी के साथ आप हमें एक गाना सुना दीजिए।
1: सांसों से नहीं कदमों से नहीं मोहब्बत से चलती है दुनिया, दौलत से नहीं ताकत से नहीं मोहब्बत से चलती है दुनिया दुनिया। हेलो।
0: बिल्कुल, दुनिया और इंसान का जो जीवन है, जिंदगी है, दिल से ही चलती है।
1: बहुत जरूरी मैम।
0: बिल्कुल। और
1: मैं फैन का नाम लेना चाहता हूँ, प्रकाश सोलंकी और समस्त सोलंकी कैनवास और युवराज चौहान
0: जी। और अब नेमी जो है आपको एक गीतांश सुनाना चाहते हैं
1: जी,
0: और उसमें से आपको एक वर्ड सेलेक्ट करना है। ओके,
1: उसी अंतर में चल जाएगा वर्ड के, शुरू से करूँ?
0: वो शब्द जो है आप जो गाने गुनगुनाएंगे आगे उसमें आना चाहिए, ठीक है?
1: अंतर में चलेगा ना?
0: हाँ हाँ बिल्कुल।
1: ओके मैम।

0: दिनेश जी, आपने शब्द चुना?
1: दीवाना हुआ तो दीवाना कर दूं, चलेगा?
0: जी चलेगा।
1: दीवाना मस्ताना हर जाई चौधाई, बिल्कुल कवारा मैं हूँ आशिक आशिक आवारा। दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों पे क्या गुजरी है गुजरी है। दिल दीवाना है, दिल तो पागल है
0: दिल दीवाना है।
1: पहली पहली बार जगाता है यही, आँखियों से नींद चुराता है, सच्चे झूठे खाब दिखाता है यही, हंसाता है यही यही रुलाता है। दिल तो पागल है,
0: दिल दीवाना है।
1: हेलो
0: जी, आप बहुत अच्छा गुनगुनाए और टोटल आपने 4 गाने गाए हैं, तो आप पहुंच
1: जी।
0: जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर और आपको एक कराओके सुनाया जाएगा, उसके साथ आपको गुनगुनाना है।
1: आपकी चाहूंगा हेल्प।
0: जी
1: ओके मैम।

0: माहिरी है गुरुदत्त साहब और वहीदा रहमान साहब
1: जी बिल्कुल
0: एकदम सही है सलील चौधरी संगीत दिया था
1: बिल्कुल आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।

बात करते हैं हमारे अगले कॉलर से। हेलो हेलो, शायद हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है। हेलो,

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी, अपना नाम बताइए।
1: जी, मेरा नाम संतोष है।
0: संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसी हैं
1: कैसे
0: आप?
1: हैं आप? बस बढ़िया है। हम
0: बढ़िया। ठीक है, तो फिर अब बढ़िया सा गाना सुना दीजिए
1: जी सुनाते हैं
0: जी।
1: दो।

0: पंछी दो तीन के कहो लेके चले हैं कहाँ, ये बनाएंगे एक आसिया।
1: वाह, बहुत बढ़िया। दो पंछी और मिलकर एक आसिया बनाएंगे, बहुत बढ़िया। अब नेमी आपको एक गाना सुनाएंगे और आपको उसमें से एक वर्ड लेना है। ओके
0: हाँ जी।

0: जी संतोष जी,
1: हाँ जी,
0: आपने शब्द चुना?
1: हाँ जी, सुना
0: कौन सा शब्द चुना?
1: दुनिया।
0: दुनिया। ठीक है, तो फिर सुनाइए।

0: जी और
1: दुनिया का मेला, मेले में लड़की, लड़की
0: आहा
1: अकेली सन्नो ना मुस्का।
0: और दुनिया में आए हैं तो जीना।

0: वाह, चलिए अब आप अगले स्टेप पे पहुंच जाती है, बहुत बहुत बधाई आपको। और अब एक म्यूजिकल ट्रैक सुनवाते हैं आपको,
1: हाँ जी
0: कराओके।

0: नेक्स्ट कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, बात करते हैं उनसे। हेलो,
1: कौन बोल रहे हैं? मनीषा मैडम बात कर रहे हैं
0: जी? मैं नूतन बात कर रही हूँ।
1: राजेश बात कर रहा हूँ मैडम, कॉलोनी से।
0: जी सर,
1: तो चालू करो मैम गाना।
0: बिल्कुल चालू कीजिए।
1: आपके प्यार में संवरने लगे, देखते आपको निखरने लगे, इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई, टूट कर बाजू में बिखरने लगे आपसे।
0: प्यार में हम संवरने लगे। जी, अब नेमी आपको एक गाना सुनाएंगे और आपको एक शब्द चुनना है। अब आपको एक गाना सुनवाया जाएगा, आपको उस गाने में से एक शब्द चुनना है और उस शब्द से आपको जितने गाने आप गा सकें आपको गाना है। ठीक है?
1: ठीक है, ठीक
0: जी।

0: जी आपने शब्द चुन लिया?
1: याद मैडम।
0: ठीक है, गाइए।
1: याद याद याद बस याद रह जाती है इश्क।

0: बस याद रह जाती है, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है, याद आ रही है। मैडम दो ही गाने याद आ रहे हैं, थोड़ा सा हिंट आप दे दो तो।
1: कोई बात नहीं, अब आप कोई कराओके सुनवाते हैं और आप साथ में गुनगुनाएंगे।
0: ठीक है।

0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही पहचाना आपने।
1: बदन पे सितारे लपेटे हुए और जाने तमन्ना इधर कर

0: योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर।
2: आइए नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो
3: हेलो
2: जी सर, अपना नाम बताइए।
3: शुभ बात कर रहा हूँ
2: जी। अब आप एक गाना गुनगुनाइए
3: जी। जी कश्मीर की कहानी अच्छी का सॉन्ग है, रफी साहब और अस्सा जी की आवाज में।
2: बिल्कुल
3: सुनता हूँ। मेरे दिल को तुम भा गए, मेरी क्या थी इसमें खता, मुझे जिसने तड़पा दिया।

0: थी वो जालिम मदा, यही थी वो जालिम
1: जालिम।
0: मदा, ये रांझा की बातें, ये मजनू के किस्से, अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से।

हेलो हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, फोन डिस्कनेक्ट हो गया है।

0: हेलो,
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार जी।
1: गांव धुंधड़ा मोबाइल करूं, नर्सिंग टेलर सदर मार्केट हूं। ठीक
0: जी नरसिंह जी, कैसे हैं आप?
1: हूं मैडम, आप कैसी हैं मैडम?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ
1: बस आपके कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं।
0: जी। धन्यवाद, आपसे श्रोताओं से ही प्रोग्राम होता है।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी तारीफ, आवाज भी बहुत ही सुरीली आवाज है मैम।
0: धन्यवाद सर। आप हमें एक गाना गुनगुना के सुनाइए
1: जी
0: और
1: जी
0: शुरू करते हैं अंताक्षरी।
1: कुर्बान फिल्म का गाना है
0: ओके।
1: ये। धरती चांद सितारे, ये नदियां पवन घटाए, मिट जा सारा जहां रे, बस प्यार रहेगा यहाँ रे, बस प्यार रहेगा यहाँ रे। तू जब जब मुझको पुकारे, मैं दौड़िया हूँ नदियां किनारे, हर पल तेरा रास्ता निहारे, दिल लगे लगे तेरे बिना रे, मुझे सीने से लगा ले, मुझे दिल में बसा ले मेरे, बोले साथिया तुझे दिल दे दिया, मेरा दिल ले लिया।
0: वाह, आपने गाना भी बहुत अच्छा तोड़ाया।
1: जी
0: ओके, अब आपको एक गाना सुनवाएंगे और आपको एक शब्द चुनना है।
1: जी जी बिल्कुल।
2: जो के जो तेरे नैना

0: नरसिंह जी, आपने शब्द चुन लिया।
1: जी
0: बताइए कौन सा शब्द चुना।
1: जिंदगी वो गालू मैडम। हेलो
0: जी ठीक है।
1: हेलो,
0: हाँ
1: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, हो लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं।
0: जी। नेक्स्ट
1: जी,
0: अगला गाना।
1: अगला गाना
0: जिंदगी से
1: मैडम,
0: बहुत सारे हैं
1: अभी तो ये की याद है मैडम।
0: जी। कोई बात नहीं, कॉल करने के लिए, गुनगुनाने के लिए बहुत शुक्रिया।
1: जी जी बिल्कुल।
0: अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं।

0: अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, बात करते हैं उनसे। हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम अंताक्षरी में।
1: नमस्ते जी,
0: नमस्ते, अपना नाम बताइए।
1: मैं ठाकराराम पूनिया निवेदन कर रहा हूँ बाड़मेर से
0: जी। अपना गाना सुनाइए आप।
1: सविता जी आए नहीं प्रोग्राम में, उनके बिना प्रोग्राम अंताक्षरी प्रोग्राम नहीं लगता, माफ कर दीजिएगा।
0: हाँ बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं, उनको हम भी मिस कर रहे हैं अभी, लेकिन कार्यक्रम हमको
1: उनकी वो भावनाएं वो संवेदनाएं हम तक पहुंच पाए।
0: बिल्कुल जरूर पहुंचवाएंगे।
1: सिर्फ दुखी नहीं है मौनी भाई साहब, यहाँ पे बहुत ज्यादा भावनाएं मायने रखती है।
0: हाँ हम मानते हैं, बिल्कुल हम एग्री करते हैं, और आपकी भावनाओं का हम बहुत सम्मान करते हैं।
1: बहुत शुक्रिया। अब मैं गीत सुन रहा हूँ
0: जी, गुनगुनाइए।
1: तुम्हारे प्यार में हम बेकरार हो के चले, शिकार करो न कुआए, शिकार हो के चले। गला बहुत बैठा हुआ, लू लगी हुई है
0: जी, फिर भी आपने प्रयास किया। अब आपको एक गाना सुनाया जाएगा और आपको शब्द चुनना है।
1: जी।

0: आपने शब्द का चयन कर लिया?
1: इसमें शब्द आया है गीत में आंख।
0: हाँ जी,
1: मैं माफी चाहता हूँ, आज जफर भाई का पुण्य स्मरण दिवस है तो उन्हें भी मैं याद करना चाहूंगा और हृदय से नमन करता हूँ मैं।
0: हाँ जी,
1: जी, आंख सबसे शुरू होने वाले मैं कुछ गीत आपके सामने कर रखा हूँ। आंखों आंखों में हम तुम

0: वाली बातों बातों में देखा बन गए अफसाने, आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, मैं हो गई किसी की कोई मेरा हो गया। वही गीत आ रहे दिमाग में मैम।
1: जी, कॉल करने के लिए, बात करने के लिए बहुत शुक्रिया।
0: बहुत आभार। दिस
1: हेलो
2: कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड।
1: हेलो
2: हेलो।
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी
2: हाँ,
1: कार्यक्रम में।
2: मेरा नाम ललिता।
1: ललिता जी, कैसी हैं
2: हाँ
1: आप?
2: हेलो।
1: कैसी हैं आप ललिता
2: हाँ,
1: जी?
2: मैं बहुत अच्छी हूँ।
1: जी, अब बहुत अच्छा सा गाना सुना दीजिए।
2: ठीक है।

0: ललिता जी, बहुत ही
1: हाँ
0: ठहराव के साथ, बहुत ही सद्भाव आपने अच्छा, बहुत अच्छा गाया।
1: ठीक
0: अब आपको एक गीत सुनाएंगे हम, और आपको उसमें से एक शब्द चुनना है।
1: ठीक है।

0: जी
1: जी नेक्स्ट
0: हेलो
1: नेक्स्ट
0: नहीं अच्छा जी मैं भूल गई ब्लैंक आउट हो गई
1: गाइए गाइए।

आप सभी कॉलर से बात करके आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। अब आप ही के जैसे रेडियो लवर न्यू नूतन सोनी को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी अंताक्षरी FM 102.1 MHz पर। ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। लीजिए हाजिर है कार्यक्रम टाइम ने नमस्कार।
1: आपरी वाणी आकाशवाणी हाजिर है आपरो पसंदीदा प्रोग्राम टाइम ने नमस्कार।

0: काकू थई करो कन थोड़ी कुर्बानी मान टावर मा तेरे कान मा दोन आया
1: हां तो कुर्बानी
0: तो हो 50 रुपया तो कुर्बान कर दो मान मत
1: मंगाया आज भाई मती रुपया तो काम कर देख ले मंगाया बात के
0: नहीं हो 50 रुपया कुर्बान दे तो मार ठंडो पिया तो जाए परान दुकान
1: कर दो यार जी हो रो जी समझिया नहीं के देखे खाओ तो एकदम मिश्री डली हुआ जरो कुदरत रो निजाम है के तावड़ो पड़े तो हेंग वाजी पड़े जे मान लो बरसात वे तो हेंग वाजी वे ही पड़े तो हेंग वाजी पड़े
0: वो कहीं मत अब कहो तो।

0: रेखा वो नेमोहित गियो है
1: नेमो के कि मैंने आइसक्रीम ठंडो लेना हूँ
0: लाइवड़ा है मैं को खाने मतीरियो बोकन
1: के मैं मतीरो कौन खाऊं
0: मतीरो नहीं खावे इन्हें सब भावे है जिको कह निकुल बियां दूजी बात करें नव तपो बे है नव तपे में क्यों दिन रात तावड़े में ड्यूटी फिर तो भी है
2: मारे
0: लागो वाह भाई ए पड़िया लागो जीवता रो जीवता रो
2: राम राम भाई रेखा
0: नहीं अरे तो हूड करने हूँ जाऊ बात करे कर देता थारू हो जाता हूँ कद कहो मैं मन तो कहो तो तू बारी को निकल देता नहीं
2: ईद
0: मुबारकबाद भाई सेना ने हमें पावड़ी सजनो है एक तो वह राली एक वह ढाली राली राली
2: ढाली
0: कहो मैं वाकई कौन पहले पौड़ी आ गई दिन छा दिया मुझे पौड़ी है
2: पूछो कहता हूं बा
0: के जिनगर घोड़ो लीलड़ो उजल चिंती नार तिन घर सदा उजासनो दिवले तलो दिवले तेल न बाण जिनगर घोड़ो लीलड़ो
2: लीलड़ो
0: लीलड़ो लीलो घोड़ो
2: लीलड़ो ठीक ठीक
0: उजल चिंती नार तिन घर सदा उजासनो दीवले तेल न बाल
2: बताया
0: जिन घर घोड़ो लीलड़ो उजल चिंती नार आएगी
2: कुमान
0: सती पीढ़ी में धेड़ जा ना जो काम हो नी
2: बाण कमान वे बो कमान है
0: हाँ बाण कमान ओ
2: ठीक
0: है भाई टेलीफोन करियो भाई ठाकर थे।

0: dar altul ba de el.
1: Ah, domnul s-a ducat la dorti de dotau? E, ha din nou din ni? E, cu dure la peas la ui?
0: Stai.
1: Mi-am gheali. Ame, paurie să nu nou. Ah. Ek to ve da pa da. An ek ve da ba da.
0: डब्बा डब तो कोई मतलब डब्बा यो खातो पड़े रुको एक डब्बा डब्बा है जो को तो मतलब डब्बा डब्बा लोटी है डब्बा डब्बा यान गान दो है यार बात अच्छी बात है जरा फरा उड़ो चे तो ठाने नहीं है हां हां लब लब का नहीं क्या कभी कभी आंखें ही भरी जाओ
1: कोई हां कोई बहन बेटी नहीं गदा नहीं
0: यो
1: जब आप देखो मोरे एक पैर उपाधे ये मजदूर पड़े जाने की हो जाओ हो जाओ के कौन पहले पौड़ी फिर चल दफा डप दबा डब मैं दूजे पौड़ी है के सौरट प्यारी सौरटो सुमा प्यारो दाम पूत प्यारो मायने संता प्यारो राम
0: संता
1: ने कह नहीं कि भाई क्या संत महात्मा ओलिया फकीर है बने है जो कह भाई देखो का अपने मालिक रो नाम
2: प्यारो
1: है प्यारो बस दूजी पौड़ी सेट गाम तीजी पौड़ी है
0: तीजी पौड़ी थे ताड़ो
1: होना चाना हमारे थे सड़ाओ रघु
0: आले रघु मग तीन माता दस पग
1: हेलो बदो गाड़ो लियोड़ा फिर बोगरो उजलो पोकन ठीक है नहीं तो जाओ बड़ोड़े गाँव ठीक ठीक है ठीक सही बात है वाह अवरदान जी वाह थार भी ने तो आवड़ी को नहीं मैंने ठीक है वाह भाई वाह
3: चाहे गर्मी हो या जाड़ा इलाज हो हर मौसम में प्यारा इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
2: RGHS वचिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
3: पथरी प्रोस्टेट गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्लाह स्टेडियम के सामने, जोधपुर। मोबाइल 9829027065।
4: दुनिया का सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न सुख एक तरफ,
5: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियारी उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
6: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन, डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

0: योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पथरी, प्रोस्टेट, गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्ला स्टेडियम के सामने, जोधपुर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अब आप सुन रहे हो कार्यक्रम टेमने नमस्कार।

0: रेखा है कि अभी कम बाजा बजन रुकी नहीं संदेश हैंग दे दिया हैंग कर दिया
1: हाँ बाजत बजाओ हिंज पचे हैंग बात रहते हैं तो गाना भी जरूरी
0: हाँ,
1: है
0: हाँ हाँ सी बात है राम राम राम राम बात कराओ कन भाई कौन है
2: हेलो
0: हाँ कौन बोलो
1: हिमांशी बोलो हिमांशी
2: हिमांशी बोलो
1: मानसी हाँ मानसी बोलो
0: कितने पड़ा भाई है
2: राम राम
0: राम राम
1: राम राम राम राम
0: पड़ा कितने में
2: तुमने कहा नहीं ना
0: है ठीक बात हुनी तावड़ो घड़ो पड़े घरों बारे मत निकल जाओ मानसी हो आ बात हुना दी ठीक है कितने पड़े भाई स्कूल जावे बात कितने पड़ो वही पहली पढ़ू थारे हाथे मैं देखी तो कौन नहीं था थाने स्कूल देखी तो कौन
1: मानसी शर्म आ गई
0: हाँ थोड़ी घनी कह रही भाई बिजमीज की नौर की कौनी वाह भाई ये गीत तो होना होगा माल भाई मात तो सड़गो
1: हाँ काकू मार होना हम लोग सुनो
0: मात तो होना सुधार भाई मीठो

0: रेखा भाई।
1: हाँ काकू।
0: ओ है जिको गीतड़ो अरदासियो गीतो।
1: हाँ
0: क्या भाई मैं जेठ में तपे है न के दूध जेठ होगा नहीं ईद मास हो गो मैं बरसात भाई जीव हो रोजा।
1: हाँ
0: है कौन क्या भाई टाइम मत खेती कर लान है बता भली उजा मैं हो यूं एकदम दुनिया बदल जा।
1: हाँ गर्मी में आराम मिले और
0: ही पड़े जदा तो कह ही पड़े अरे तो थोड़ो धीजो राखो पण टाइम मत हेंग पाता हूँ। राम राम।
1: राम राम। कौन बोलो हो?
2: हेलो।
0: हाँ कौन बोलो?
2: हेलो
0: हुई
1: क्या? बोलो बोलो।
2: जय माता जी
0: सा। ओ जय पिता जी जय माता जी री। कौन बोलो?
2: औरदान जी आपने। जय माता जी सा।
0: हाँ सा औरदान जी क्या तो है कौन ही अटतान माँ ढाणी में बैठा।
2: अच्छा अरे मैं ये बार गांव रो नाम हुई हूँ उदरा बटे माने रिश्तेदारी है।
0: ओ आखी कौन अटो प्रोग्राम है हंगन मिलो उन्नो।
2: हाँ नहीं बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम है सा।
0: बढ़िया है तो मैं पाउडी है सजनो
2: है।
0: वाह तो की कुंदनी बात है भाई ठीक है और कान कटे कट जाओ पर औरदान जी की गांव। राम राम।
2: राम राम। राम राम।
0: कौन बोलो?
2: अशोक बोलो सा।
0: अशोक
2: सोनी।
0: ठीक ठीक होनी जी एक दो वे बलद ने एक वे हलद
2: बलद तो जी को खेता महीने आपा
0: अरे गौरव जायो बड़ दीदी पादरी बात है।
2: और
0: हल्दी ने कहा पौड़ी चली जा दूजे पौड़ी हो।
2: बोलो।
0: भरमरो भूत शकरी डायण।
2: भरमरो भूत शकरी डायण।
0: भरम भरम
2: भरम
0: भरमरो भूत शकरी डायण।
2: भरम हुआ है जी को अपना कोई तरह को अपना की नहीं क्या नहीं बात इस जगह पर है भरम यानी जो गुप्त वो ये तरह अपना सुपुत्र है ताकि वो नहीं अगला नहीं कि ध्यान नहीं पड़े तो अपन वो की नहीं।
0: मैं है ना कह नहीं
2: मैं ले जाओ और अपन सब करा कोई मत है जगह वो अपना खराब है।
0: हाँ हाजी बात है माशाल्लाह ठीक आशो आयो फोन तीजे पौड़िए में आडी आगो
2: इतनी सी नीमलीन ताजा पहले जीमली।
0: ओ माखी बैगी थाली में। वाह के कौन दिन बाद है बढ़िया करिए थे ये निंगे जोर राखे के भाई इतनी नीमलीन ठीक है वाह साहब थैंक यू को लव ले लियो आज। राम राम।
3: राम राम काकू। राम राम।
0: आओ भाई कृष्ण भाई आओ।
3: राम राम काकू। गर्मी घनी पड़े है।
0: हाँ गर्मी पड़े तो भाई क्यों करो राली गूंज लो भिजो परो एक गूंज लो भिजो नोट धोजो।
3: अरे गर्मी पड़े रोड मत कटो हो काकू लोग जाके मरियोड़ो पड़ियो है।
0: तो फिर रोड मत हो नी।
3: हाँ उस रोड मत ही
0: होगा। वाह वाकई कौन रोड तो काली एंगो मोटी है।
3: हाँ कुमार
0: कृष्ण भाई एक तो वह काल कौन एक वह पाल को
3: तो खावे जगह वह काल को जगह।

0: और थे तो ठीक जिनी बात है जिनी बात।
1: रे कक्का बीच गीत कोई भाई से नो बात तो कराओ कोई गीत गाऊं बजाऊं ढूंगी।
2: अरे थोड़ा हुन लगा को पच पाच बात कराऊं।

0: ये गाना में तकना से गाएगा, एक जानवर ऐसा जिसकी तुम पर पैसा।
1: एक जानवर ऐसा उसकी दुम पर पैसा, यूं ओ कौ है
0: के वा?
1: मैं तो थन पूछू
2: ये बताओ
1: ठाकुर नी
0: आदमी मैं तो मारदी ना के थे बताओ गाना में आवे काकू
1: गाना में आवे तो बारे में चार गिया लार की दरिया
0: बारे में चार गिया लार तो आठ ही रेवे
1: कोई को रहन कोई करे थे पूछे जो नहीं पूछ गया ठीक है दिनी बात है बार महीना में चार महीने खेती रहे नहीं करे कहीं गए राम राम कोई कौन भाई है मैं बात कोई आवे तो आज बात करा दे नहीं तो बार राम राम
3: हेलो राम राम सर
1: राम राम राम राम
3: जबरनाथ बोलू साहब हालू नोट गडू
1: हाँ मोड़ा घड़ा आया ना जी मैं
3: गलती माफ कर दे मोड़ा घड़ा होगा
1: एक वे डूकनो एक वे कूकनो
3: कई वे साहब
1: डूकनो
3: डूकनो
1: हाँ एक वे कूकनो
3: कूकनो तो पाए भाई यार घर में कोई चल जावे तो कूके रड़ा करे ना बड़े कई डूकनो कयो कोई घरे आवे तो क्या भाई घरे डूक गयो
1: हाँ नहीं ये काम धंधे माती लाग गा
3: हाँ के काम माती
1: हुआ ठीक है हाँ जबरदार जी हैंगो मिट्टी चीज कहीं भेजो
3: हैंगो मिट्टी सा प्रेम है
1: प्रेम बे उन तो देखे भूख बे हैंगो मिट्टी
3: प्रेम है
1: साब हुआ कि हर मगज माये जरे ठीक है मैं आड़ी आको फटो फट
3: आड़ी आप रे जी इका ये उन्दो करे अपन करे जल्ले ऊपर बाद ही बले
1: ओ बैग्स क्या नहीं होका खांसो न छाती ठीक धनी बात है थे टेलीफोन करियो जबरनाथ जी आ राज भाई ये ईद है जिको ईद री मुबारकबाद हैं भाई शरणी है और कौन क्या होते हैं जिको बजे में डूब जा
2: तो बजे हम जिको कुछ ईद है नहीं
1: भाई बजा

0: मंग भाई सेठ गदरास में है जो की इनकी खुरापात करे। हाँ वो कोई क्या मंग भाई गीत दियो दिखे मन लागे
1: एड़ा
0: बजा भाई बजावे।
1: हाँ हाँ।

0: मां ये नव गीत है जो मार्ज मगज में अड़ो बैठो के कोनी पर बात आ है भाई 12 महीने त्योहार है
1: ईद मुबारक हो तो हम मैन का
0: तो हम इसको भाई ईद रो मुतबल तो है कि भाई खुशी व्यारी
1: हां
0: जे की बात है दूजो यूं है भाई सब मिन क्या नहीं भाई सेना रे क्या भाई ईद मुबारक में हैंगा नहीं क्या भाई शौहरत दौलत मोहब्बत ताकत तंदुरुस्ती आ हैंगा ने क्या नहीं भाई है जो को मिले मालिक आई है जो को क्या नहीं अरदास है दूजो अमन चैन रहे भाईचारो रहे सब है जो हंसी खुशी हैंग काम काज करे और आप रे क्या नहीं रुत मुझे भैंग हाले थैंक बता बली है और हमें भाई रेखाई मारी आज को है थोड़ी ईद मुबारकबाद करनी है तो थोड़ो

श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम टेम ने नमस्कार। ये आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का एफएम सन सिटी चैनल है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचारों का बुलेटिन। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाए। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबर्धन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल से अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया।
1: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में बनाना होगा।
0: इससे पहले कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। गंगटोक के सिक्किम विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने यह घोषणा की। केंद्र द्वारा उल्लास पहल के अंतर्गत ये घोषणा की गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गृहमंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृहमंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में

0: सार्वजनिक उपयोगिता शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार खगड़िया और मुजफ्फरपुर जिलों में दो दो मौतें हुई हैं, जबकि मुंगेर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में एक एक मौत हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रूपये की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। आज ईद उल अजहा का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद को सुचारू रूप से मनाने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय की प्रार्थना की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज न अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 2 दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का FM सन सिटी चैनल है। FM बैंड 102.1 MHz पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
2: यादों की महफिल। इस प्रोग्राम के लिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में आपकी कसम फिल्म का गीत आपने सुना। आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

0: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में ये दुगाना मेरे हमसफर फिल्म का था। आनंद बख्शी का लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
1: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: इस समय विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब से हुई है तुमसे मोहब्बत, मिलता रहा हूँ, मिलता रहूँगा, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, तुमसे अच्छा।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम तो।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, आनंद बख्शी का लिखा गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर की आवाजें थी, फिल्म थी फर्ज।
1: क्या हुआ?
2: हाय, गम का फसाना बन गया अच्छा।
1: अच्छा जी।

मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में ये दो गाना आपने सुना अनजाना फिल्म से, आनंद बख्शी के बोल थे। कार्यक्रम यादों की महफिल यहीं संपन्न हुआ।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। अपने सभी श्रोताओं का हम इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओ, आजकल जरूर हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं वो पहाड़ों का रुख कर चुके होंगे। बहुत मुमकिन है कि आप रास्ते में विविध भारती भी सुन रहे हों, तो चलिए हम भी आपके साथ हो लेते हैं। विविध भारती के साथ सुरीले सफर में आज चलते हैं हम और आप साथ साथ। यूं कह लें कि गर्मियों में पहाड़ों का जो मौसम होता है श्रोताओ, आशिकाना होता है। छोटी छोटी सी पगडंडियां ऊंचे आसमान से बातें करती, देवदार के पेड़, खुला खुला नीला आसमान एक अलग वादियों में खो जाते हैं हम सभी कहीं, और तमाम खुशियां जो हम अपने साथ कर लेते हैं थोड़े से समय में हम अपनी मुट्ठी में इन खुशियों को भर लेना चाहते हैं। ऐसे में गीतों का साथ हो तो क्या कहने। इबारत की जहां तक बात है श्रोताओं, जो टेक्स्ट हमने इस प्रोग्राम के लिए आपको फेसबुक पेज पर दिया उसे हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने देखा होगा प्रोग्राम में, तो फिर आप भी शामिल हो जाइए। हमारे नए श्रोताओं के लिए हम बता देते हैं www.facebook.com/vbsmumbai के इस पेज पर लॉगिन कर आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स हम तक भेज सकते हैं। और अब आज का टेक्स्ट या पैसेज जो भी आप कहें या इबारत कहें उसे आपके लिए पढ़ देते हैं एक बार फिर। गर्मियों के मौसम में पहाड़ों का हुस्न बेमिसाल होता है। राहत और सुकून से भरे रास्ते पुकारते चले जाते हैं। हर चेहरा यहाँ चांद है तो कहीं चांद से रोशन चेहरे भी हैं। सादगी से भरपूर जीवन और यहाँ के लोगों की मासूम मुस्कुराहट। मोहब्बत नहीं तो फिर क्या है। धुंध का पर्दा हटा तो पर्वत के पीछे गांव का नजारा था, जहां इस मौसम में सैलानी खूब आया करते हैं। हमारे गांव भी कोई जरूर आएगा

कहेगा प्रीत तुरी साची। परदेसी ने फल कपड़े और टोकरियां भी खरीदी। किसी सपनों की रानी के जैसे ये बर्फीले प्रदेश और यहाँ के लोग डोरी बुनकर प्यार बांध लेते हैं। परदेसी एक दिन चले जाते हैं एक और मुलाकात का वादा करके। तो ये थी आज की इबारत और बहुत सारे श्रोताओं ने हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स भी भेजे हैं, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हमने देखी हैं। साथ ही आपने जो गीत चुने हैं वो भी बड़े ही मुकम्मल हैं आज के कार्यक्रम के लिए। तो चलिए देखते हैं हमारे और भी श्रोता इन गीतों के बारे में क्या लिखते हैं, इन शब्दों को कैसे चुनते हैं, और हमारे जो श्रोता नए हैं वो भी हमें अपने कमेंट्स अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे सभी श्रोताओं का। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

राम तेरी गंगा मैली इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की। श्रोता, पहाड़ों की सैर को लेकर आप अपनी बातें, आप अपनी यादें, या फिर अगर इस बार भी आप गए हैं घूमने के लिए तो वो बातें भी हमसे साझा कर सकते हैं। और ये तो बताइए कि पहाड़ों की कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगती है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि नमस्कार, आज की इबारत पर्वतीय क्षेत्रों के नैसर्गिक सौंदर्य का विहंगम चित्रण है। सफेद बर्फीली चादरों में सिमटी धुंध के नेपथ्य में लुका छिपी करती पर्वत करते पर्वत ऐसे प्रतीत होते हैं मानो धुंध के घूंघट में खूबसूरत हुस्न शर्माते हुए अपने पर इतरा रहा हो। इबारत इन गर्मियों में सैलानियों और प्रेमियों के दिल को सुकून और शीतलता प्रदान करती है। यानी आज की इबारत के बारे में इन्होंने लिखा है और बेकरारी से इस सफर का इंतजार भी है। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जो ये गद्य है इबारत से पहाड़ों के हुस्न के साथ साथ परदेसी के की बात जो है इस पर है। परिदृश्य के प्रणयात्मक भावनाओं वाले माहौल का एक अच्छा चित्रण खींचा गया है और इस दृष्टिकोण से ये इबारत इस ग्रीष्म ऋतु के सुख का चित्रण करते रहने में सक्षम है। किंतु वे परदेसी जो परदेश जाने में असमर्थ हैं उनके लिए तो एक उपहार है ये गद्य, किंतु जो असमर्थ हैं उनके लिए अपनी सुरीली धड़कन के सुरीले धुन वाले गीत ही कुछ एक घंटे के लिए इस ग्रीष्म ऋतु में शीतल बयार तो जरूर बहाएंगे। और भी इन्होंने कुछ कुछ बातें लिखी हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के गद्यांश बर्फीले पहाड़ों के हुस्न की बात करते हुए जहां पर्वतीय गांव के लोगों के सादगी और चेहरे की मुस्कान को उजागर करते हैं, साथ ही में इस गांव की खूबसूरती और वहां आने वाले प्रवासी परदेसी को मिलने वाली ताजगी भरे मौसम को महसूस करने की बात भी कर रहा है। ऐसी ताजगी की अनुभूति हाल ही में खुद मुझे हुई जब पिछले हफ्ते नैनीताल की वादियों में घूमने गया था और पहाड़ों, जंगलों, घुमावदार रास्ते के बेहतरीन नजारा देखकर मन सुकून से भर गया। तो ये तो बताइए कि ये जो रास्ते हैं या ये जो वादियां हैं जहां आप सभी घूमने जाते हैं, हमारे बहुत सारे श्रोता घूमने जाते हैं, तो इनमें बड़े छोटे छोटे से गांव होते हैं श्रोताओं, जो पर्वतों की जो जगह हैं वहां पर स्थित होते हैं, नेपथ्य में या कह सकते हैं थोड़ा पीछे की तरफ होते हैं। तो ऐसे कोई गांव जहां आप घूमने गए जो कुछ खास था उसके बारे में आप हमें लिख सकते हैं जरूर। और आपको बताना है कि गीतकार और संगीतकार इस गीत में कौन थे जो गीत अभी आपने सुना, और इस गीत में आपको ये बताना है कि ये वृक्ष जो हैं वो कौन से हैं।

0: नमस्कार सखियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम नारीवाटिका, जहां बातें सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहती बल्कि दिलों तक भी पहुंचती है। यहां हम बात करते हैं उन एहसासों की जो हम रोजमर्रा की जिंदगी का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा तो होती है, लेकिन हम उन्हें लोगों से शेयर नहीं करते। चुपचाप हमारे मन में उसे रखते हैं और अपनी मेहनत करते हैं और हमारे सपने भी देखते हैं और जो धीरे धीरे बदलती दुनिया है उनको भी बहुत गौर से देख रहे हैं। मैं हूँ आपकी रेडियो सखी तमन्ना।
1: और मैं हूँ आपकी रेडियो सखी लता। और सखी इस कार्यक्रम की प्रस्तुति की है मनीष सोलंकी ने।

0: सखियो, जैसा कि तमन्ना ने बताया, आज की दोपहर बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे राजस्थान की उन महिलाओं की जिन्होंने अपने साहस, मेहनत और आत्मविश्वास से अपनी अलग पहचान बनाई है। ऐसी महिलाएं जो सिर्फ अपने परिवार की जिम्मेदारियां नहीं निभा रही बल्कि अपने सपनों को भी बराबरी से जी रही हैं।
1: सखियों, राजस्थान हमेशा से अपनी संस्कृति, अपने रंगों, अपनी परंपराओं और अपनी कला के लिए जाना जाता है, लेकिन अब इसकी पहचान में एक और खूबसूरत चीज जुड़ चुकी है और वो है यहाँ की उद्यमी महिलाएं।
0: बिल्कुल, और राजस्थान की महिलाएं हमेशा हुनरमंद रही है। हमारे यहाँ की कला, कढ़ाई, खाना, हस्तशिल्प, रंगों की समझ, ये सब दुनिया भर में पसंद किया जाता है। बस फर्क इतना आया है कि अब महिलाएं अपने इस हुनर को खुलकर दुनिया तक पहुंचा रही है।
1: आज राजस्थान की महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, वो बिजनेस चला रही हैं, ऑनलाइन ब्रांड बना रही हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप शुरू कर रही हैं, लोगों को रोजगार के अवसर भी दे रही हैं और सबसे बड़ी बात, दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा का भी काम कर रही हैं।
0: बात सही है तमन्ना, मगर आज एक दिन और भी बहुत खास है और त्योहारा का मौसम शुरू हो चुका है। ईद की तैयारियां चारों तरफ दिखाई दे रही है, बाजारों की चमक, बच्चों की खुशी और नई खरीदारी का उत्साह, तो हर तरह एक अलग ही पॉजिटिव माहौल है। और क्यों ना हम हमारी सभी सखियों को, हमारे श्रोताओं को, सभी को मिलकर कहते हैं
1: ईद
0: ईद
1: मुबारक।
0: मुबारक।

0: सखियों, अगर हम कुछ साल पीछे जाएं, तो महिलाओं के लिए अपना काम शुरू करना इतना भी आसान नहीं हुआ करता था। खासकर छोटे शहरों और कस्बों में तो महिलाओं के सपनों को अक्सर बहुत सीमित नजर से देखा जाता था।
1: हाँ तमन्ना, लड़कियों को पढ़ाया जरूर जाता था, लेकिन उनके सपनों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाता था। और कई महिलाओं के पास हुनर था लेकिन मंच नहीं था।
0: बिल्कुल,
1: कई महिलाओं बहुत अच्छा

0: काम करती थी लेकिन उन्हें विश्वास ही नहीं दिलाया गया कि वे इसे अपना करियर भी बना सकती है।
1: लेकिन लता, अब समय धीरे धीरे बदलता जा रहा है। आज महिलाएं सिर्फ कुछ करना चाहती हूं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उन्हें सच में करके भी दिखा रही हैं। और इस बदलाव की सबसे खास बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ अब बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि छोटे शहरों तक भी पहुंच चुका है।
0: और अब हमारा राजस्थान भी अछूता नहीं है। राजस्थान के कई छोटे शहरों में भी महिलाएं आज अपने दम पर नई पहचान बना रही है। किसी ने घर से बुटीक शुरू किया, किसी ने राजस्थानी हस्तकला का काम शुरू किया, किसी ने यूट्यूब चैनल बनाया, तो किसी ने घर की रेसिपीज को ही बिजनेस बना दिया। और सखियों, शुरुआत अक्सर बहुत छोटी होती है ना? पर कई बार सिर्फ एक मोबाइल फोन से, कई बार एक छोटे कमरे से, कई बार किसी बिना किसी बड़े निवेश के, लेकिन जब मेहनत और लगन जुड़ जाए तो छोटी शुरुआती तमन्ना बहुत आगे तक जाती है।
1: बिल्कुल। और लता, आज सोशल मीडिया ने भी महिलाओं को एक नई ताकत दी है। पहले अगर किसी महिला को अपना काम दिखाना होता था तो उनके पास सीमित साधन होते थे, लेकिन आज जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर वो घर बैठे हजारों लोगों तक पहुंच सकते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि महिलाएं सिर्फ ट्रेंड नहीं फॉलो कर रही हैं, बल्कि अपनी पहचान अपने हुनर से बना रही है। राजस्थान की पारंपरिक कला के बारे में आपने बिल्कुल सही कहा कि एक नए तरीके से उन्होंने दुनिया तक उन्हें पहुंचाया है। आज की महिलाएं परंपरा और आधुनिकता दोनों को साथ लेकर चल रही है। वो अपनी संस्कृति से भी जुड़ी है और आत्मनिर्भर भी बन रही है। शायद यही है सबसे खूबसूरत बदलाव।
0: बिल्कुल। और इसी बदलाव पे हमारे सखियों को सुनवाते हैं प्यारा सा गीत।

0: तमन्ना सपने वो नहीं होते जो बंद आंखों से देखे जाते हैं. किसी ने बहुत खूब खाया ना कि तमन्ना सपने वो नहीं होते जो बंद आंखों से देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दे.
1: बिल्कुल सही कहा.
0: और सब और अक्सर हम सोचते हैं कि बड़े सपने सिर्फ बड़े शहरों में पूरे होते हैं, ऐसा नहीं है सकियो. बस महिलाओं ने इस सोच को बदल दिया है. आज छोटे शहरों से निकलकर महिलाएं ऐसे काम कर रही है जिन्हें देखकर सचमुच में गर्व होता है.
1: बिल्कुल सही कहा.
0: है ना, कोई छत कोई घर की छत से अपना ऑनलाइन बिजनेस चला रही है, यानी बढ़िया मंगोड़ी पापड़ राबोड़ी मतलब देश विदेश तक पहुंच रही है. है ना, कोई अपनी माँ और दादी की पारंपरिक कला को आधुनिक डिजाइन में बदल रही है, यानी जो पुरानी साड़ियां जो हमारी कांजीवरम साड़ियां बनारसी साड़ियां जो लहंगे लहंगे सूट पड़े हैं, और कुछ लहंगे तो ऐसे जिन पर चांदी का काम किया जाता
1: बिल्कुल
0: था, है ना, और उनको आज बिल्कुल मॉडर्न तरीके से उसको एथनिक रूप से जो डिजाइन किया जा रहा है, और उसकी देश विदेश में बहुत चर्चा भी हो रही है, और वो अच्छे दामों में भी मिल रहे हैं.
1: बिल्कुल,
0: है ना, और कई लोकल प्रोडक्ट्स भी देश भर में पहुंच रहे हैं. तो सखियो, इन कहानियों की सबसे खास बात यह है कि इनमें संघर्ष भी है और सादगी भी. कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने शादी के बाद भी अपना करियर शुरू किया, यानी अब ये नहीं कह सकते कि अब शादी हो गई तब क्या करना.
1: हाँ, है ना? और करियर पे तो फुल स्टॉप लग जाएगा शादी के बाद में, ये तो नहीं रहा.
0: और बच्चों को जो एक फुल स्टॉप मानते हैं वो समय भी गया. क्या बच्चे हो गए, जिम्मेदारियां बढ़ गई? नहीं, महिलाओं ने इस सोच को भी बदला है. घर और बाहर की जिम्मेदारियों को बहुत बखूबी से निभा रही हैं. और कई महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने जिंदगी में बहुत देर से शुरुआत करी लेकिन हार नहीं मानी. हम अक्सर सफलता का सिर्फ पर ये जरूर है तमन्ना, हम सफलता का सिर्फ है ना बहुत चमकदार हिस्सा देखते हैं, पर हकीकत में उसमें रातों की बहुत नींद होती है, कभी कुछ आंसू होते हैं, कुछ पसीने की बूंदों की चमक होती है, और बहुत सारी मेहनत भी होती है.
1: बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा. चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, घर संभालना हो, परिवार की जरूरतें पूरी करना हो, फिर अपने काम के लिए थोड़ा समय निकालना हो, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनकी दिनचर्या के लिए, कई बार तो ऐसी महिलाओं को देर रात तक भी काम करना पड़ता है. ये सब आसान नहीं होता लता, लेकिन जब कोई महिला अपने सपनों को लेकर गंभीर होती है तो वो अपना रास्ता खुद बना ही लेती है. और सखियों, सबसे जो अपना अपनी जो पहली कमाई होती है महिलाओं के लिए, जो उद्यमी महिला है उनके लिए, वो एहसास है, वो एहसास जो जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसासों में एक होता है, अपने पांव पर खड़ा होना.
0: बिल्कुल बिल्कुल. और यही जो बच्चों के लिए जो छोटी छोटी चीजें वो लेके आती है, घर में छोटा छोटा सामान इकट्ठा करती है, तो ये जो खुशी जो होती है ना वो उसके आत्मसम्मान को भी बढ़ाती है और संतोष को भी बढ़ाती है. और सखियों, आज महिलाएं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए भी बहुत रास्ता बना रही है.
1: आज छोटी बच्चियां भी अपने मम्मी के साथ मिलकर, अपनी माओं के साथ मिलकर काम कर रही हैं और देख रही हैं कि सपने देखना ही सिर्फ एक चीज नहीं होती, सपनों को साकार भी किया जा सकता है. वही बात है कि हम जो चलने लगे तो चलने लगे ये रास्ते.

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने

0: वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
1: हेलो मम्मा।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
4: सखियों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम नारी वाटिका में। सखियों, जब भी हम किसी सफल महिला की कहानी सुनते हैं या उनके बारे में चर्चा करते हैं तो अक्सर उनकी उपलब्धियां तो दिखाई देती हैं लेकिन उसके पीछे का संघर्ष नजर नहीं आता लोगों को। लता, किसी भी महिला के लिए अपना काम शुरू करना, सिर्फ बिजनेस शुरू करना या सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता, बल्कि खुद पर एक विश्वास लाना, अपने ऊपर एक वो जो कहते हैं ना सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसे हम कहते हैं, वो भी बहुत जरूरी होता है उनके लिए। कई बार महिलाएं खुद अपनी क्षमता पर शक करने लगती हैं क्योंकि समाज में ना लता हमेशा महिलाओं को सीमित सोच के साथ देखा गया है कि महिलाएं ये नहीं कर सकती या महिलाओं को क्या करना चाहिए। प्रॉपर टू डू लिस्ट लेडीज के लिए हमेशा रहती है,
5: हमेशा
4: समाज
5: बनी
4: में
5: रहती है। बिल्कुल सही कहा आपने।
4: लेकिन अपना धीरे धीरे ये सोच बदल रही है और इन सोच से सभी लोग बाहर उठ रहे हैं, लेकिन आज वो सवाल पूछ रही हैं समाज से जिन्होंने उनको पहले बहुत सारे टू डू लिस्ट या बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, उनसे वो सवाल पूछ रही हैं और निर्णय ले रही हैं, रिस्क भी ले रही हैं।
5: हाँ तमन्ना, और सबसे जरूरी बात है कि इन सब दौर से गुजरते हुए वो खुद को मांझ रही है, संवार रही है और अपनी पहचान खुद बना रही है। लेकिन ये सफर मैंने कहा ना इतना आसान नहीं है। कहीं महिलाओं को आज भी सुनना पड़ता है इतना काम करने की क्या जरूरत है, भाई पति कमा तो रहा है अच्छा खासा, उससे काम चलाओ, बेवजह बच्चों को छोड़ के तुम मुंह उठा के निकल जाती हो, पीछे घर का काम भाइयां देखती हैं, और ऐसे बहुत सारे जुमलों को उसका शिकार होना,
4: गिल्ट ट्रिप,
5: गिल्ट, हाँ उसको गिल्ट दिया जाता है। लेकिन कई बार लोगों ने महिलाओं का सफल होना भी बहुत उनको सहज भी नहीं लगता, पर कहते ना बदलाव बहुत जरूरी है और बदलाव यहीं से शुरू होता है और वो महिला हार नहीं मानती।
4: बिल्कुल, लेकिन बदलाव जो है वो इसलिए आया है क्योंकि महिलाओं ने कभी हार नहीं मानी अपने हक के लिए। वो पहले भी आवाज उठाती थी और वो आज भी आवाज उठा रही हैं, लेकिन समाज धीरे धीरे ही उन्हें अपनाएगा क्योंकि सशक्त महिला जब हो जाती है तो समाज के मन में और भी सवाल होने लगते हैं। और जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनको एक गिल्ट देना, एक गिल्ट ट्रिप पे वो उनको भेज देते हैं
5: इमोशनली, जिसको कहते हैं इमोशनल टॉर्चर, इमोशनल मेंटल, उनको इस लेवल पे ले जाके खड़ा कर देना,
4: बच्चों का ध्यान,
5: बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, पीछे बूढ़े माँ बाप है, जबकि ऐसा नहीं है। हर महिला जब घर से बाहर निकलती है तो उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने घर की व्यवस्था को देख के निकलती है,
4: बिल्कुल
5: बच्चे भी तो उसके अपने हैं, है ना।
4: बिल्कुल, और सखियों हमें भी महिलाओं के काम को गंभीरता से लेना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, हम किसी समय में किटी पार्टी के बारे में बात कर रहे थे, या फिर मेला था, याद है आपको, तो जो भी आपका किटी सर्कल है, जो भी आपके दोस्तों का जो समूह है, सखियों का जो समूह है, उसमें अगर कोई छोटा व्यवसाय शुरू कर रहा है तो उनका सहयोग करें, उनसे सामान खरीदें या फिर उनका प्रचार प्रसार करें, उनका साथ दें, उनकी मेहनत की तारीफ करें, सराहना करें।
5: तो यानी अब बहुत जरूरी है कि महिला को महिला का साथ देना, है ना, क्योंकि अब महिलाएं भी साथ दे रही हैं और यही सबसे खूबसूरत चीज है क्योंकि अब वो एक दूसरे के वैल्यू करना समझ गई है कि क्योंकि अब वो लाइन नहीं रही कि एक महिला महिला की दुश्मन रह गई, है ना। बड़ा अजीब लगता था सुनने में, पर ठीक है, परिस्थितियां सर्कमस्टांसेस अलग अलग हो सकते हैं, सिचुएशन अलग हो सकते हैं, मगर आज हर महिला अगर एक दूसरे का साथ दे, उसको आगे बढ़ाने में प्रोत्साहित करे, तो मुझे लगता है कि वही उसके लिए एक सबसे बड़ी संबल और बड़ी आगे बढ़ने की मजबूत सीढ़ी हो सकती है।
4: बिल्कुल, एक एक वो क्या बोलते हैं, वुमेन सपोर्ट, वो बहुत जरूरी है उनके आत्मविश्वास को और बढ़ावा देने के लिए।

0: नहीं रखती, मानसिक तनाव में रहती है, और काफी हद तक जब इन चीजों के साथ जब वो तालमेल नहीं बैठाती तो कई बार अपने सपनों को भी पीछे छोड़ देती है। पर अब जरूरी है कि उनको अपनी सोच बदलनी चाहिए और महिलाएं जो कुछ अपने लिए करना चाह रही है और या करना चाहिए, उनको 1% भी ये सोच नहीं सोचना चाहिए कि मैं मेरे स्वार्थ के लिए कुछ कर रही हूँ।
1: बिल्कुल, ये स्वार्थ नहीं, ये तो आत्मसम्मान की बात हो गई, आत्मविश्वास की बात कह सकते हैं, इसमें स्वार्थ नहीं हो सकता। और सखियों देखिए, ये बात मैं 100% अग्री करती हूँ जो अभी लता ने कहा कि आप अपना काम भी करें, आप आगे भी बढ़ें, लेकिन साथ ही साथ अपना ध्यान भी पूरा रखें। देखिए अभी गर्मी का माहौल है, नौ तपा भी चल रहा है, तो आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अगर आप सुबह उठ के परिवार का सारा काम करके अपने काम पर जा रही हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए भी समय निकालें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मेडिटेशन करें, अच्छा आहार लें, जूस हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखें। क्योंकि अगर ये एक, मैं हमेशा अपनी मम्मी को एक बात कहती हूँ कि आप हमारे घर का इंजन है, अगर हमारे घर का इंजन थोड़ा सा भी पस्त या फिर थोड़ा सा भी धीरे हो जाए, डगमगा जाए, तो पूरा घर एक बारी के लिए कोलैप्स कर जाएगा, यानी कि पूरा घर हिल जाता है। तो आप, हम जो महिलाएं होती हैं वो घर के एक इंजन के रूप में होती हैं, तो आप अपना पूरा ध्यान रखें ताकि ये जो हमारी जो परिवार रूपी रेल है ये निरंतर चलती रहे।
0: और तमन्ना बहुत जरूरी है कि अपनी सखियों से जुड़ी रहे, जैसे हम हमारी सखियों से जुड़े रहते हैं, है ना। तो क्योंकि दोस्त वो होते हैं जो आपको जज नहीं करते, सहेलियां वो होती है जो बिल्कुल अपनी बात, मन की बात, उससे मानसिक तनाव भी कम हो जाता है ना। क्योंकि क्या होता है कि दिन भर में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कई बार वो बोल नहीं पाते और वो धीरे धीरे धीरे धीरे इमोशंस के रूप में आपके अंदर इकट्ठे होते जाते हैं। और ये साइंस भी कहता है तमन्ना कि यदि आपका कोई भी इमोशन अगर वो सप्रेस हो गया, मन में रह गया, तो वो बॉडी के किसी न किसी पार्ट में वो डिजीज के रूप में निकल के आता है।
1: बिल्कुल, और आपको आपको एक मेंटल सपोर्ट यानी कि आपके मानसिक तनाव को दूर करने के लिए एक इमोशनल सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। और उसके लिए अगर आपके आसपास आपके दोस्त हैं, आपकी सखियां हैं, तो वो इमोशनल सपोर्ट हमेशा बना रहता है। क्योंकि महिलाओं का जीवन कितना भी सहज हो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र से आते हो, कितना भी सहज आपका जीवन हो, लेकिन ऐसी कोई भी महिला नहीं है जिसने आज तक अपनी जिंदगी में संघर्ष ना किया हो किसी स्तर पर। तो आपके लिए वो एक जो इमोशनल सपोर्ट होता है वो आपके दोस्तों से, आपकी सखियों से मिलता है। तो उनके साथ बने रहिए, बातचीत कीजिए, दिल की बात शेयर कीजिए, और वो जो 4 बजे का चाय का टाइम होता है वो आप उनके साथ बिताइए।
0: बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि दोस्तों को करीब रखिए, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे ही हमारे प्यारे से जो गीत हैं वो हमेशा गुनगुनाते रहिए, सुनते रहिए, मन को हल्का रखते रहिए।

तमन्ना, पता है महिलाओं की जिंदगी है ना बहुत खास होती है, शायद इसलिए क्योंकि उसकी कई भूमिकाएं होती है, घर संभालना, रिश्ते भी निभाना और अब अपने सपनों को भी समय देना, ये इतना सब आसान नहीं होता। पर कई बार महिलाएं खुद को सबसे आखिरी में रख देती है, ये सबसे बड़ी दुख की बात है। और सबका ध्यान रखते रखते वो अपने स्वयं के स्वास्थ्य का भी

0: सखियों, कई बार हमें लगता है कि बदलाव बहुत बड़े स्तर पर ही दिखाई देते हैं, लेकिन असल बदलाव छोटे छोटे कदमों से शुरू होते हैं। अभी जब ये म्यूजिकल ब्रेक चल रहा था तो हमारी एक बहुत लंबी डिबेट चल गई इसी बात पर कि समाज में आखिर क्यों महिलाओं को उनके काम के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, और क्यों अक्सर हर छोटे स्तर पर, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे वो कोई भी वर्ग का हो, किसी भी वर्ण का हो, उनको किस तरह के स्ट्रगल्स देखने पड़ रहे हैं अगर वो अपनी लीक से हटकर, यानी कि जो कथा कथित तौर पे जो सामाजिक तौर से जो चलते आ रहे रीति रिवाज, उनसे हटकर अगर वो कुछ काम करते हैं तो किस तरह से समाज उनको, उन पर रिएक्ट करता है या अपनी टिप्पणी करता है। क्योंकि अगर एक महिला है, महिलाओं को अक्सर हमने देखा है कि वो रसोई घर का काम करती है, बच्चों को संभालती है, परिवार को संभालती है,
1: अगर एक सेट पैटर्न है
0: और पुरुष हैं वो काम पर जाते हैं, वो डॉक्टर इंजीनियर या फिर जो भी उनका कॉर्पोरेट फील्ड है उन पे जाते हैं, लेकिन अगर महिला अपनी लीक से हटकर घर का काम भी संभालती है और काम करती है अपने आत्मविश्वास के लिए, तो समाज उनको तंज कसते हैं, या फिर पुरुष भी हो वो अपनी लीक से हटकर अगर वो कुछ काम कर रहे हैं तो उनको भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं।
1: तो ये जरूरी है ना तमन्ना कि अब ये सोच बदलनी चाहिए और काफी हद तक हमारे पुरुषों को भी आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब जब व्यक्ति कहते हैं ना गाड़ी के दोनों पहिया हैं, दोनों को बैलेंस होना चाहिए, और जब दोनों ही कमाने निकल रहे हैं तो बहुत हद तक जिम्मेदारी बनती है आपके को पार्टनर की कि वो भी आपके घर के कामों में मदद कराए। बहुत छोटे छोटे काम, बहुत जरूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े काम करें, बट छोटे छोटे काम, जैसे अगर वो सुबह जल्दी नौकरी पे निकल गई है तो पीछे का घर का काम आपने समेट लिया, अगर मेड आई है तो उसके साथ खड़े होके काम करवा लिया, अगर आपने मशीन में कपड़े डालने हैं तो कपड़े डाल दिए, बर्तन छीके से निकाल कर सुख ढंग से उनको सफा कर दिया, या कुछ नहीं तो कम से कम बच्चों को ही संभाल लिया। क्योंकि आज अब वो सोच बदल गई कि ये काम सिर्फ महिलाएं ही करेंगी, ये काम पुरुष नहीं करते।
0: बिल्कुल।
1: तो ये समय और ये सोच हमें जरूरी है कि हमें अब हमारे आने वाले बच्चों को भी ये सिखाना बहुत जरूरी है कि काम, वो कहते हैं ना, काम में कोई मेड़ी नहीं होनी चाहिए। हाँ, है ना, क्योंकि ये आपका अपना घर है।
0: बिल्कुल।
1: अपने घर में आप अपने घर में काम कर रहे हैं तो उसमें वो डिस्क्रिमिनेशन होना ही नहीं चाहिए कि ये फला काम भाई करेगा, फला काम बहन करेगी। और इवन अब तो खाना बनाना भी पुरुष बहुत अच्छा सा सीखने लगा है। और क्या फर्क पड़ता है कि यदि आपकी पत्नी काम पे जा रही है या काम से वापस आ रही है और आपने अपने लिए और उसके लिए भी दो फुलके सेक लिए, है ना, कितने प्यार से मिलकर बैठ के खा सकते हैं।
0: और ये पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी बनाता है, क्योंकि अगर आप देखें कि काम में भी स्ट्रेस रहता है कुछ, अगर हम
1: भी जद्दोजहद तो करके आ ही रही है, ट्रैफिक को क्रॉस करके वो भी आ रही है,
0: पॉजिटिविटी आ जाती है।
1: बिल्कुल,
0: एक खूबसूरत क्या बोलते हैं माहौल बन जाता है कि आप घर आए और आपको खाना तैयार मिला, और यही अगर आपकी छुट्टी है तो जैसे ही आपके पति भी, आपके हस्बैंड भी अगर घर आते हैं तो उनको भी जब खाना तैयार मिलता है तो एक पॉजिटिव माहौल। कहने का मतलब ये है कि ये इस तरह से नहीं हो सकता कि काम 70% आप या 30% कोई करे, काम चलता है 50-50 के हिसाब से।
1: बिल्कुल, और दिल भी उसी तरह आपस में प्यार भी करते हैं, धड़कता भी है, और इसी तरह जिंदगी भी है जो खूबसूरत चलती

0: सखी, हम बात कर रहे थे महिला के आत्मविश्वास, उसके संघर्ष की, और इसी के अंतर्गत आता है महिला उद्यमी की, कि जब यह कोई महिला पहली बार अपना बनाए हुए प्रोडक्ट की कीमत तय करती है तो वो उसके आत्मविश्वास का हिस्सा होती है। जब कोई महिला अपने सपनों को शायद से निकल कर मैं कर सकती हूँ तक ले जाती है तो वही असली बदलाव होता है। और दोस्तों, हमें भी ऐसी महिलाओं का जरूर साथ देना चाहिए। और अगर आपके आसपास यदि कोई महिला है और उसने कोई कार्य शुरू किया है और वो जीवन के संघर्ष को बढ़त करते हुए भी आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है, तो आज उन्हें जरूर बताइए कि आपको उन पर गर्व है, क्योंकि कई बार एक छोटा सा प्रोत्साहन भी इंसान को बहुत ताकत देता है।
1: सगियो, आज की जो बातचीत थी ये कोई ज्ञान वर्धक या फिर ऐसा कोई उपदेश देने हम नहीं आए थे। हम बस ये कहना चाहते थे कि सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती है।

0: अब जो कि ये सिलसिला चल चुका है और ये एक लहर आ चुकी है कि अब अपने लिए, अपने आत्मविश्वास के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए हम घर और साथ ही साथ अपना व्यवसाय दोनों संभाल सकते हैं, तो इस लहर को चलने दीजिए, क्योंकि अगर मेहनत सच्ची हो और इरादे मजबूत हो तो रास्ते खुद म
1: जरूर
0: खुद बन
1: बनते
0: जाते
1: हैं। जी
0: हैं।
1: जी

जैसा कि आज की इस खूबसूरत दोपहर में हमने बात की उन महिलाओं की जो अपने सपनों को हकीकत में बदल रही है, ऐसी महिलाएं जो जिम्मेदारी के साथ अपने हुनर को भी पहचान दे रही है, जो धीरे धीरे समाज की सोच बदल रही है और सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रास्ते बना रही है। और सच कहें तो बदलाव हमेशा ऐसे ही शुरू होता है, धीरे धीरे शांत तरीके से लेकिन बहुत गहराई के साथ। और इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ थे HPT पे विक्रम सिंह भाटी, प्रेम किशोर सेन, कंट्रोल रूम से थे हमारे साथ सुनील जांगिड़ और ये खूब

0: सुर से नगमे आपके लिए लेके आए थे नेमीचंद।
1: राजस्थान की महिलाएं आज अब इस समय में एक खूबसूरत सफर पर निकल चुकी हैं, जहां वो अपनी पहचान बना रही हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन रही है। और त्योहारों का भी सिलसिला शुरू हो चुका है, तो इस खूबसूरत रौनक के बीच हम यही उम्मीद करेंगे कि हर घर में खुशियां रहे, हर महिला को आगे बढ़ने का मौका मिले और हर सपना साकार हो और उसे सम्मान मिले। आप सभी को आकाशवाणी की पूरी टीम की तरफ से

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी वाटिका। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी और FM सन सिटी चैनल है। दिन के 2:15 होने वाले हैं। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमरीका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में PV सिंधु और लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में OSM प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
2: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। NTA ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
3: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री HK पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि DK शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज बंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे।
4: कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और DK शिवकुमार के बीच आज हुई नाश्ते की बैठक के

0: दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना इस बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धरमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोकभवन जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। श्री सिद्धरमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं। इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जल डमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें ज़हरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यांची ने किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिज सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के 2 व्यक्तियों को कल अदालत ने पाकिस्तानी ISI के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीन और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @XHIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।
3: मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इंदौर से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। यहाँ 50 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक एक हिंदू परिवार ने शहर काजी को फूलों का हार पहनाकर बग्घी में ईदगाह तक पहुँचाया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता

0: अजा की एक रिपोर्ट।
1: ईद उल अजा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखुदा मस्जिद में नमाज दो सत्रों में आयोजित की गई ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो। राज्य सरकार ने शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के पुराने निर्देश की सख्ती से लागू किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से कश्मीर नहार।
0: श्रीलंका से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईद उल अजहा का त्यौहार वहाँ हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
2: आज श्रीलंका में ईद उल अजहा यानी बकरीद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने अमन, भाईचारे और कुर्बानी के संदेश को याद किया। परिवारों और समुदायों ने मिलकर त्योहार मनाया तथा जरूरतमंदों में भोजन और सहायता वितरित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादिसनायका ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। अहमद मुईन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बारासात निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनके जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को उनके जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जनकल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान के रिको गुंजी को सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुस जलडमरू मध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है।

0: और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: रफी लता मंगेशकर के युगल स्वरों में शागिर्द फिल्म का गीत आपने सुना। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: फिल्म औरत में आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें। शकील बदायूनी के बोलों को सुरों में ढाला रवि ने। श्रोताओं, सदाबहार नगमे कार्यक्रम संपन्न होता है, दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ

0: सखी सहेली सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। आरती आपको भी मेरा नमस्कार।
1: सोनाली आपको और सभी सखियों को सभी सखाओं को श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: और आरती कैसी हैं आप?
1: बस ठीक है, गर्मी में जितना ठीक हो सकते उतना ही ठीक है क्योंकि जो धूप के हाल है गर्मी के हाल है ना, बस पूछिए मत।
0: नहीं पर हम अगर गर्मी की बातें करते हैं तो गर्मी ज्यादा लगती है।
1: हाँ ये बात भी है,
0: इसलिए हमें ना गर्मी की बातें नहीं करना
1: है, सोचना ही नहीं है कि हाँ। गर्मी है, अरे बिल्कुल गर्मी नहीं है
0: तभी तो हम खुश रह सकते हैं ना, क्योंकि खुश रहने के लिए हमें बस वजह ढूंढना चाहिए, है ना। क्योंकि खुशियों की वजह अगर हम ढूंढते हैं तो सचमुच जिंदगी हमारी बहुत खुश हो जाती है।
1: बिल्कुल, और मैं तो कहती हूँ वजह भी ढूंढने की क्या जरूरत है, बस हंसिए मुस्कुराइए खुशियां मनाइए,
0: बहुत प्यारे प्यारे गाने सुनिए, विविध भारती सुनते रहिए, है ना। और आज के विषय बता दें।
1: आज के विषय है हम बात करेंगे आज अपने बच्चों की जो झूठी झूठी प्रशंसा करते हैं उनके ऊपर। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम बहुत सभी लोग अक्सर करते हैं क्योंकि अपने बच्चे सभी को प्यारे होते हैं तो वो आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। तो इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि आप तो नहीं है या आप हैं तो आप भी कितनी मतलब इस चीज को करते हैं कि झूठी प्रशंसा करते हैं, कितना करते हैं, तो इसके बारे में आप बताइए। या कोई आपको ऐसा कुछ अनुभव हुआ हो, किसी पड़ोसी ने कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा बोल दिया हो। और आज हम बात करेंगे कहानी पद्मश्री के अंदर किसके बारे में,
0: के चल्लमल नारियल अम्मा, उनकी बारे में हम जानकारी देंगे। और साथ ही मुझे कुछ कहना है, इसमें हमें श्रोताओं से हम गुजारिश करेंगे कि भाई आप लिखिए कि गेमिंग का दलदल क्या है, इसमें आपके इर्द गिर्द के आसपास के लोग इस दलदल में क्या फंसे हुए हैं या आप इससे दूर है, इस विषय पर हमें लिखिए कमेंट्स, क्योंकि ये सिर्फ श्रोताओं का सेगमेंट है ना।
1: और एक बात मैं आपको बता दूं सोनाली, इस दलदल में थोड़े से पहले मैं खुद ही फंस गई थी बिल्कुल। और मुझे ऐसा हो गया था ना कि मैं बस खेलती चली जा रही हूँ और एक लेवल दो लेवल मैंने कहा कि बस किसी तरह से अगले लेवल पहुंच जाऊं, फिर मैंने कहा ये मुझे हो क्या रहा है, मैं पूरे टाइम सिर्फ इसी को कर रही हूँ। तो ये चीज से आप बाहर निकले, तो इसके बारे में बात करेंगे विस्तार से बाद में। और भी तो विषय है,
0: और आज एक खास दिन है आरती, ईद उल अजहा, बकरीद भी है आज, तो उस बारे में भी हम बहुत सारे सखियों को श्रोताओं को शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। और साथ ही उपयोगी टिप्स, ये बहुत जरूरी टिप्स है आज की,
1: ताकि हमारा नेट जो है वो एकदम चलता रहे और हम अपना आराम से विविध भारती बिना उसके रोक टोक के सुन सके आराम से। और साथ ही और भी अगर हम कुछ देखना चाह रहे हैं, कुछ मनोरंजन करना चाह रहे हैं तो कर सकें, तो उसके लिए जरूरी है वाईफाई।

0: क्योंकि डेटा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, तो वाईफाई होता है ना वो बहुत आराम से चलता है, पूरी फैमिली भी उससे कर सकती है, लाभ उठा सकती है, तो उसकी स्पीड अगर धीमी है तो हम कैसे उसको सही कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे।
1: और आप क्या करें,
0: एक गीत सुनते हैं।
1: तो सुनते हैं गीत।

कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: तो भाई
1: सच में बहुत महके हुए से यार। कभी देखो ना किसी को कि कोई अपनी फ्रेंड है तो बहुत मुस्कुरा सी रही, तो हमें पता चल जाता है कुछ तो राज उसने छुपा के रखा है। जैसे अभी मुझे लग रहा है सोनाली को देख के कि कुछ राज तो है, कि यानी वो पढ़ने वाली है, कोई कमेंट या कुछ बताने वाली है।
0: जी नहीं, आज हम सबसे पहले तो हमारे सभी सखियों को, श्रोताओं को बकरीद या ईद उल अजहा की हम
1: बहुत बहुत
0: मुबारक।
1: मुबारकबाद देते हैं
0: जी, और ये जो इस्लाम का दूसरा सबसे प्रमुख और पवित्र त्योहार है, जो पैगंबर हजरत इब्राहिम की अटूट आस्था, त्याग और समर्पण की याद में मनाया जाता है। ये त्योहार इस्लामिक कैलेंडर के

0: 12वें महीने की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। ये रमजान के खत्म होने के लगभग 70 दिन बाद आता है। ये चांद के देखने पर निर्भर करता है, इसलिए देश और स्थान के अनुसार इसकी तारीख में थोड़ा अंतर हो सकता है।
1: जी बिल्कुल। और बकरीद के दिन सुबह ईदगाह या मस्जिदों में विशेष ईद की नमाज भी अदा की जाती है और नमाज के बाद लोग एक दूसरे को गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। इस दिन घरों में खासतौर पर बिरयानी और अन्य लजीज पकवान बनाए जाते हैं और गरीबों और जरूरतमंदों को दान या जकात देना इस त्योहार का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है।
0: तो सारे हम सखियों को, श्रोताओं को ईद की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं।

0: हाँ तो सुनाली कुछ सच में इतना बढ़िया लगता है ना गाना ये.
1: जब है ना, जब कोई भी त्योहार हो तो अलग ही एक ना आनंद की अनुभूति होती है ना,
0: बिल्कुल.
1: फिर घर में सब लोग मिलते हैं और खुशियों की बरसात होती है.
0: सच में.
1: वैसे कुछ शख्सियत भी ऐसी होती है ना जिनके व्यवहार के कारण, जिनके कार्यों के कारण हमें ना हर बार एकदम खुश खुश रहते हैं हमें ना उनके
0: बिल्कुल.
1: काम में.
0: हमें एक प्रेरणा मिलती है, कुछ
1: जी
0: ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिनके वजह से हमें प्रेरणा मिलती है, हम भी कुछ आगे करने का सोचते हैं या हम ये निर्णय लेते हैं कि हमें अपने लिए आगे क्या करना चाहिए. हम ऐसे बैठे हैं तो हमें और कुछ हम क्या कर सकते हैं, हम अपने टैलेंट को किस तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं. तो बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं, उनमें से आज हम एक व्यक्तित्व के बारे में बात करने वाले हैं.
1: जी
0: आज हम बात करेंगे
1: के चेलम्मल
0: जी.
1: जी, जिनका जन्म 6 फरवरी 1957 को उनका हुआ था जन्म, और उनका नाम है श्रीमती चेलम्मल, जिन्होंने कक्षा 6 तक की पढ़ाई की और नारियल अम्मा के नाम से जो मशहूर है. और चेल्लम्मल दक्षिण अंडमान के रंगाचांग की रहने वाली है, और चेल्लम्मल 10 एकड़ जमीन

0: जमीन पर एकदम अलग तरह से उन्होंने खेती की, जैविक तरह की उन्होंने खेती की।
1: बिल्कुल, और वो जैविक खेती के माध्यम से अनानास, केला, लौंग और अदरक की खेती करती हैं। इसके अलावा वो अपने बगीचे में अनोखे तरीके से नारियल की खेती करती हैं, जिसके कारण वो किसानों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गई और लोग उन्हें नारियल अम्मा कहने लगे।
0: और उन्होंने 150 से अधिक किसानों को जैविक खेती के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने कई सरल तरीके निकाले।

0: उन्होंने कई सरल तरीके निकाले जिससे नारियल की खेती बहुत आसानी से की जा सके, इसमें लागत भी कम आती है और पेड़ों को भी नुकसान से बचाया भी जा सकता है।
1: बिल्कुल, और उन्होंने नारियल और ताड़ के पेड़ों को नुकसान से बचाने के लिए सस्ते तरीके खोजे हैं। वो हमेशा दूसरे किसानों के साथ अपने विचार साझा करने के लिए तैयार रहती हैं। उन्होंने आसपास के गांवों के 170 से अधिक किसानों को प्रशिक्षण भी दिया है।
0: और कृषि कॉलेज और संस्थान अपने छात्रों को अध्ययन के लिए उनके खेत पर भेजते हैं जहां वे नारियल के पेड़ उगाती है। उन्हें दालचीनी, तेज पत्ता, काली मिर्च, पान का पत्ता, रतालू, सुपारी, अदरक, हल्दी, पपीता, केला, चीकू, हेलिकोनिया फूल और गेंदा और बहुत सारी सब्जियों के फसलों को उगाकर उन्होंने अपनी आमदनी में भी बढ़ाई की।
1: बिल्कुल, कितनी ज्यादा चीजों को उन्होंने, वो भी देखिए आज के समय में जब फसलों को इतना ज्यादा जब नुकसान पहुंचता है या इस रासायनिक चीजों से, उस समय वो जैविक खेती कर रही है, कितनी अच्छी बात है। और श्रीमती चेल्लम्बल ने नारियल को चूहों से होने वाले नुकसान पर काबू पाने के लिए नए उपाय विकसित किए। वो अपने खेत में जैविक कृषि तकनीकों को अपनाती हैं, साथ ही कीटों से फसलों को होने वाले रोगों और नुकसान से बचाव के लिए भी उन्होंने बहुत से कारगर उपाय विकसित किए जो बहुत काम के साबित हुए।
0: और चेल्लम्बल ने अपने खेत में हरित खाद और गोबर की खाद का उपयोग किया है, साथ ही वो परागण के लिए मधुमक्खी पालन करती है और लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करती है। अंडमान में खेती करते हुए श्रीमती चेल्लम्बल ने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है।
1: बिल्कुल, देखिए कितनी बड़ी बात है, वो मधुमक्खी जो जिसके बारे में कहा था कि बहुत जरूरी है ना इस पृथ्वी को जीवन को बचाए रखने के लिए, तो वो परागण के लिए बहुत सारी फसलों का परागण वो करती है मधुमक्खी, तो उसके लिए भी इन्होंने कितना किया, तो बहुत ज्यादा वो समझ लीजिए पर्यावरण की रक्षा की तरीके से एक तरह से। और लेकिन उनका अब जो खेत है वो लोगों के लिए, कृषि और छात्रों के लिए एक आदर्श मॉडल बन चुका है। उनका खेत फसलों और मिट्टी की उत्पादकता को बनाए रखते हुए बहुत अच्छी आय का साधन है। उन्होंने अंडमान में एग्रो टूरिज्म के क्षेत्र में एक अवसर देखा, इसलिए उन्होंने अपने खेत में एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा भी दिया है।
0: अब स्थानीय और पूरे देश के अलावा विदेशों से पर्यटक उनके खेत को देखने समझने आते हैं और श्रीमती चेल्लम्बल को अब तक बहुत से पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं। उन्हें केरल के नारियल विकास बोर्ड से सर्वश्रेष्ठ नारियल किसान का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है।
1: बिल्कुल, और मसालों और फूलों की खेती के क्षेत्र में प्रगति के लिए इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च फाउंडेशन अवार्ड, साथ ही इनोवेटिव फार्मर अवार्ड, ICAR और CIARI पोर्ट ब्लेयर द्वारा आयोजित किसान मेले में उन्हें सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार भी मिला है।
0: और द्वीप पर्यटन महोत्सव 2014 के दौरान कृषि विभाग द्वारा राज्य स्तर पर आयोजित फल फूल और सब्जी के लिए प्रथम पुरस्कार और वर्ष 2016 में केंद्रीय द्वीप कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर की ओर से प्रगतिशील सर्वश्रेष्ठ कृषक का पुरस्कार भी आपको मिला है।
1: बिल्कुल, और उनके अनोखे जैविक कृषि तरीकों, नवाचार और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए उन्हें 2024 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया।
0: और सचमुच ऐसी जब महिलाएं हमारे इर्द गिर्द होती है तो हमें कितना इन्हें गर्व महसूस होता है कि हमारे भारतवर्ष में इतनी सारी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए और हमारी सरकार उन्हें पद्मश्री से सम्मानित
1: करती है। पढ़ाई ना होने का रोना भी नहीं रोती है।
0: बिल्कुल,
1: पढ़ाई सिर्फ देखिए हमें एक डिग्री देती है और हमें थोड़ा हमारा ज्ञान हमारा विकसित करती है, लेकिन जो हमारे अंदर जो जो एक कला होती है ना, वो हर चीज को, वो जो कला होती है जो मिट्टी को भी छू ले तो सोना बन जाए, वो कला को अपने निखारना चाहिए।
0: और अब एक संदेश सुन ले।
1: बिल्कुल,
2: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
3: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
2: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
4: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
2: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
4: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
2: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: तो आरती, हमारी अपना कार्यक्रम सखी सहेली, उसका जन्मदिन है तो हमारे मन में भी बहुत खुशी है कि हम बहुत धूमधाम से पूरे श्रोताओं के संग सखियों के संग ये हमारा जन्मदिन मनाएंगे। तो

0: ओ, आप आ रही है ना?
1: बिल्कुल आ रहे हैं। आना ही है भाई, जन्मदिन मनाना है तो जश्न में शामिल तो होना ही है।
0: और हमारे बहुत सारे श्रोता हैं, हमारी सखिया वे भी आएंगे, पर इससे पहले हम एक गाना सुन ले।
1: बिल्कुल सुनते
0: सुनते
1: हैं।
0: हैं गीत।

0: तो आंखों ही आंखों में हम पता कर लेते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है सच बोल
1: हाँ बिल्कुल, वो
0: रहा
1: तो पता चल ही जाता है चेहरे को देख के।
0: है कि देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना, हाल ही में रिजल्ट आए बच्चों के, तो कुछ कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है कि भले उनके 57% हो तो कहेंगे कि हमारे बच्चों को 75%
1: हाँ ये
0: आए
1: तो होता है, ये तो होता है।
0: और वो ये भी नहीं, वो उन्हें मालूम होता है कि कोई थोड़ी मार्क लिस्ट देखने आने वाला है, उन्हें तो नहीं मालूम पड़ेगा। पर देखिए एक झूठ के पीछे हमें 100 झूठ
1: सौ
0: बोलना
1: झूठ बोलने
0: पड़ता है।
1: पड़ते हैं।
0: और क्या होता है ना, बच्चों को जब ये झूठ सुनने की आदत हो जाती है ना, तो उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि उनकी झूठी तारीफ हो। और फिर आगे चल के जब उन्हें आगे की दुनिया में जाके अगर किसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो वे टूट कर बिखर जाते हैं,
1: सही
0: क्योंकि
1: बात है।
0: उन्हें जो है ना असफलता का सामना करने की आदत ही नहीं होती है
1: नहीं,
0: उन्हें।
1: उनको लगता है कि नहीं, अब हमारे साथ जब आप उनके सामने उनकी तारीफ कर देते हैं झूठी ना, तो उनको लगता है नहीं कोई बात नहीं, हमारे अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मेरी मम्मी या मेरे जो परिवार वाले हैं वो कह ही देंगे, किसी ना किसी से कुछ तो कह ही देंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फिर वो उतनी मेहनत भी नहीं करते, वो अपनी पढ़ाई को लेकर उतना सीरियस भी नहीं होते, और फिर अपने वो खेल में उसी तरह से अपने दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं, जबकि आप उन्हें जब समझाएं चीजें वो चीजों को कि नहीं तुम्हें आगे अच्छा करना है, और वो जो चीज उनकी रिजल्ट है वही

0: आप सबको बताएं
1: जी.
0: तो उनको लगेगा नहीं हमें अब आगे करना पड़ेगा कुछ.
1: जी. एक हमारे साथी ने लिखा है, बच्चों की झूठी या बढ़ा चढ़ाकर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के बजाय उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है. इससे बच्चों में अहंकार आ जाता है, वे वास्तविक चुनौतियों का सामना करने से डरने लगती है और माता पिता की विश्वसनीयता भी कम हो जाती है. बिना किसी खास वजह के तारीफ करने से बच्चे खुद को हर चीज में परफेक्ट समझने लगते हैं. जब वे असल दुनिया में असफल होते हैं तो गहरे गुस्से या निराशा में चले जाते हैं. जब बच्चों को लगता है कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं और हमेशा सर्वश्रेष्ठ है तो उनके भीतर नई चीजें सीखने मेहनत करने की ललक कम हो जाती है. उनके प्रयास की तारीफ करें, परिणाम की नहीं. तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें तो फर्स्ट आना ही है. कहना तो ये चाहिए कि मुझे अच्छा लगा तुमने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितनी मेहनत की. प्रयास अपना होता है, परिणाम दूसरों के हाथ में होते हैं. इससे बच्चों में लगन बढ़ती है. और बहुत बार बच्चों के टीचर अभिभावकों को शिकायत करते हैं, कुछ भी करने पर कहता है तो मैं कर लूंगा पर बहुत तेज हूं, करता कुछ नहीं है. तो टीचर की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी है. उन्हें सिखाए और हर काम परफेक्ट हो कोई जरूरी नहीं है. उस काम में निराशा भी नहीं होना चाहिए.
0: बिल्कुल. और लेकिन उस चीज को लेके इतना ज्यादा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए कि सामने वाले को आप कहें कि इस तरह से. तो बच्चे का जो मनोबल है ना, वो जो उसकी ललक होती है वो कम हो जाती है. इसलिए एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बात अगर झूठी प्रशंसा की हो तब बच्चे तो क्या बड़ों की भी नहीं करनी चाहिए. और अरे विविध भारती की भी झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए. हालांकि वो हमें ऐसा मौका कभी देता नहीं कि हमें उसकी झूठी तारीफ करनी पड़े. तो झूठी प्रशंसा खासकर बच्चों की तो नहीं करनी चाहिए. इससे उनकी सीखने की क्षमता कम हो सकती है, आत्मविश्वास में कमी आ सकती है. इसलिए झूठी तारीफ के बजाय उनके द्वारा किए गए प्रयासों की सच्ची सराहना करनी चाहिए और उन्हें सकारात्मक फीडबैक देना चाहिए.
1: क्या बात है.
0: एक हमारे आगे कर सकें.
1: जी. एक हमारे साथी लिखते हैं, तुम सबसे होशियार हो, तुम कभी गलती नहीं कर सकती है, तुमसे अच्छा कोई नहीं. ऐसी बातें सुनकर बच्चा धीरे धीरे वास्तविकता से दूर होने लगता है. जब बच्चे को बिना मेहनत के बार बार प्रशंसा मिलती है तो अपनी कमियों को समझ नहीं पाता. अतः माता पिता को चाहिए कि बच्चों की तुलना कभी दूसरों से ना करें और न ही झूठी प्रशंसा करके उन्हें भ्रम में रखे. सच्चाई, प्रोत्साहन और सही मार्गदर्शन ही बच्चे के अच्छे भविष्य की नींव बनते हैं. इसलिए बच्चों से प्रेम करें, उनका उत्साह बढ़ाएं, लेकिन प्रशंसा हमेशा सच्ची और उचित होना चाहिए.
0: बिल्कुल. और एक और श्रोता, इन्होंने बहुत बहुत बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो कुछ चीजें हम पढ़ लेते हैं इसमें से. तो उन्होंने लिखा है कि बच्चों की झूठी ये अत्यधिक प्रशंसा उनके विकास के लिए हानिकारक हो सकती है. ये उन्हें आत्ममुग्ध बना सकती है, असफलता से डरने वाला बना सकती है और उनमें वास्तविक क्षमताओं के प्रति संदेह पैदा कर सकती है. सच्ची और विशिष्ट तारीफ जैसे कि मेहनत, प्रक्रिया या व्यवहार की, इनकी आप तारीफ करिए. उनके आत्मविश्वास और लचीलेपन की तारीफ करिए. झूठी प्रशंसा के जो दुष्प्रभाव है वो ये देखने को मिलते हैं कि वो बच्चा अहंकारी भी हो जाता है, आत्ममुग्ध भी हो जाता है. और साथ ही अनावश्यक तारीफ बच्चों को अपने साथियों से ज्यादा श्रेष्ठ महसूस कराती है, जिससे वो उनमें अहंकार पैदा हो जाता है और वो विफलता से डरने भी लगते हैं और उनमें लगता है कि मैं बेहतरीन हूं. तो वो एक झूठ उनके अंदर आ जाता है.
1: एक हमारे साथी ने लिखा है आरती कि अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा, वैसे देखा जाए तो मैं कभी अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा नहीं करती, लेकिन हाँ जब भी वे कोई अच्छा काम करते हैं तो मैं उनकी दिल से तारीफ जरूर करती हूँ. मैं उन्हें कहती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया. मेरी बात सुनकर बच्चे खुश भी हो जाते हैं और उन्हें आगे और अच्छा करने का मोटिवेशन भी मिलता है. मेरा मानना है कि बच्चों की सही समय पर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और उन्हें बेहतर बनने की प्रेरणा देती है. इसलिए सकारात्मक सोच के साथ बच्चों की हौसला जरूर होनी चाहिए, बस झूठी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए.
0: बिल्कुल. एक और श्रोता जो कुछ इस तरह की बात लिखते हैं कि तुम सबसे होशियार हो, तुम कभी गलती नहीं कर सकते हो, इस तरीके की चीजें वो उन्होंने लिखी हैं. और साथ ही बच्चों की एक और जो श्रोता है जो लिखते हैं कि बच्चों की झूठी प्रशंसा करना उनके विकास के लिए नुकसानदायक हो सकता है और असफलता मिलने पर बच्चे जल्दी टूट जाते हैं, जोखिम लेने से डरने लगते हैं, वो नई चुनौतियां लेने से बचते हैं और उनको तारीफ की लत लग जाती है. वो केवल दूसरों को खुश करने के लिए काम करने लगते हैं और उनके अंदर सीखने की इच्छा खत्म होने लगती है. उन्हें लगता है कि वो पहले से ही सर्वश्रेष्ठ है, उन्हें और मेहनत की जरूरत ही नहीं है. और परिणाम की बजाय अगर बच्चे की मेहनत की हम तारीफ करें तो ज्यादा बेहतर होगा कि तुम बहुत अच्छे की बजाय कहें कि तुमने ये चित्र बहुत ध्यान से बनाया है. तो और साथ ही गलती होने पर उसे प्यार से सुधारने की प्रेरणा भी दें.
1: बहुत अच्छी बात. और एक हमारे साथी ने लिखा है कि मैंने अपनी जान पहचान परिवार में देखा है कि जिसका बच्चा औसत दर्जे का छात्र है, बहुत मेहनती भी नहीं है, इसमें कोई शिकायत नहीं. हर बच्चा अपना अपना व्यक्तित्व होता है. उसके गार्जियन अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा बेटा जब 12 तक अच्छी नंबर नहीं लाया तो मेहनत भी नहीं करना चाहता, तो क्यों उसे IAS IPS का ख्वाब दिखाया जाए. एक दिन कुछ ऐसा ही उसके साथ साथ हुआ और वो डिप्रेशन में चला गया, पर भगवान का शुक्र है लड़का आज सही सलामत है और अपने साधारण सी नौकरी और जिंदगी में खुश है। हमेशा ये ध्यान रखे कि भाग्य चमत्कार कभी कभी ही होते हैं, सब चमत्कार एक साथ नहीं होते। ये भी सही बात कही है। और आरती, अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक का।

0: ब्रेक
1: सच
0: के
1: में।
0: बाद हम हाजिर हैं, कार्यक्रम है सखी सहेली।
1: सच में सोनाली, जो बच्चों की अगर हम जब तारीफ करते हैं ना, तो उनकी अगर हम सकारात्मक तारीफ करें ना, कि कहें कि ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करता है या बहुत मेहनत करता है, तो बजाय नंबर बताने की हम ये इस तरीके की अगर तारीफ करें, तो बच्चे के अंदर भी सकारात्मक जो एक एनर्जी आती है वो आएगी, और वो भी सोचेगा कि नहीं, अब मुझे और मेहनत करनी है ना, और मेहनत करके आगे बढ़ना है, ना कि मुझे सिर्फ अब झूठी तारीफ पे रहना है। इसलिए बहुत जरूरी है
0: और
1: इस
0: अब
1: तरह
0: क्या
1: से।
0: करें,
1: एक गीत सुनते हैं।
0: सुनते हैं गीत।

आरती सचमुच दिल की बात असली नकली चेहरा बता ही देता है। एक हमारे साथी लिखते हैं आरती कि बच्चों की तारीफ तो कीजिए परंतु उन्हें

0: ने के झाड़ पर मत चढ़ाइए। अक्सर झूठी प्रशंसा करने से वे आत्म मूल्यांकन नहीं कर पाते और आभासी दुनिया में जीते हैं। ये बहुत सही बात लिखी है ना।
1: और एक और श्रोता जो लिखते हैं कि बच्चों की हर बात पर झूठी प्रशंसा करना सही नहीं होता, क्योंकि इससे वो अपनी असली मेहनत और काबिलियत को समझ नहीं पाते। और मुझे लगता है कि जब हम बिना वजह हर काम की तारीफ करते हैं तो बच्चे धीरे धीरे सच और दिखावे का फर्क भूलने लगते हैं। सच्ची और सही प्रशंसा बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाती है, लेकिन झूठी प्रशंसा उन्हें केवल दूसरों की तारीफ पर निर्भर बना सकती है। इससे वो असफलता को स्वीकार करना भी मुश्किल समझने लगते हैं। और मेरे अनुसार बच्चों को उनकी मेहनत, ईमानदारी और कोशिशों के लिए सराहना मिलनी चाहिए, कि सिर्फ खुश करने के लिए। इससे वो जीवन में सच्चाई, आत्मविश्वास और मेहनत की असली कीमत को समझ पाते हैं।
0: एक साथ लिखते हैं कि बच्चों की झूठी या बढ़ा चढ़ाकर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास और मानसिक विकास को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे बच्चे वास्तविकता से दूर हो सकते हैं और आलोचना को स्वीकार करने में असमर्थ हो सकते हैं। सच्ची और सही तारीफ करने के लिए उनके प्रयासों पर ध्यान दें, न कि उनके परिणामों पर। इन्हें मिलजुल कर हमारे सभी साथियों ने इसी तरह की बात लिखी है। एक साथ ही लिखते हैं कि बच्चों की परवरिश करना आसान नहीं है। उनके लालन पालन में हमेशा सकारात्मक रवैये की जरूरत होती है, जिससे कि वो प्रोत्साहित महसूस हो। बच्चों को जब माता पिता से प्रोत्साहन मिलता है तो उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और वे एक कामयाब जीवन जीते हैं। लेकिन जरूरी ये है कि वो प्रोत्साहन कैसा हो। जरूरी है कि प्रोत्साहन भी सही तरीके से किया जाए, जिससे कि वो पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करे और साथ में अपने मनपसंद क्षेत्र में भी सफलता पाए।
1: बिल्कुल,
0: यानी मिलजुल कर हमारे सभी साथियों ने इसी तरह की बात लिखी कि भैया अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा ना करे, जैसे हैं बच्चे, और उन्हें उनके बारे में बताए कि हाँ इतने ही नंबर मिले हैं उन्हें, उसमें कोई भी बुराई नहीं है। देखिए ना, कभी ऐसा नहीं है कि
1: नंबरों से उनकी काबिलियत को आप नहीं बता सकते।
0: कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को बहुत परीक्षा में कम नंबर मिलते हैं पर अपनी जिंदगी में खूब आगे बढ़ते हैं।
1: बिल्कुल, आप आइंस्टीन वगैरह इतने बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं उनको देखिए। तो आप एक छोटा सा कमेंट उसको ले लेते हैं। एक श्रोता जो लिखते हैं कि आप बच्चों की झूठी तारीफ करेंगे तो घर पर अगर कोई मेहमान आए तो उनके सामने बहुत लंबी लंबी फेंकेंगे कि हमारा बच्चा इतने नंबर लाता है, अरे ये तो क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लाया और इसके बहुत सारे दोस्त हैं, इससे अच्छे नंबर तो उसके स्कूल में कोई लाता ही नहीं है। लेकिन मैं कहूंगी ऐसा मत कीजिए, ऐसा क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनकी आदत भी होती है, उनकी आदत भी यही होती है कि सोचते हैं हमारे माता पिता तो हमारी तारीफ कर ही देंगे, हम कुछ भी करें हम तो बोल तो हमें तो बोलना नहीं है। तो इससे बच्चे की आदत बन जाती है, तो इससे जो बच्चा है ना वो बिल्कुल झूठ में जीने लगता है। तो इसलिए उनको कहने का मतलब है कि आप इसलिए बच्चों की जो झूठी तारीफ है वो मत करिए।
0: और है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना आरती कि वो बच्चा बहुत ज्यादा गेम में उलझा हुआ है तो भी ना बहुत सारे घर के सदस्य जो होते हैं, मम्मियां होती है, पापा होते हैं, घर के लोग है ना छुपाते हैं कि नहीं नहीं नहीं वो तो पढ़ाई करता है, वो तो मोबाइल में लगा रहता है, तो टीचर ने प्रोजेक्ट दिया, आजकल तो मोबाइल में देख के प्रोजेक्ट करना पड़ता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जाने अनजाने में गेमिंग के दलदल में फंस जाते हैं। ये आज का युग जो है ना, तकनीक और इंटरनेट का युग है, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, वीडियो गेम ने बच्चों से लेकर युवाओं तक सभी के जीवन में जगह बना ली है। मनोरंजन के साधनों में गेमिंग सबसे लोकप्रिय माध्यम है आरती, और थोड़ी देर का खेल मन को ताजगी देता है, पर लेकिन जब यही मनोरंजन आदत और फिर लत बन जाए तो ये गेमिंग का दलदल ये बन जाता है और इसमें व्यक्ति धीरे धीरे धीरे धीरे फंसता ही चला जाता है।
1: और इस गेमिंग की वजह से इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, जो बच्चे हैं उन्होंने कितने बड़े बड़े क्राइम कर दिए इन गेमिंग में के चक्कर में फंस के। तो अपने माता पिता या किसी से रिश्ते में भी जो भी उनके अपने हैं उनको भी वो नहीं समझते, सिर्फ गेम के अंदर इतने ज्यादा वो लग जाते हैं कि वो कितने बड़े बड़े क्राइम कर जाते हैं। और साथ ही बहुत बड़े अपने जो जो माँ बाप की जो कमाई होती है उसको भी गेम के चक्कर में, वो गेम को खरीदने के चक्कर में वो भी पूरा गवा देते हैं।
0: यानी कहने का मतलब है कि वो ये जो दलदल है इसमें फंसने से हमने अपने बच्चों को बचाना है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि इस बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि आजकल बच्चे दिन रात मोबाइल गेम्स में लगे रहते, पढ़ाई और बाकी जरूरी चीजों से उनका ध्यान हटता जा रहा है। मेरी बेटी ने अभी अभी 10वीं के एग्जाम दिए और उनकी छुट्टियां चल रही है। आजकल उसकी सबसे बड़ी डिमांड ये है कि मम्मा मुझे गेमिंग वाला फोन चाहिए। सच कहूँ तो मुझे समझ ही नहीं आता कि जो बच्चा अभी 11वीं में जाने वाला है उसे इस उम्र में गेमिंग के फोन की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। फिर मुझे अपना समय याद आता है कि हमारे समय में तो मोबाइल दूर की बात थी, घर में सिर्फ लैंडलाइन फोन होता था। मेरे पिताजी तो इतना डांटते थे कि किसी से एक मिनट से ज्यादा बात नहीं करनी है। लेकिन आज के बच्चों की दुनिया ही बदल गई, उन्हें बस गेम खेलना है। तकनीक अच्छी है लेकिन उसका सही और सीमित उपयोग बहुत जरूरी होता है, वरना धीरे धीरे बच्चे गेमिंग की ऐसी आदत में फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है।
1: बिल्कुल, और श्रोता जो लिखते हैं कि गेमिंग का दलदल ऐसा खतरनाक भंवर है जिसमें व्यक्ति चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकता। ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां गेमिंग जो है वो मनोरंजन नहीं एक मानसिक बीमारी बन जाती है जो मकड़ी के जाल से भी

0: अंतरजाल है, इसमें फंसने वाला अपने करियर, सेहत और पैसों से पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। थोड़ा मुनाफा होने के बाद ज्यादा मुनाफे के लालच में अपनी जिंदगी बर्बाद करने में देर नहीं लगता।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि गेमिंग के दलदल एक टाइप का नशा है, एक ऐसी स्थिति है जहां कोई व्यक्ति वीडियो गेम, मोबाइल गेम या ऑनलाइन गेम खेलने का इस हद तक आदि हो जाता है कि वो अपनी असल जिंदगी, पढ़ाई, नौकरी और सेहत को पूरी तरह से नजरअंदाज करने लगता है। ये दलदल की तरह इसलिए है क्योंकि शुरुआत में सिर्फ मनोरंजन लगता है, लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति इसमें ऐसा फंसता जाता है कि चाहकर भी बाहर निकल पाता। सोशल मीडिया, समाचार पत्र में आए दिन ये खबरें पढ़ती हूँ कि ऐसा नहीं, कम पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे डिग्रीधारी सारे लोग इस माया जाल में फंसते जा रहे हैं। और जब आप बुरी तरह से फंस जाते हैं तो उनका एक ही परिणाम होता है कि अपने को दुनिया से खत्म कर लेते हैं, और उन्हें भुगतना पड़ता है कि परिवार को निराशा और पूरा परिवार जो है दुखी हो जाता है, ऐसा उन्होंने लिखा है।
0: बिल्कुल। और एक और जोश होता है हमारे, वो लिखते हैं कि जो गेमिंग का दलदल है उसमें जो यानी कि जो खेल कूद है और उसमें भी, अरे ये गेम मतलब जो गेम है, जो बाहर हम गेम खेलते हैं, जब आउटडोर गेम्स खेलते हैं घर के बाहर, तो वो गेम होते हैं उसको कहते हैं खेल। वो आपके शारीरिक और मानसिक विकास को भी बढ़ाते हैं और उसके लिए हमारे दिमाग के जो विकास होता है उसके लिए बहुत जरूरी होते हैं। बल्कि जबकि गेमिंग जो होता है उसमें स्क्रीन पे पूरे समय देखते रहने से आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है और मानसिक विकास पर भी बुरा असर पड़ता है।
1: और ये जो गेमिंग जो है ना, जो होते हैं ना, इसमें ना हमेशा हम जीतते ही हैं। पानी में गिर जाए तो भी उन्हें कुछ पॉइंट्स अगर हमारे पास है तो उससे हम फिर से जिंदा हो जाते हैं। तो ये बच्चे और कुछ बच्चे तो वो वीडियो गेम देख के वैसे ही रास्ते पर भी उसी तरह से कार वगैरह चलाते हैं, तो उसके साथ उनके जान के साथ साथ दूसरों की जान को भी बहुत खतरा होता है। एक हमारे साथी ने लिखा है दीपा, सॉरी
0: जी कोई नहीं,
1: समय सीमा निर्धारित करें, गेम खेलने के लिए अलार्म लगाएं या माता पिता दोस्तों की मदद से एक निश्चित समय तय करें, नई आदतें अपनाएं, ऊप से बचने के लिए कोई नया शौक पाले, व्यायाम करिए या किताबें पढ़े।
0: बिल्कुल। और एक कुछ श्रोता है जो लिखते हैं कि आज के जो बच्चे जो गेम में लगे रहते हैं, उसमें कंप्यूटर गेम में या मोबाइल में लगे रहते हैं, वो वास्तविक दुनिया से उनका जुड़ाव कम होने लगता है और शुरुआत में ये गेम मनोरंजन और तनाव दूर करने का साधन लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही आदत गेमिंग का दलदल बन जाता है जिससे निकलना कठिन हो जाता है। जब व्यक्ति गेम खेलने की लत में इतना डूब जाता है कि वो अपनी पढ़ाई, काम, परिवार और सामाजिक जीवन को नजरअंदाज करने लगता है, तो ये आदत धीरे धीरे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालने लगती है। और याद रखिए, गेम्स खेलना बुरा नहीं है लेकिन संतुलन बहुत जरूरी है। पढ़ाई, खेलकूद और परिवार के समय के साथ गेमिंग को सीमित रखिए ताकि हम इस दलदल में ना फंसे और अपने भविष्य को सुरक्षित रख सके।
1: और अब क्या करें,
0: एक गीत सुने,
1: सुनते हैं गीत।

0: समझे
1: अज समझे।

0: काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम।
1: ओए जालिम साथ ले ले,
0: अच्छे हम अकेले।
1: जालिम साथ ले ले,
0: अरे अच्छे हम अकेले।
1: जाज कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: भारती एक साथी लिखते हैं कि आजकल गेम खेलने की लोगों में लत सी लगी है। लोग देर रात तक जागकर मोबाइल या लैपटॉप पर गेम खेलते हैं। कई बार तो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, ना तो खाने की चिंता होती है, ना उन्हें कुछ काम की चिंता होती है। कुछ ऐसे गेम तो उन्हें ऐसे टास्क देते हैं जिसके कारण लोग अपने जीवन को भी समाप्त कर लेते हैं।
1: बहुत से ऐसे गेम आ गए खतरनाक
0: जी।
1: और साथ ही एक श्रोता जो लिखते हैं कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति ऑडियो या ऑनलाइन गेमिंग में इतना उलझ जाता है कि उसका अपनी दैनिक दिनचर्या, नींद और मानसिक स्वास्थ्य पर से नियंत्रण हट जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसे आधिकारिक तौर पर गेमिंग डिसऑर्डर के रूप में वर्गीकृत किया है।
0: और वैसे आरती ऐसी बात है कि ये जो मोबाइल गेम है, या फिर मोबाइल कह लीजिए, लैपटॉप कह लीजिए, या फिर जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं, इनमें अगर वाईफाई ना हो, इनमें अगर नेट ना हो, तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है।
1: सही बात है। फिर हम एकदम फोन लेके बैठे रहते हैं कि क्या करें इस डिब्बे काम।
0: नहीं नहीं नहीं, पर अगर हमें बहुत इन्हें ऑफिशियल काम करना है, हमें अगर कुछ काम करना है, तो बात समझ सकते हैं। पर अगर हमें सिर्फ टाइम पास नहीं हो रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है कि हम पढ़ना भूल रहे हैं, खेलना भूल रहे हैं, परिवार के साथ बैठना भूल रहे हैं, तो हमें इन सब बातों का भी ध्यान रखना है कि कोई भी मनोरंजन का साधन होना वो सिर्फ सीमित मात्रा तक,
1: वो मनोरंजन तक ही रहना चाहिए, बाकी रिश्तों के बीच में या हमारे स्वास्थ्य के बीच में उसको नहीं आना चाहिए
0: जी। और अब वाईफाई की रफ्तार अगर धीमी हो जाए तो क्या करना चाहिए?
1: की रफ्तार ऐसा लगता है कि हमारे जीवन की रफ्तार जब वो धीमी हो गई,
0: धीमी हो गई,
1: क्योंकि बहुत कभी कभी बहुत जरूरी काम होते हैं, क्योंकि हमें उसको करना होता है, लिखना होता है, या कुछ हमें पढ़ना है, बहुत जरूरी चीजें देखनी है, तो आजकल तो न्यूज भी आप मोबाइल पे देख सकते हैं, कहीं बाहर है तो हमें किसी कुछ जरूरी देखना है, तो वो अगर नेट नहीं सही से चल रहा है, या हम अपने जैसे कि हम लोग जब देखते हैं, सब पूरी फैमिली जो होती है, अगर पूरी फैमिली ले रखी है उसने वाईफाई से चला रहे हैं, तो उसकी रफ्तार अच्छी होनी जरूरी है
0: जी।
1: तो कभी कभी होता है ना, कुछ चीजों को हम सावधानियां करें तो उससे हम उसकी रफ्तार को बढ़ा भी सकते हैं। तो जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि राउटर को अगर हम सिर्फ बंद करके 2 मिनट बाद उसको स्टार्ट करें तो उससे भी स्पीड बेहतर हो जाती है।
0: यानी जो मोबाइल, टीवी या लैपटॉप उपयोग में नहीं है उन्हें नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर दीजिए। कमजोर पासवर्ड होने पर भी लोग जो है नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं, जिससे स्पीड,
1: कोई आपके घर के सामने से जा रहा है, निकल रहा है थोड़ी दूर तक है, तो वो आपके नेट का आसानी से उपयोग कर सकते, तो वहीं खड़े होकर अपना उपयोग करता रहेगा, लेकिन आपकी वाईफाई की जो स्पीड है वो धीमी हो जाएगी।
0: साथ ही पुराने राउटर नई तकनीक के अनुसार सही गति नहीं दे पाते, जरूरत पड़ने पर नया राउटर ले। ऑनलाइन पढ़ाई के समय वीडियो डाउनलोड या भारी गेमिंग से बचे ताकि इंटरनेट की गति स्थिर बनी रहे। फोन में चल रहे उन एप्स को बंद करें जो बैकग्राउंड में डेटा जैसे ऑटो अपडेट या सिंक का उपयोग कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, ये जो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं ना, जितने भी पेजेस, उनको आप बंद करेंगे ना, तो फिर उसकी आपके फोन की स्पीड पे बहुत असर पड़ेगा।
0: यानी हमने अभी खोला फेसबुक, फिर थोड़ी देर में खोला व्हाट्सएप, फिर उसके बाद में हम चले गए यूट्यूब पे, तो अगर सारे एप्स खुले हुए हैं, अगर हम इस्तेमाल तो सिर्फ एक ही का करेंगे की टाइम, तो सारे अगर एप्स खुले रहेंगे तो भी हमारे इंटरनेट की स्पीड कम हो सकती है,
1: तो आप उसका भी ध्यान रखें। और साथ ही थोड़ी सावधानी और है, जैसे कि अपना जैसे कि अगर जो आपका राउटर है वो घर के बीचों बीच में और ऊंची जगह पर होना चाहिए, और साथ ही जो मोटी दीवार और माइक्रोवेव जैसे बहुत ज्यादा चीजें ऐसी मत रखिए, जैसे टीवी है, टीवी के पास एकदम से आपने रख दिया उसे पीछे, तो उसका जो सिग्नल है वो सिग्नल तोड़ता है, तो उस वजह से भी आपका स्पीड धीमी हो जाती है, तो उसे थोड़ा सा अलग करके रखें और थोड़ा ऊंचा ही रखें उसे, उसी जगह पर लगाएं, जैसे कि और बाकी उपकरण उसके आसपास नहीं होंगे तो बहुत बढ़िया स्पीड मिलेगी आपको।
0: और राउटर का जो एंटीना होता है उसे भी अच्छे से सेट करिए। यदि 2 एंटीना है तो एक को वर्टिकल यानी खड़ा रखे और दूसरा एंटीना को हॉरिजॉन्टल यानी आड़ा रखे, यह सिग्नल का दायरा बढ़ा देता है।
1: बिल्कुल।

0: साथ ही एक है ना फ्रीक्वेंसी के बैंड बदलते रहना चाहिए हमें, कि जो तेज फ्रीक्वेंसी का राउटर हमें लेना चाहिए ना.
1: बिल्कुल, उससे क्योंकि अगर ज्यादा फोन चलाने हैं उसको, उससे आपको कंप्यूटर वगैरह ज्यादा चीजें चलानी है, तो आप उसी हिसाब से आप लीजिए अपना राउटर, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपकी चल सकें, वाईफाई और उसकी स्पीड भी अच्छी रहे। और
0: अब एक गाना सुन ले,
1: बिल्कुल एक गीत सुन
0: सुनते
1: लेते
0: हैं
1: हैं।
0: गीत.

0: तो अब हम बात करते हैं वही जो हम बात कर रहे थे यानी कि राउटर की. तो जैसे कि बताया कि हमने कि आप राउटर को बंद करें और फिर दोबारा चालू करें, तो उससे ये उसकी जो मेमोरी होती है उसको साफ करता है और साथ ही राउटर की जगह को भी बदलें. या जैसे कि हमने बताया था कि आप उसको यमा श्रोता लिख के भेज रहे हैं, उसको घर के बीच में रखें और इसे ऊंचाई पर स्थापित करें और कई सारी बाधाओं से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उसको दूर रखें और अनचाहे डिवाइस जो भी रखें उसके आसपास उनको हटा दीजिए और वाईफाई का पासवर्ड बदलें और ताकि और कोई उसका इस्तेमाल ना कर सके. साथ ही बैकग्राउंड लोड जो डाउनलोडिंग बंद करें. ये वही चीजें जो है जो हमने अभी बताई वही हमारे श्रोता ने भी लिखकर भेजा है. तो एक और हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि धीमी वाईफाई की स्पीड को बढ़ाने के लिए सबसे आसान और असरदार तरीका है अपने राउटर को रीस्टार्ट करना, और इसके अलावा वही उन्होंने कहा कि ऊंची जगह पर लगाने से भी इसकी स्पीड बेहतर होती है.
1: एक हमारे साथी लिखते हैं आरती कि ज्यादा गेम खेलने से मेरा भी स्कूल का रिजल्ट बिगड़ा था, मुझे भी कंप्यूटर गेम की लत लगी थी लेकिन अब छूट गई है. क्या बात है. तो बधाई हो.
0: बिल्कुल बधाई हो आपको अपने, क्योंकि गेम की लत लग तो लग जाती है, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है.
1: जी.
0: आपने उस चीज को छोड़ा, बहुत अच्छी चीज करी है आपने. और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि देर रात तक गेम खेलने से नींद का चक्र बिगड़ जाता है जिससे डिप्रेशन और एंजाइटी का खतरा बढ़ जाता है और साथ ही एकाग्रता में कमी भी आती है. लंबे समय तक स्क्रीन पर वर्चुअल गेम खेलने से वास्तविक दुनिया से या पढ़ाई पर या काम पर ध्यान लगाने में परेशानी हो सकती है.
1: ये तो है ना, टेक्नोलॉजी के फायदे भी है और नुकसान भी है.
0: बिल्कुल.
1: तो हमें उसके फायदे लेना चाहिए और नुकसान को हमें बाय बाय कहना चाहिए, है ना.
0: बिल्कुल. उसको ध्यान रखें, इतना मत किसी चीज में लग जाइए कि वो आपको नुकसान पहुंचाने लगे. और अति हर चीज के लिए
1: बिल्कुल अति सर्वर्थ वर्जे, तो भाई अति से दूर रहे कि बस वो इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, हम इतने इसके माध्यम से हम लोगों से जुड़ रहे हैं, हमें कितना ज्यादा फायदा हो रहा है इन टेक्नोलॉजी की बदौलत, तो उसका हमें फायदा उठाना चाहिए. उसके जो नुकसान है उससे हमें बचना चाहिए. और अब क्या करना चाहिए हमें?
0: एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं.
1: तो सुनते हैं गीत.

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: तो आरती आज की मुलाकात
1: आज की मुलाकात बस
0: इतनी और अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है, तो आप सभी को सोनाली पाठक
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हेलो फरमाइश कार्यक्रम एक ऐसा लोकप्रिय कार्यक्रम है जहां आप अपने पसंदीदा गाने सुनना पसंद करते हैं, हमसे बातचीत करना पसंद करते हैं, अपनी भावनाएं, अपने संदेश दूसरे श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं, क्यों है ना? तो आज इस हेलो फरमाइश में ऐसी ही हल्की फुल्की बातें हमने की हैं हमारे श्रोताओं से। तो शुरू करते हैं आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम और देखते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: जी, हमारा नाम नरेंद्र कुमार पटेल है, हम बजहा गांव प्रयागराज उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं।
0: हाँ नरेंद्र जी, स्वागत है आपका।
1: जी, हम विविध भारती जो है सन 2000 सुन रहे हैं, कक्षा 2 में थे तब से।
0: अरे वाह, क्या बात है, कक्षा 2 में थे तब से लेकर अभी तक सुन रहे हैं।
1: जी, हमारे घर में ऐसा संस्कार था कि रेडियो हमारे चाचा लोग सुनते थे, जब हम लोग बैठते थे, खड़े खड़े चलते थे, परे परे चलते थे, तब से रेडियो सुनते थे, तो उसी माहौल में थे इसलिए सुनने लगे। खाना पीना बनता था, सभी लोग कम्बाइंड परिवार था, खाते थे और उधर टहलते थे, वहीं खेलते थे, तो रेडियो चलता रहता था।
0: तो आज तक सुनते हैं आप रेडियो?
1: जी जी, अब रेडियो तो नहीं रह गया, अब मोबाइल ऐप से सुनते हैं, हमेशा सारा दिन सुनते रहते हैं।
0: कैसा लगता है उस समय आप जब कक्षा 2 में सुनते थे या थोड़े बड़े हुए?
1: वो तब भी हम जो क्लास वर्क होता था शांति करते थे, रेडियो चलता रहता था, अपना फेयर पूरा करते रहते थे, फिर खेत में टहलने जाते थे, गाँव के अगल बगल पूरा हमारे चरी लगी हुई है, भिंडी उर्दी, इतने समय गेहूँ कट गया है, बढ़िया हरियाली चारों तरफ है।
0: तो अब आप हरियाली के बीच में बैठकर रेडियो सुनते हैं मोबाइल ऐप के जरिए?
1: जी जी, वो रेडियो हम लेकर खेत के मेड़ों पर टहलते थे शाम समय, जो गाय भैंस चराया करते थे स्कूल से आने के बाद, तो बड़ा अच्छा लगता था। पूरा कार्यक्रम जितना चलता है भारत शुरू से सुबह से लेकर हम 11 बजे रात तक का आपको बता सकते हैं।
0: तो हमारी पक्की लिसनर हैं आप।
1: यही जान लीजिए हम इस समय 36 साल के, मान लीजिए हम 6-7 जब से, यानी हम बहुत संभाल हैं, सबसे सुन रहे हैं।
0: क्या बात है, और हमें हमारे इन सभी श्रोताओं पर फख्र है जो इतनी शिद्दत के साथ कार्यक्रम सुनते हैं और उसका जिक्र भी करते हैं। तो बताइए नरेंद्र जी, वैसे आप क्या करते हैं, खेत में काम करते हैं?
1: पढ़े लिखे हैं लेकिन अब इतने डेली बेस मजदूरी काम करते हैं, काम करने जाते हैं, इसमें गर्मी का टाइम है, सुबह 6 बजे जाते हैं, 10 बजे चले जाते हैं, फिर 3-6 बजे तक उस टाइम हमारा जो है मोबाइल ऐप से विविध भारती हमेशा बजता रहता है, सुनते रहते हैं। अभी दोपहर में हम लगाने लगे।
0: काम कहाँ करते हैं?
1: गांव में अगल बगल में जो घर पक्के मकान बनते हैं उसी में।
0: बहुत अच्छा लगा नरेंद्र जी आपसे बात करके, बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: जी, हमें जो है थानेदार पिक्चर का एक गाना है, जीना है तो हंस के जीवन में एक पल भी रोना ना।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अच्छा, गर्मी इतनी पड़ रही है?
2: मैडम गर्मी तो है उदयपुर में, लेकिन यहाँ झीले हैं, चारों तरफ झीले फैली हुई है और हरियाली बहुत है, तो इससे कुछ गर्मी का असर कम रहता है
1: जी।
2: और काफी टूरिस्ट वगैरह आते हैं यहाँ, कई अच्छी जगह देखने लायक जगह है, यहाँ झीले हैं काफी, क्या कह रहे, धार्मिक नगरी भी, कई दर्शनीय स्थल है, श्रीनाथ जी का मंदिर है, जगदीश जी का मंदिर है और दो दरगाहें भी देखने लायक है यहाँ, मस्तान बाबा की दरगाह फतेह सागर के आसपास और एक अम्बावगढ़ पे भी एक गन शहीदा की दरगाह है, पहाड़ी पे काफी अच्छी दरगाह है, काफी जायरीन वगैरह आते हैं। उदयपुर से कुछ दूर श्रीनाथ जी का मंदिर भी बहुत फेमस है, यहाँ भी टूरिस्ट आते हैं और झीले भी अच्छी है
1: जी। आपने उदयपुर की सारी दुनिया हमारे सामने साकार कर दी है कि टूरिस्ट जब आते हैं तो किन किन चीजों को देख कर जाते हैं
2: जी।
1: तो मुझे बताइए कि बकरीद का जो त्योहार है वो असल संदेश उसका त्याग है, आपने अपनी जिंदगी में कभी कोई ऐसा अपनों की खुशी के लिए त्याग किया?
2: मैडम त्याग तो ये है कि गरीबों की मदद करना चाहिए, जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए, करते हैं क्या
1: जी।
2: बहुत दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है और मैं फिल्म मर्यादा का गीत सुनना चाहता हूँ।
1: कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: मोहम्मद रफी साहब का है, मोहब्बत के सुहाने दिन।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत चुना है आपने, चलिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: मैम नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: जी मैम, मैं कृष्ण कुमार डाबी बोल रहा हूँ, गांव टोंकिया, जिला बालोतरा, राजस्थान से।
0: अरे वाह,
1: तीसरी बार बात हो रही है।
0: क्या बात है,
1: नियमित सुनते हैं बस आपके प्रोग्रामों को। अभी मनसा गीत शुरू हुआ, उसको भी मैं नियमित सुनता रहता हूँ।
0: हाँ।
1: अभी दो दिन पहले ही आपकी प्रस्तुति को सुना हूँ मैं।
0: जी क्या बात है, तो सुरीला सफर के लिए आप लिखते हैं कि नहीं लिखते फेसबुक पेज पर?
1: हाँ लिखता हूँ मैम, पर क्या कि दिन को एक बजे जो प्रोग्राम आता है उससे मैं क्या थोड़ा काम में बिजी होता हूँ, तो सोशल मीडिया पे थोड़ा कमेंट कम कर पाता हूँ। बाकी जब भी पोस्ट देखता हूँ तो उसके बारे में प्रोग्राम सुनता हूँ, तो लिखता जरूर हूँ मैं।
0: लिखा कीजिए ताकि हमें क्या उन संदेशों को पढ़ने में बड़ा आनंद भी आता है और श्रोताओं के विचार।
1: और पत्र भी भेजे अभी विविध भारती के स्टूडियो में।
0: अच्छा,
1: धीरे धीरे जैसे समय मिलेगा वैसे भेजते रहेंगे तो शामिल होते रहेंगे।
0: जी मनचाहे गीत के लिए बिल्कुल आपका स्वागत रहेगा हर कार्यक्रम में।
1: बिल्कुल दीदी, है ना, बहुत अच्छा।
0: जी बताइए थोड़ा मौसम के बारे में कि बालोतरा में कितनी गर्मी हो रही है।
1: बताइए कि मरुस्थलीय इलाका है तो इन दिनों तो गर्मियों के दिनों में मौसम कैसा होगा। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और तेज आंधी और गर्म लू से भरी हवाएं चल रही है, बस वही मौसम है रेगिस्तान में।
0: जी तो दिन भर जो गृहिणी है उनका वक्त तो घर की सफाई करने में निकल जाता होगा, क्योंकि जब हमारे
1: देखो
0: राजस्थान में जब आंधी तूफान आता है तो वो पूरा छप्पर फाड़ आता है। फिर
1: वही बात है कि सुबह जब घर की साफ सफाई होती है और शाम तक होते होते पूरा घर वापस रेत के कणों से और धूल से भर जाता है, क्या करें। सफाई तो करनी पड़ेगी सुबह शाम दोपहर, क्या है ये तो। दिन को थोड़ी गर्मी तेज रहती है, बाहर इधर उधर निकलना नहीं होता है क्योंकि गर्मी का मौसम है। और टेम्परेचर भी अभी अपने यहाँ इधर हमारे बाड़मेर, जैसलमेर और ये सब बालोतरा साइड का कम से कम 46 से 47 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, बस वही बात है।
0: गजब चल रहा है और भयंकर गर्मी के, इसमें अपना ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य का और सब चीजों का।
1: और वैसे प्रोग्रामों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि जो भी प्रोग्राम इन दिनों आ रहे हैं बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, और ये फोनिंग प्रोग्राम भी आ रहे हैं, आपने जो नए कुछ प्रोग्राम शुरू किए हैं उनका भी स्वागत है। और मैंने खास करके मैं छायागीत प्रोग्राम का बहुत सुबह और शाम को फिर ये वापस आता है 5 बजे रिपीट, तो मैं उसको सुनना जरूर पसंद करता हूँ क्योंकि मैं दो बार सुनता हूँ, कभी कभी नहीं सुन पाऊँ तो मिस हो जाता, तो फिर वापिस यूट्यूब पे जाकर कहीं ना कहीं मिल जाता तो सुन लेता हूँ।
0: क्या बात है, इतना

0: पसंद है आपको छाया गीत?
1: छाया गीत में दीदी आप जो ये प्रोग्राम अपनी भावनाओं जो व्यक्त करती हैं और उस हिसाब से गीत भी उसी अनुरूप होते हैं, तो वो क्या कि फिर थोड़े दिल को छू लेने वाले होते हैं। हाँ। और आपके समय जब प्रोग्राम आता है तो उसकी बात ही कुछ अलग है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: दीदी आज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, उनका अपने जो संगीतकार जुड़ी थी उनका दिन है, तो उस उपलक्ष्य में मैं उन्हीं के संगीतबद्ध किया एक गाना सुनना चाहूंगा। हम जोली फिल्म से हैं, आशा जी और रफी साहब की बुलंद आवाज में गाना है, ढल गया दिन हो गई शाम जाने दो जाना है।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: ढल

0: बतकिया एक गाना सुनना चाहूंगा, हमजोली फिल्म से है,
1: हम जो
0: आशा जी और रफी साहब की बुलंद आवाज में गाना है, ढल गया दिन हो गई शाम जाने दो जाना है।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: नाम तो मैडम जो अभी 90 साल पूरे हुए हैं, तो हम तो 1980 से आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं मैडम।
1: 1980 से सुन रहे हैं?
0: हाँ 1980 से ही सुन रहे हैं, वो रेडियो पे प्रोग्राम सुनते हैं ज्यादातर, तो अभी भी मेरे पास रेडियो ही है।
1: तो आप बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको?
0: ये रांझा फिल्म का गीत है, रफी साहब की आवाज में, ये दुनिया में फिल्म मेरे काम की नहीं।
1: बहुत ही सुंदर गीत सुनना चाहते हैं आप, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ नमस्ते।
0: नमस्ते।
1: ग्राम सुराना जिला रतलाम से शेख हैदर खान बोल रहा हूँ।
0: जी स्वागत है आपका हैदर साहब।
1: और क्या हाल चाल मैडम?
0: अच्छे हैं आप बताइए।
1: बस बढ़िया है। यहाँ भी मतलब अभी तो थोड़ी गर्मी का प्रकोप ज्यादा है एमपी में, तो लो बहुत चल रही है मैडम अभी फिलहाल। तो
0: जहाँ बात की जा रही है वहाँ पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा तापमान है और अलग अलग जगहों पर पता चलता है कि किस तरह से लोग जो इस गर्मी में बेहाल हुए जा रहे हैं।
1: हाँ
0: तो बताइए हैदर साहब, अभी जो बकरीद है, बकरीद को किस तरह से मना रहे हैं आप और क्या संदेश देना चाहते हैं बकरीद के मौके पर?
1: संदेश तो ये देना चाहते हैं मैडम के मतलब ये जो अपना भारतवर्ष ये तो त्योहारों का देश है और सभी को मतलब अपने अपने त्योहार मनाने का अधिकार है, तो शांति और मतलब स्वभाव से त्योहार मनाए।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आप अपना त्योहार सुख और शांति के साथ मनाए, हम ये उम्मीद करते हैं। और आप हमारे पुराने श्रोता हैं, क्या क्या सुनना पसंद करते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों में?
1: विविध भारती के

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार।
1: कभी कभी खामोश रहकर भी नेक काम किए जा सकते हैं। मैंने देखा है अक्सर पेड़ों को छांव देते हुए।
0: क्या बात है, क्या बात है। नाम तो बताइए अपना।
1: मोहम्मद रफी मंसूरी, इंदौर से। कैसे हैं आप?
0: हम अच्छे हैं, आप बताइए।
1: हम भी अच्छे हैं मैडम।
0: अच्छा होना ही चाहिए
1: जी,
0: हमारे कार्यक्रम सुनते हैं लगातार।
1: हाँ हाँ सुनते हैं ना मैडम
0: जी। तो आप बताइए, बकरीद मनाएंगे आप
1: जी, जी,
0: तो बकरीद का असली महत्व क्या है, ऐतिहासिक महत्व क्या है आपकी नजरों में?
1: मैडम इसका ऐतिहासिक महत्व है कुर्बानी और आपस में मिलजुल कर रहना,

0: और प्यार बांटना और दूसरों को भी खुशियां देना।
1: जी बहुत सही कहा आपने, और इसी भावना को मद्देनजर रखते हुए हम अपना हर त्योहार मनाते हैं। क्यों
0: जी,
1: बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
0: हम सिलाई करते हैं मैडम।
1: अच्छा, सिलाई करते हैं घर पे या किसी दुकान में जाके?
0: नहीं, बाहर गोडाउन पे जाके।
1: दिन भर सिलाई का काम होता है?
0: हाँ, दिन भर सिलाई का काम भी होता है और अपना रेडियो भी चलता रहता है।
1: रेडियो तो खैर आप लोगों की खुराक में शामिल है।
0: हाँ, खुराक में ही है।
1: भाई मुझे लगता है हमारे श्रोता खाना भले ही कभी खा लेते होंगे लेकिन विविध भारती सुनना नहीं भूलते।
0: जी,
1: तो क्या सिलते हैं आप?
0: मैडम हमारा घनी बैग का जूट का काम, बारदान बारदान जिसमें अनाज भराता है, गेहूँ दाल, उसको रिपेयर करते हैं हम कुएं और इससे।
1: अच्छा, जूट के जो बैग हैं जिन्हें हम बोरा कहते हैं लोकल भाषा, उसको आप जूट के उससे सिलाई करते हैं?
0: जी,
1: तो नए बनाते हैं या पुरानों को रिपेयर करते हैं?
0: मैडम पुराने जैसे कोई कट लगी रहती है या चूहे काट देते हैं तो उसको रिपेयरिंग करते हैं हम।
1: तो ये अच्छे से रिपेयर हो जाता है क्या? क्योंकि वो तो सुतली जो होती है वो कहीं ना कहीं से कट जाती है, उसको सिलना आसान होता है? टैबंद लगाते समय ध्यान रखते हैं?
0: हाँ मैडम, थोड़ा पक्की सिलाई करना पड़ती है और फिर बाद में तो फिर वैसे उठा पटक होती है, अनाज भराता है तो फिर वो फट जाते हैं, तो फिर हमारे पास डबल से आते हैं, फिर हम रिपेयरिंग करते हैं।
1: इस तरह से उसको बना के रखते हैं ना, क्योंकि बोरी है वो फट भी जाती है कई जगह से।
0: जी,
1: कट फट जाती है। अच्छा बताइए, कौन सा गाना सुनवाए आपको?
0: फिल्म का नाम है काला पत्थर और गाने के बोले एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं।
1: वाह क्या बात है, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो मैडम जी, नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: हाँ जी मैडम जी, हमारा पहली दफा कॉल लगा है विविध भारती में।
0: स्वागत है आपका फिर तो।
1: बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा कॉल अटेंड किया, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: नाम बताइए अपना, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: नाम मैडम जी सरवण कुमार रणवा, गांव हीरावाली, जिला फाजिलका, पंजाब से।
0: कैसे हैं आप, बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं?
1: बहुत बढ़िया मैडम जी, मालिक की दया है, बाकी हम तो खेती बाड़ी का काम करते हैं, जमींदार आदमी है।
0: बिल्कुल अच्छी बात है ये तो।
1: हाँ जी,
0: तो अभी क्या पैदावार हो रही है खेतों में? मौसम इतना गर्म है, आपके पंजाब में भी तो गर्मी हो रही होगी।
1: बिल्कुल जी, गर्म दिन बहुत चल रहे हैं, बाकी धान का बहुत बोआ है, वो अब 20 दिन के बाद में पटकर दोबारा लगाएंगे।
0: क्यों, मतलब इसको हटा देंगे?
1: अभी वो जैसे संगना बीजा हुआ है, संगना थोड़ी दूर में,
0: हाँ।
1: उसको फिर उखाड़ कर फुट फुट की खेती पर लगाएंगे दोबारा।
0: अच्छा, दोबारा लगेगा, तो इस दोबारा लगाने की प्रक्रिया में थोड़ी मेहनत ज्यादा हो जाती है?
1: मेहनत तो है मैडम जी।
0: हाँ, और गर्मी के इस मौसम में क्या ख्याल रखना पड़ता है फिर?
1: मैडम जी, हम तो बागड़ी आदमी है, ये राबड़ी हमारे बनाते हैं,
0: बाजरी के आटे की।
1: हाँ, बाजरी का, मोठ का।
0: अच्छा, मोठ का भी।
1: हाँ, उसमें छाछ डालकर सुबह पीते हैं, 10 बजे शाम को दलिया बनाकर रख देते हैं, वो सुबह ठंडा होता है, वो छाछ दही के साथ में खाते हैं, ये गर्मी का बहुत बढ़िया उपाय है ठंडे के लिए।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो रात को आप मोठ का दलिया बना देते हैं और उसको सुबह खाते हैं छाछ के साथ?
1: हाँ जी हाँ जी, सवेरे ठंडा मिलेगा, हाँ। रात को वो बनकर तैयार हो जाता है।
0: क्या बात है, बहुत स्वादिष्ट बनता होगा फिर तो, है ना?
1: बिल्कुल जी बिल्कुल जी, वैसे खेत के अंदर मकान बना है, वहाँ थोड़ा सब्जी वगैरह लगा रखा है, कोई ककड़ी मिल जाती है, कभी खरबूजा मिल जाता है, कभी कोई तर वगैरह हरी मिर्ची मिल जाती है, वो बहुत बढ़िया है।
0: बिल्कुल, बहुत सही कहा, बहुत ही अच्छा जीवन बिता रहे हैं प्रकृति के बीच में और शुद्ध खाना खा रहे हैं अपने ही खेत का।
1: हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल
0: जी। चलिए तो अब बता दीजिए आपकी पसंद का कोई गीत।
1: मैडम जी, रवार की फिल्म से सुना देना है मेरे साथ यह गीत, तू कोई गा, लता और मोहम्मद अजीज की आवाज।
0: आइए सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: ग्राम कटारिया खेड़ी, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से विविध भारती का नीमे श्रोता मैं राम नरेश बोल रहा हूँ। मैम
0: स्वागत है आपका राम नरेश जी।
1: जी जी, और हम विविध भारती को बहुत पसंद करते हैं, इससे आने वाले प्रोग्राम चाहे हेलो फरमाइश हो, सेलोलाइट के सितारे हो, आज की फनकार हो या नया प्रोग्राम शुरू किया गया है मन चाहे गीत, हम विविध भारती से सन 2000 से जुड़े हुए हैं। जब सुबह 9:15 तक तो हंगामा प्रोग्राम आया करता था।
0: तो 26 साल हो गए आपको इस कार्यक्रम से, इस सभा से जुड़े विविध भारती से।
1: जी, विविध भारती से जुड़े हुए और कई दौर देखे हैं, देखा जाए तो 2 दशक से अधिक समय हो गया है।
0: कैसा लगता है आपको इतने समय से विविध भारती सुन रहे हैं, अपने जीवन में कोई परिवर्तन होता लगा आपको?
1: विविध भारती सुनने से हमें जानकारियाँ मिली और ज्ञानवर्धक बातें मिली, किस तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए अपने से बड़े लोगों से, उस तरह की सीख मिली, अपने से छोटे लोगों को किस तरह का प्रेम करना चाहिए इस तरह की सीख मिली। विविध भारती ने हमें जानकारियों के साथ में जीवन जीने का तरीका, नजरिया सब कुछ सिखाया। और शुक्रिया विविध भारती, जो आपके सहारे हम 26 वर्षों तक अभी लगातार प्रोग्राम सुन रहे हैं और विविध भारती से सुन सुन कर सीखा। ये जो सिंगर गा रहा है ये मोहम्मद रफी है, ये जो सिंगर गा रहा है ये किशोर कुमार है, अब जो सिंगर गा रहा है वो कुमार सानू है, ये आवाज उदित नारायण की है। क्योंकि सिंगरों की आवाज पहचानना हमने विविध भारती के कार्यक्रमों में गीतों के माध्यम से सुन सुन कर ही सीखा। चाहे उद्घोषक सिंगर का नाम नहीं ले तो भी हम पहचान लेते हैं फला फला सिंगर गा रहे हैं। उद्घोषक कहते हैं सिंगर की आवाज है तो हम करेक्ट कहते हैं, बिल्कुल हमने सही पहचाना।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत कुछ सीखा आपने।
1: जी,
0: तो चलिए अपनी पसंद का गीत बताइए।
1: फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन, और गाने के बोले आज हमारे दिल में अजब सी हलचल है, सामने संघन है, इस तरह से गाने की लाइन है।
0: चलिए तो सुनते हैं इस गीत को आज।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार
1: जी मैडम, मैं रघुवीर से राजपूत बोल रहा हूँ, महाराणा प्रताप चौक छिपावड़ तहसील खिरकिया जिला हरदा मध्य प्रदेश से।
0: रघुवीर जी बोल रहे हैं, कैसे हैं रघुवीर जी?
1: जी मैडम हम अच्छे हैं, आप लोग कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं, आप बताइए क्या करते हैं?
1: मैडम हमारे खेती किसानी का काम है और होटल वगैरह है।
0: अभी क्या चल रहा है आपके खेत में?
1: मैडम अभी गेहूं के बाद तो खाली रहता खेत, कुछ नहीं लगाते, पानी की व्यवस्था नहीं है। और 2019 के बाद आज मेरा कॉल पहली बार लगा, अच्छा लग रहा है।
0: चलिए अच्छी बात है।
1: और पुराने कार्यक्रम जो SMS के बहाने, VVS के तराने और सुहाना सफर कार्यक्रम, हवा महल, आज के पंकज सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं।
0: सुरीला सफर में आप अपनी बात लिखते हैं हमारे फेसबुक पेज पर?
1: मैडम मैं अभी 2019 के बाद मैंने रेडियो सुनना बंद कर दिया था।
0: क्यों?
1: दोबारा चालू किया कोरोना काल से मैंने बंद कर दिया था।
0: तो इतना लंबा समय क्यों लिया बंद करने के बाद शुरू करने में?
1: कार्यक्रम बंद हो गए थे विविध भारती से, तो फिर धीरे धीरे मैंने भी सुनना बंद कर दिया था। मैडम
0: चलिए अब लगातार सुनिए और अपनी राय देते रहिए और फेसबुक पेज से जुड़िए, अपने विचार व्यक्त कीजिए ताकि आपकी टिप्पणियों को हम स्थान दें, पढ़ें।
1: जी जी मैडम,
0: हमारे श्रोताओं से ही हमारे कार्यक्रम है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत, बताइए।
1: आम्रपाली फिल्म का नील गगन की छांव में दिन रैन गले से मिलते हैं।
0: क्या बात है, गर्मी के इस मौसम में बड़ा सुंदर गीत सुनना चाहते हैं।
1: अच्छा गाना है और शंकर जयकिशन का संगीत भी बहुत अच्छा है लता जी के आवाज के साथ।
0: जी सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: नमस्ते मैम, मेरा नाम टिंकू दास, जिला कासाराम से बोल रहा हूँ मैम।
0: अरे वाह, क्या प्यारा नाम है आपका टिंकू। ये तो घर का नाम होगा?
1: जी मैम, घर का नाम है।
0: तो बाहर का नाम क्या है आपका?
1: मेरा बाहर का नाम है राजदास।
0: अरे वाह, दोनों नाम बहुत अच्छे हैं आपके। टिंकू जी, अपने बारे में बताइए, कैसा चल रहा है आपका जीवन?
1: जी मैम, बहुत अच्छा चल रहा है, स्वस्थ है, मस्त है, बहुत मजे में है। आप कैसी हो मैम?
0: अच्छे हैं हम भी। तो बताइए, आप कहाँ रहते हैं?
1: जी मैम, मैं सिलचर पे रहता हूँ।
0: वहाँ मौसम कैसा चल रहा है इन दिनों?
1: मौसम 4 दिन से बारिश हो रही है मैम।
0: अरे बारिश आ गई है?
1: जी मैम।
0: तो कुछ ठंडा हुआ मौसम?
1: जी मौसम अच्छा है, सुहाना है मैम मौसम।
0: अच्छा, तो इस बारिश आने से क्या फायदा हुआ वहाँ?
1: जी पहले तो बहुत धूप था, आप राहत मिली है गर्मी की।
0: कुछ गर्मी से राहत मिली है ना?
1: जी मैम।
0: क्या काम करते हैं आप टिंकू जी?
1: जी मैम, मैं फिलहाल घर का काम काज करता हूँ, और अभी तक तो कुछ तो करना पड़ेगा आगे से।
0: अरे क्यों नहीं करते अभी तक? क्या उम्र है आपकी?
1: जी फिलहाल तो मेरा 19 साल की उम्र है।
0: अच्छा, पढ़ाई की है आपने?
1: जी मैम, मैंने तो ओनली 10 कंप्लीट किया है। मेरा एक उद्देश्य भी है, मैं TRPF कमांडो में जाना चाहता हूँ।
0: हाँ हाँ,
1: फिलहाल यही तैयारी चल रहा है।
0: क्या तैयारी कर रहे हैं? फिजिकल फिटनेस का ध्यान रख रहे हैं अपनी?
1: जी मैम, अच्छे से रख रहे हैं मैम।
0: बिल्कुल, खाना पीना और सब कुछ आपको सही तरीके से करना पड़ेगा।
1: जी मैम,
0: तभी तो कमांडो बन पाओगे, है ना? कितना मुश्किल होता है वो फिजिकल फिटनेस, मेंटली इतना मजबूत बनना पड़ता है।
1: जी मैम,
0: बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप युवा हैं और कार्यक्रम सुनते हैं, कौन सा गाना सुनवाए आपको टिंकू जी?
1: जी मैम, मुझे सिर्फ तुम मूवी से पहली पहली बार ये गाना सुना दीजिए मैम।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं कश्मीर सोनामर्ग से लतीफ अहमद रैना।
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा मैडम, आप ठीक है?
0: हाँ हम ठीक है। और कश्मीर के मौसम बताइए।
1: कश्मीर के मौसम अभी सुहाना है, मौसम ठीक है। अभी ठंडे ठंडे मौसम है यहाँ पे, सुबह शाम ठंडे, दिन में गर्मी रहता है।
0: काफी टूरिस्ट आ रहे होंगे घूमने इन दिनों?
1: हाँ, पर्यटक तो बहुत सारे आते हैं यहाँ सोनामर्ग में। अब लगभग 15,000 से ऊपर तो पर्यटक आते हैं यहाँ।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा एक बात बताइए मोहम्मद रैना साहब, बकरीद पर आप क्या कहेंगे? अब तो बकरीद का जो असली मकसद है, असली संदेश क्या है, क्या सोचते हैं आप? जो हजरत साहब है उनकी परंपरा, उनकी कुर्बानी की परंपरा हमें क्या सिखाती है?
1: हमें सिखाता है वो ईमानदारी, ईमानदारी हर चीज में। जो भी ईमानदारी करेगा वो आगे बढ़ेगा।
0: अच्छा एक बात बताइए, जो बकरीद का त्योहार है, हमें समाज में जरूरतमंदों की मदद और दान करना, सहायता करना सिखाता है।
1: ये तो गरीबों को बांटना है, हर किसी को भी बांटना है। ये
0: आपसी प्रेम और भाईचारे का बनाए रखने का एक बहुत बड़ा त्योहार है ये।
1: हाँ हाँ, ये तो बड़े त्योहार है।
0: आप ऐसा सोचते हैं कि सभी समुदायों के बीच आपसी प्रेम और भाईचारा बना रहे?
1: हाँ सही बात, हिंदू मुस्लिम तो एक ही भाई भाई है।
0: चलिए तो इस त्योहार को अच्छे से मनाइएगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
1: हमें सुनाए गाना पत्थर की फूल, लता मंगेशकर की आवाज में, कभी तो छल्ले लगता है।
0: सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। कभी तू

0: आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं के कॉल आज लग चुके हैं उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि कृपया आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें। हेलो फरमाइश से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर है 4002466228607288 और हमारा STD कोड नंबर है 022, यानी आप हमें 022400024662 साथ ही 022287-0288 पर कॉल कर सकते हैं। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम का सफर आज आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

ये FM सेंसिटी है, FM बैंड 102.1 MHz पर। शाम के 5 बजने को हैं। अब सुनिएगा कार्यक्रम युवा वाणी हमारे स्थानीय केंद्र से।

0: कुछ सपने बारिश जैसे होते हैं, छू लो तो मिट जाते हैं। कुछ लोग किताबों जैसे होते हैं, एक बार समझ आ जाए तो हमेशा याद रहते हैं। और जो रिश्ते होते हैं ना, वो संगीत जैसे होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते लेकिन महसूस हर पल होते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी बिना अधूरी किताब जैसी लगती है तो याद रखिए, हर कविता का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका अंत नहीं, उसका सफ़र होता है।
1: और बस ऐसा ही एक और सफ़र लेकर के हम दो रेडियो दोस्त हाजिर हैं। मेरा नाम है आयुषी और आज मेरे साथ हैं,
0: यानी कि मैं आपकी दोस्त स्वस्ति।
1: दोस्तों, कभी कभी ना ज़िंदगी में हमें बहुत तेज़ भागती हुई लगती है, लेकिन फिर कोई गाना, कोई पुरानी याद या किसी अपने की छोटी सी बात हमें फिर से रोक कर मुस्कुरा देती है। तो आज का ये सफ़र भी कुछ ऐसा ही होगा, जहाँ बात होगी सपनों की, रिश्तों की और उन लोगों की जो हमारी कहानी में शब्द नहीं एहसास बनकर रहते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद, क्योंकि उससे पहले हम आपको सुनवाएंगे हमारी प्लेलिस्ट का ये पहला सॉन्ग।

0: दोस्तों, कभी नोटिस किया है? कुछ सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जिनका कोई खास रीजन नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो बजते हैं मूड ऑटोमेटिकली फ्रेश हो जाता है। कभी सड़क पर चलते हुए, कभी बारिश में, कभी हेडफोन्स लगाकर लेट नाइट, और कभी बस यूं ही रैंडम शफल पर। म्यूजिक शायद दुनिया की एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे समझने के लिए वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती। एक हैप्पी सॉन्ग हमें डांस करा देता है और एक ओल्ड सॉन्ग हमें हमारी पुरानी यादों की तरफ ले जाता है, और कुछ गाने ऐसे होते हैं जो बस दिल को हल्का कर देते हैं।
1: और कई बार ना हम दुखी नहीं होते, हम बस थके हुए होते हैं, और तभी आपका एक फेवरेट सॉन्ग सडनली ना थेरेपी बन जाता है। कुछ लोगों के लिए तो शायद पुराने गाने ओल्ड बॉलीवुड क्लासिक म्यूजिक होते हैं, कुछ के लिए इंडी सॉन्ग्स, या फिर कई लोगों के लिए लाउड पंजाबी बीट्स। लेकिन ना सबकी फीलिंग सेम ही होती है यार, ये गाना सुन के ना मज़ा ही आ गया, इतना अच्छा लगता है हमारे दिल को। तो आज सोचिए, वो कौन सा गाना है जो बिना बजे आपका मूड अच्छा कर देता है, खुश कर देता है, जिसे सुनते ही आपके अंदर एक एनर्जी वापस आ जाती है, या आपके चेहरे पे मुस्कुराहट वापस आ जाती है।
0: लेकिन जैसे अगर बात तुम चेहरे की मुस्कुराहट की ही कर रही हो स्वस्ति, तो क्यों ना हमारी प्लेलिस्ट का आज हम वो वाला सॉन्ग सुनाए हमारे दोस्तों को कि जिसे सुनते ही पक्का कुछ लोग भी उन्हें याद आ सकते हैं, या फिर उनके चेहरे पर मुस्कान तो पक्का आ जाएगी।

0: दोस्तों कहते हैं हर इंसान के पास उनकी एक दास्तान होती है, कुछ अधूरी कुछ अनकही। और आज उसी एक और दास्तां का एक पन्ना हम खोलने वाले हैं।
1: और उस दास्तां में क्या लिखा है वो आपको तो सुने पे ही मालूम पड़ेगा। इस दास्तां का नाम है बारिश वाली गली, जिसका वाचन किया है आयुषी सोनी ने।
0: बारिश वाली गली, रात के करीब 11 बजे थे। पूरा शहर बारिश में भीग रहा था। सड़क किनारे लगी पीली लाइट पानी में टूटकर चमक रही थी और उस पुराने मोहल्ले की एक छोटी सी चाय की दुकान पर हर रात की तरह एक लड़का बैठा था। उसका नाम था विवान। विवान रोज वहां आता था, एक ही कोने वाली कुर्सी पर बैठता, एक अदरक वाली चाय मांगता और सामने वाली बंद दुकान को देखता रहता। चाय वाले काका कई महीनों से उसे देख रहे थे। उस रात उन्होंने पूछ ही लिया, बेटा किसी का इंतजार करते हो क्या? विवान हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, काका ने पूछा, कौन? विवान ने सामने वाली दुकान की तरफ देखा और कहा, जिसकी दुकान अब कभी नहीं खुलेगी। काका चुप हो गए और बारिश और तेज हो गई। कुछ देर बाद विवान ने जेब से एक छोटी सी चाबी निकाली, पुरानी जंग लगी हुई। ये उसकी दुकान की चाबी है, उसने कहा। काका ने धीरे से पूछा, कहाँ गई वो? विवान कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, शहर छोड़कर। और तुम? मैं यादें नहीं छोड़ पाया। हवा के साथ बारिश की कुछ बूंदे दुकान के अंदर आ गई। विवान कुर्सी से उठा और सड़क पार करके उस बंद दुकान के सामने जाकर खड़ा हो गया। दुकान के ऊपर अब भी वही बोर्ड लगा था, महर फोटो स्टूडियो। उसने हाथ से बोर्ड पर जमी धूल साफ की और मुस्कुराया। 3 साल पहले यही दुकान पूरे मोहल्ले की सबसे प्यारी जगह हुआ करती थी। दुकान चलाती थी मीरा, हर वक्त हंसने वाली लड़की जिसे बारिश बहुत पसंद थी। वो पासपोर्ट फोटो लेते समय भी लोगों को हंसा देती थी। और विवान, वो बस सामने वाली किताबों की दुकान पर काम करता था। दोनों की पहली बात भी बारिश में हुई थी। उस दिन बिजली चली गई थी, पूरा बाजार अंधेरे में डूबा था। मीरा मोमबत्ती लेकर दुकान के बाहर खड़ी थी, तभी तेज हवा चली और उसकी मोमबत्ती बुझ गई। विवान ने अपनी दुकान से आवाज लगाई, 1 मिनट। वो दौड़कर आया और अपनी मोमबत्ती उसकी तरफ बढ़ा दी। मीरा हंस पड़ी, थैंक्स, वरना मेरी दुकान तो आज भूत बंगला लगती। और उस दिन के बाद हर शाम दोनों साथ चाय पीते। बारिश होती तो सड़क पर भीगते हुए चलते और मीरा हमेशा कहती, कुछ जगह लोगों से नहीं यादों से बसती है। विवान तब हंस देता था, उसे क्या पता था एक दिन यही बात सबसे ज्यादा चुभेगी। फिर एक दिन अचानक मीरा ने कहा, मुझे जाना होगा। कहाँ? दिल्ली। पर क्यों? सपने छोटे शहरों में पूरे नहीं होते विवान। और फिर उस रात बहुत बारिश हुई थी, बिल्कुल आज जैसी। विवान उसे बस स्टैंड तक छोड़ने गया। बस चलने लगी तो मीरा ने खिड़की से बाहर झुककर कहा, अगर कभी वापस आई तो सबसे पहले इस गली में आऊंगी। विवान ने पूछा, और अगर नहीं आई तो? मीरा कुछ सेकंड चुप रही, फिर मुस्कुरा कर बोली, तो बारिश से पूछ लेना, उसे सब पता होगा।

और बस चली गई, और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आई। विवान आज भी हर बारिश में उसी गली में चला जाता है। उसे अब भी लगता है किसी दिन अचानक सामने वाली दुकान का शटर खुलेगा, मीरा बाहर आएगी और हंस कर कहेगी, इतना इंतजार कौन करता है पागल। चाय वाले काका दूर से उसे देख रहे थे। विवान वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। चाय अब ठंडी हो चुकी थी। उसने आंखें भी घूट लिया और आसमान की तरफ देखकर बहुत धीरे से कहा, आज फिर बारिश हुई है मीरा, तुम्हें पता है ना। और बस यही थी बारिश वाली गली।

0: हमने देखा कि किस तरह अधूरी रह गई उनके बीच की ये मुलाकात और ये सारी बातें।
1: बिल्कुल। और ये जो कहानी थी ना बारिश वाली गली, इसका अपना ना एक अलग ही था, वो जो अधूरी रही कहानी, जो इंतजार था, जितना पेशेंस उसने रखा और जिसका वाचन किया था आयुषी सोनी ने।

दोस्तों, कुछ मुलाकातें सच में बहुत अजीब होती है ना। वो पूरी होकर भी अधूरी रह जाती है। किसी स्टेशन पर, किसी कैफे में, किसी शादी की भीड़ में, या शायद किसी ऑनलाइन चैट के पीछे हम किसी से मिलते हैं और पता ही नहीं चलता कि वो इंसान कब हमारी आदत बन जाता है। हम उन्हें हर छोटी बात बताने लगते हैं। दिन कैसा गया, किस बात पर हंसी आई, किस बात ने चुप कर दिया, सब कुछ। लेकिन एक दिन वही इंसान अजनबी बनने लगता है। और बस ऐसी ही एक और अभी कहानी आपने सुनी जिसमें

0: दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम युवा वाणी में। तो चलिए फिर आज के इस सफर में अब आपको सुनवाते हैं आरएएस टॉपर 11th रैंक यशवंत सांधु से संजय व्यास की बातचीत।
1: किसी भी युवा के लिए सिविल सेवा में जाना एक सपने जैसा होता है और सिविल सेवा की कड़ी में ही राज्य सिविल सेवाएं आती है। हमारे राजस्थान राज्य के अनेक युवा राज्य सिविल सेवा में जाने के सपने को लेकर तैयारियां करते हैं और जो युवा अपने जज्बे और मेहनत के साथ निरंतर लगे रहते हैं, सतत प्रयासशील रहते हैं, वो इसमें कामयाब होकर बाहर आते हैं। और ऐसे ही एक युवा को आज हमने आमंत्रित किया है। यशवंत सांधु हैं, आप राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 में 11वीं रैंक अर्जित करके और हमें गौरव प्रदान किया है। यशवंत जी से आज हम बात करेंगे और वो तमाम सवाल जो दोस्तों आपके मन में आते हैं कि किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, किस तरह का सिलेबस होता है और अगर निराशा कहीं मन में घर करने लग जाए तो उससे कैसे बाहर आया जा सकता है, क्या एक बार की विफलता, दो बार की विफलता, बार बार की विफलता हमें अपने लक्ष्य से डिगाने के लिए काफ़ी होती है या फिर कितनी ही विफलता क्यों नहीं आ जाए, हमें अपने लक्ष्य की ओर जिस तरह से अर्जुन जो है उसका निशाना केवल और केवल मछली की आँख था, वैसे ही आपको अपने लक्ष्य को मछली की आँख की तरह देखना आना चाहिए। तो ऐसे ही एक युवा यशवंत सांधु है जो 11वीं रैंक अर्जित किए हैं आरएएस और एलाइड सर्विसेज में और बहुत गर्व और फख्र के साथ आज मैं इनसे बातचीत करने के लिए बैठा हूँ। यशवंत जी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सर
1: आत्मविश्वास से लबरेज लेकिन थोड़े से संकोची यशवंत सांधु हमारे साथ में है और धीरे धीरे वो परतें खुलेंगी जो आप जानना चाहते हैं किस तरह से तैयारी की जा सकती है, क्योंकि केवल आपका सपना देखना काफी नहीं है, उस सपने को हकीकत का जामा पहनाने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि एक तरह की लड़ाई है ये और लड़ाई में आपकी जो स्ट्रेटेजी है, रणनीति है, वो बहुत मायने रखती है। तो यशवंत जी ये बात ठीक है कि आपको परीक्षा की तैयारी को रणनीति की तरह लेना है?
2: जी सर बिल्कुल, मेरा यही मानना है कि क्योंकि जब हम आमतौर पर देखते हैं कि परीक्षा की तैयारी तो कई सारे एस्पिरेंट्स मतलब लाखों की तादाद में होते हैं जो तैयारी करते हैं, पर जो सफलता होती है वो कई मतलब कुछ लिमिटेड, क्योंकि वैकेंसी लिमिटेड होती है सर और सारे लोग जो हैं वो सिमिलर पैटर्न पे ही अपनी जो पढ़ाई है वो जारी रखते हैं। तो आजकल और स्पेसिफिकली अभी जो रिसेंट में हमने देखा है कि जो परीक्षा का पैटर्न भी काफ़ी चेंज होता गया है और जो क्वेश्चन का लेवल है वो भी टफ हो रहे हैं आजकल और कॉम्पिटिशन भी काफ़ी टफ है क्योंकि वैकेंसी कम होती है, एस्पिरेंट्स ज़्यादा होते हैं, तो उसमें जो स्मार्ट वर्क है हार्डवर्क की बजाय, हार्डवर्क तो खैर बहुत ही इंपॉर्टेंट है पर उसके साथ अगर हम स्मार्ट वर्क को और ऐड कर दें तो वो एक सफलता तक जाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता
1: है। बहुत जरूरी चीज कही है आपको कि स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। अब एक चीज जो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि जब खबर ब्रेक होती है, आपने खूब तैयारी की, आपने एग्जाम लिख दिया और उसके बाद आप कुछ दिनों तक चैन से बैठे रहे, मन में बहुत सारी चीजें और आशंकाएं भी कुछ हद तक होती हैं कि कौन सी रैंक आएगी, कहीं आगे कहीं पीछे, वो सारी चीज़ें, और जब रिजल्ट की बारी आती है तब अक्सर कोई ना कोई दोस्त बताता है, तो आपके मामले में भी कोई दोस्त था जिसने ये न्यूज़ ब्रेक की थी कि रिजल्ट आ गया यशवंत आज?
2: जी सर बिल्कुल, जिस दिन रिजल्ट आया था सर उस दिन वर्किंग डे था और मैं अपनी स्कूल में ही था, मैं वहाँ पर क्लास ले रहा था और उसी समय मेरा फ़ोन जो है वो रिंग, दो तीन बार उसमें रिंग आई, मैंने उस समय उठाया नहीं, फिर वापस रिंग आई तो मैंने सोचा कि किसी का, क्योंकि पिछले दो तीन दिनों से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि रिजल्ट आने वाला है और उसी चक्कर में जो एस्पिरेंट्स होते हैं या जो फ्रेंड्स और फैमिली के मेम्बर्स होते हैं वो कॉल करते हैं कि भाई रिजल्ट आने वाला है, आपको क्या उम्मीद है, आप घबरा तो नहीं रहे हैं इस चक्कर में, तो मुझे लगा कि उसी कड़ी में, क्योंकि आमतौर पर आरपीएससी का पैटर्न यही रहा है कि शाम को रिजल्ट जारी करती है, पर इस बार करीब 11:30 बजे के आसपास रिजल्ट जारी कर दिया गया था। तो मेरे एक पिछले स्कूल में मेरे स्टाफ साथी रहे हैं वो भी तैयारी करते थे, उनका मेरे पास कॉल आया कि सर रिजल्ट आ गया है, आपने चेक किया या नहीं किया, तो उस समय मुझे पता चला कि रिजल्ट आया है सर।
1: फिर चेक करने के बीच की जो वो स्थिति होती है कि जब चेक हो रहा है रिजल्ट और आपके मन की जो दिल की धड़कनें हैं वो तेज और तेज होती गई, तो वो उन पलों को थोड़ा सा हमारे साथ बांटिए आप।
2: सर वो मेरे ख्याल से एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है उस समय में, मतलब सबसे पहले तो ये विश्वास ही नहीं होता कि रिजल्ट

0: आ गया है, और जब फिर आप पीडीएफ उसको ओपन करते हैं, क्योंकि जो व्हाट्सएप पे ग्रुप बने थे एस्पिरेंट्स के, उसमें वो पीडीएफ एक आई हुई थी,
1: और साइट पे लोड इतना होता है कई बार खुलता भी नहीं है, आपको लगता है कि मेरे मामले में ऐसा क्यों हो रहा है।
0: बिल्कुल। तो मैंने वहां से पीडीएफ डाउनलोड किया और अपना रोल नंबर सर्च किया, तो उसमें आगे रैंक ब्रैकेट में लिखी आई 11th रैंक।
1: ऊपर से ही चेक किया था आपने?
0: सर मैंने ओपन किया
1: नहीं, वो व्हाट्सएप ग्रुप में से चेक किया था।
0: बिल्कुल सर। वो रोल नंबर वाइज, एक्चुअली वो पीडीएफ कंपाइल्ड होती है, तो उसमें रोल नंबर वाइज लिखा होता है, और उसके बाद में ब्रैकेट में आपकी रैंक वहां पर मेंशनड होती है।
1: ओके।
0: तो मैंने वहां पर चेक किया, तो पहली बार तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये मेरी ही रैंक है या क्या है। तो फिर मैं आरपीएससी की साइट पे गया, वहां से मैंने ऑफिशियल जो पीडीएफ है वो डाउनलोड की, और फिर मैंने उसको पूरा जूम करके देखा कि कहीं मैं ऊपर नीचे की रैंक तो नहीं पढ़ रहा हूँ। और फिर जब देखा, और जितने मेरे पास पीछे फ़ोन कॉल्स आने लगे मेरे फैमिली के, मेरे फ्रेंड्स के, तो मुझे विश्वास हुआ कहीं ना कहीं थोड़ा कि हाँ यार, ये मेरी ही रैंक है।
1: यशवंत जी, हम समझ सकते हैं कि उस वक्त आप स्कूल में थे, और वो जो मोमेंट होता है, आदमी की इच्छा होती है कि परिवार वालों के साथ उस पल में मुझे होना चाहिए। आपकी स्थिति ये थी कि स्टाफ वाले लोग तो थे, लेकिन आपकी स्थिति होती है कि मैं अपने भैया के या पिताजी के को हग करूं और पांव छूं उनके, और उनके साथ खुशी साझा करूं, क्योंकि एग्जाम आप अकेले नहीं दे रहे थे, वो लोग भी आपके साथ एग्जाम दे रहे थे। तो आपके मन में हुआ कि इस वक्त मुझे तुरंत भाग के उड़ के परिवार वालों के साथ जाना चाहिए था?
0: सर इसमें, क्योंकि मैं उस समय स्कूल में था, मेरी ड्यूटी चल रही थी, तो बीच में तो मैं नहीं जा सकता था, पर मैंने वो पीडीएफ चेक की, फिर मैं थोड़ी देर मैंने रिलैक्स किया, मैंने सोचा कि, क्योंकि वो विश्वास नहीं होता है सर पहली बार जब हम देखते हैं, क्योंकि हम अक्सर जो भी तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स होते हैं वो ऐसा सिर्फ इमेजिन कर पाते हैं कि हमारी जो है वो, हम पीडीएफ में अपना नाम देखेंगे सिलेक्शन में, और उसके बाद जब हम इतना ऊपर अपना नाम देखते हैं, जो कि हम कहते हैं कि अनपेक्षित था मेरे लिए भी।
1: बिल्कुल। तो पिछले प्रयास में, ये आपका दूसरा प्रयास था,
0: जी सर,
1: पिछले प्रयास में आपकी 799वीं रैंक थी।
0: बिल्कुल।
1: तो इस बार निश्चित रूप से आप बहुत बेहतर कर पाने की उम्मीद के साथ थे, और जो जिस तरह से आपने एग्जाम लिखे थे उसमें भी आपको लग रहा था कि मैं बहुत बेहतर करूंगा, लेकिन एग्जैक्ट रैंक प्रिडिक्ट करना कई बार संभव नहीं होता। आपको लगता है बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स जो होते हैं इसमें वो प्ले करते हैं रोल, लेकिन फिर भी आपको ये था कि मैं काफी ऊपर कहीं ना कहीं मैं जाकर के और मेरा रिजल्ट आएगा।
0: सर बिल्कुल, पिछली बार क्योंकि जो रिजल्ट था, हालांकि एक तो फर्स्ट टाइम में जब हम पेपर देते हैं तो इतना नॉलेज भी नहीं होता, इतना एक्सपीरियंस भी नहीं होता, और ऊपर से एक जो हमारी एस्पिरेशन होती है वो कहीं ना कहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में ज़्यादा होती है, हमें लगता है कि हाँ हम पहली बार में ही क्लियर कर पाएंगे, पर वास्तविकता हर बार वैसी नहीं होती। तो पिछली बार जब रिजल्ट आया मेरा सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ, इस बार थोड़ी सी मुझे उम्मीद ज़्यादा थी, क्योंकि मुझे लगा था कि मैंने बेहतर प्रदर्शन किया है, खासतौर से इंटरव्यू जो था उसमें मुझे फील हुआ कि मैंने पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन किया है, तो मुझे थोड़ी उम्मीद थी कि सिलेक्शन हो जाएगा, पर ऐसी उम्मीद नहीं थी कि अच्छी रैंक से हो जाएगा। सर
1: जी, तो आपके परिवार वालों का क्या रिएक्शन रहा, क्योंकि पूरा उनका मनोयोग और सारी तपस्या उनकी भी आपके साथ लगी हुई थी, तो जब आप शाम को घर गए होंगे तो किस तरह से आपने बधाई उन्हें दी और ली उनकी तरफ से?
0: सर फैमिली के मामले में मैं बहुत ही लकी रहा हूँ, मेरे जो मदर एंड फादर हैं, और जो मेरे फैमिली में बाकी मेंबर्स, जैसे मेरे सिस्टर हैं, मेरे वाइफ हैं, मेरे मामा जी हैं, और ननियाल की फैमिली है, तो उन सब से मुझे बहुत ही सपोर्ट मिला है मेरी तैयारी के समय में। कभी भी मेरे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं रहा कि आप तैयारी कर रहे हैं, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, या किसी भी प्रकार से। तो एक जो मेंटली फ्री होता है, तो वो फ्रीडम तो मेरे पास थी कि चाहे रिजल्ट कैसा भी आएगा मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, और खुशी तो सर होती है, क्योंकि सभी जो पेरेंट्स होते हैं उनको लगता है कि हमारा बच्चा भी कहीं ना कहीं अच्छा करे, तो उनको भी बहुत खुशी हुई थी। और जब मैंने बताया तो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि आंसू जो है वो आ जाते हैं उस मोमेंट में।
1: खुशी के मामले में ये होता है कि आंसू आ ही जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और इस तरह के आंसू जो है वो हर युवा अपने आसपास देखे, हम यही उम्मीद करेंगे यशवंत जी, और आपको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। आकाशवाणी जोधपुर के तमाम युवा साथी जो आपका प्रोग्राम, आपसे बातचीत इस वक्त सुन रहे हैं, उन सब की तरफ से आपको ढेरों बधाई। आपने पूरे जोधपुर के युवाओं का और हम सब का जो है वो गर्व करने का मौका दिया है हमें, गर्व के पल हमारे लिए भी। अब आपकी तैयारी पर आते हैं, उससे पहले सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बताइए, जो युवा तैयारी कर रहे हैं इस वक्त या करना चाह रहे हैं, तो इस एग्ज़ाम में क्या सिलेबस होता है, किस तरह की किताबें पढ़नी चाहिए और क्या तैयारी रहनी चाहिए आपकी?
0: सर सबसे पहले तो तीन स्टेजेस होते हैं इस पेपर में, सबसे पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू। प्रीलिम्स जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसमें जो कट ऑफ होती है उससे ऊपर अगर आप होते हैं तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। उसमें जो है जनरल स्टडीज़ का एक ही पेपर होता है जिसके अंदर कि आपके जो जीएस के सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जिनमें कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके अलावा मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। फिर जो सेकंड

0: जो होता है मीन्स, उसमें चार पेपर होते हैं सर। और फर्स्ट पेपर जो होता है, मैं पेपर वाइज आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। फर्स्ट पेपर जो होता है सर, उसमें दो बड़े सब्जेक्ट होते हैं जिनको हम जो एस्पिरेंट्स कम्युनिटी हैं, जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए दो बड़े सब्जेक्ट होते हैं और तीन छोटे सब्जेक्ट होते हैं। जो बड़े सब्जेक्ट हैं उनमें हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स होता है, और छोटे सब्जेक्ट्स में तीन छोटे सब्जेक्ट हैं, एक अकाउंटेंसी और ऑडिट होता है सर, एक इसमें मैनेजमेंट होता है, और एक इसके अंदर सोशियोलॉजी होता है। ये तीन इसमें छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो तैयारी करने के लिए आमतौर से जो भी हम तैयारी करते हैं, जो भी बच्चे पढ़ रहे होंगे, वो कुछ तो स्टैंडर्ड बुक्स हम मानते हैं, जिनके अंदर की एनसीईआरटी की बुक्स हो गई, या कुछ ऐसे ऑथर्स हैं जिनकी बुक्स जो हैं वो स्टैंडर्ड मानी जा सकती हैं, जिसमें सारी चीज़ें होलिस्टिकली कवर्ड हैं। और इसके अलावा कुछ कोचिंग नोट्स होते हैं। तो जब भी हम तैयारी करें, या कोई भी अगर तैयारी करना चाह रहा है, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट यही है कि वो केवल एक ही सोर्स पर रिलाई नहीं करके सबसे पहले अपना जो फाउंडेशन है उसको प्रिपेयर करें, और उसके बाद में उसमें वैल्यू एडिशन करता जाए। जैसे एक कोई स्टैंडर्ड बुक है किसी एक सब्जेक्ट की, उसने स्टैंडर्ड बुक पढ़ी। फॉर एग्जांपल अगर हम हिस्ट्री की बात करें, तो इसमें हम अलग अलग सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर सकते हैं, जैसे एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री और फिर राजस्थान हिस्ट्री। तो इनके लिए एक एक स्टैंडर्ड बुक वो पढ़, और उसके बाद में अगर उसको कोई कोचिंग के नोट्स हैं तो उनसे वो वैल्यू एडिशन उसमें कर सकता है, या अगर उसको और कोई सोर्सेज, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है सर, तो टेलीग्राम पर और बहुत सारे ऐसे चैनल्स बने हैं जहाँ पर नए नए अपडेटेड नोट्स जो हैं वो फ्रीक्वेंटली रिसीव होते रहते हैं। तो इसके अंदर एक चैलेंज और है सर एस्पिरेंट्स के लिए, कि कौन सा कंटेंट वो चुने और कौन सा उसमें से हटाएं, क्योंकि कंटेंट इतना सारा है और जो आपका पढ़ने की कैपेसिटी है या आपकी जो मेमोरी की कैपेसिटी है वो बहुत ही लिमिटेड होती है। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि एक तो वाइजली अपना कंटेंट चूज करें, और बहुत सारे कंटेंट के पीछे भागने की बजाय एक फाउंडेशन तैयार करके उसके अंदर वैल्यू एडिशन करना उसको चाहिए।
1: जी, वैल्यू एडिशन के लिए आपने कहा कि बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और कंटेंट की कोई कमी नहीं है, आज के ज़माने में एक्सेसिबिलिटी भी बहुत अच्छी हो गई है। लेकिन फाउंडेशन के लिए कौन सी बुक्स आप सजेस्ट करेंगे? एनसीईआरटी की बुक्स ठीक रहेंगी इसके लिए?
0: बिल्कुल सर, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, खासतौर से जैसे हम सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं, तो आमतौर पर देखते हैं कि 6th से 12th की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, क्योंकि वो एक बिगिनर्स के लेवल से, क्योंकि जो 6th का जो सिलेबस होता है वो बिल्कुल ही बिगिनर के लिए, जो आसानी से समझ में आ सकता है, कॉम्प्रिहेंड भी ईजी होता है, अंडरस्टैंडिंग भी ईजी होता है,
1: बढ़ सकते हैं
0: बिल्कुल
1: जी।
0: तो वहाँ से वो तैयारी शुरू करे, तो जब तक 12th की एनसीईआरटी पढ़ेगा तो उसमें एक कॉन्फिडेंस भी होगा और उसकी एक फाउंडेशन जो स्टेज है वहाँ पर वो पहुँच जाएगा। उसके बाद में कुछ ऐसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स आती हैं, जैसे हिस्ट्री का ही अगर हम एग्जांपल लें, तो आर एस शर्मा की एक एंशियंट हिस्ट्री की बुक आती है, सतीश चंद्रा की मेडिवल हिस्ट्री की बुक आती है, इसके अलावा बिपिन चंद्रा की एक स्पेक्ट्रम की मॉडर्न इंडिया की बुक आती है। तो इस तरीके की जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको हम रेफर करके, और जो हमारी बाकी की चीज़ें छूट गई हैं या जो हमें लगता है कि ये और काम की एग्जाम में आ सकती है, उनसे हमें खुद के नोट्स जो है वो प्रिपेयर कर लेने चाहिए।
1: तो आपने हिस्ट्री की बताई, लेकिन उसके अलावा जैसे इकोनॉमिक्स की अगर किताब की मैं बात करूं या फिर भूगोल की बात करूं, तो उसके लिए भी आपको स्टैंडर्ड एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी चाहिए?
0: सर इकोनॉमिक्स एक थोड़ा सा, क्योंकि एक टेक्निकल सब्जेक्ट के तौर पर मैं देखता हूं, तो इसके लिए अगर किसी का इकोनॉमिक्स से पहले बैकग्राउंड नहीं रहा है, जैसे 12th तक उसने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, तो उसके लिए चाहे तो वो कोई कोचिंग के नोट्स रेफर करें, या अगर ऐसी कोई बुक मार्केट में अवेलेबल है, जैसे एक रमेश सिंह की बुक आती है सर इकोनॉमिक्स की, उसको रेफर करके अपना फाउंडेशन प्रिपेयर करें। और इसके बाद में जो इकोनॉमिक रिव्यू जो आता है, जो भारत सरकार और राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, उसको पढ़ के, क्योंकि उसमें करंट के अपडेटेड जो डेटा है वो भी दिए जाते हैं, जो नई स्कीम्स हैं उनके बारे में भी उसमें मेंशंस होता है, तो इससे वो उसके जो एक बेसिक फाउंडेशन बन गया है उसके ऊपर एक जो वैल्यू एडिशन या जो उसको कंप्लीट जो है नोट्स वो उससे बना सकता है सर।
1: बिल्कुल यशवंत जी, अब जो तीसरा स्टेज है वो इंटरव्यू का है, तो ये एक तरह से व्यक्तित्व परीक्षण होता है?
0: जी सर।
1: और इसमें आपका किस तरह का परफॉर्मेंस रहा?
0: सर ये जो इंटरव्यू का स्टेज लास्ट स्टेज माना जाता है, और ये सबसे क्रिटिकल भी मैं मानता हूँ, क्योंकि इसमें एक तो आपकी जो केवल जो पढ़ी पढ़ाई नॉलेज है वो काम नहीं आती है, क्योंकि आपको एक तो कॉन्फिडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू में, किस तरीके से आप खुद को प्रेजेंट करते हैं,
1: आपको कैरी कैसे करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर। और इसके अलावा आपकी जो उस समय में ऑन द स्पॉट आपकी थिंकिंग, या उस समय में आप क्या चीज़ सोच पा रहे हैं, आपको अगर कोई सिचुएशन दी है आपको कितना एफिशिएंटली उसका सोल्यूशन दे पा रहे हैं, या अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, ज़रूरी नहीं है कि मतलब हमने पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है, अगर हमने पढ़ा है तो वो याद आना भी वहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि ऑन द स्पॉट आपको जवाब देना है। मेंस में तो हमें अगर इंस्टेंटली याद नहीं आ रहा है, हम थोड़ी देर बाद में वापस रेफर कर सकते हैं उसको।
2: बिल्कुल,
0: तो वो एक तो ऑन द स्पॉट आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है और एक आपको कॉन्फिडेंटली प्रोवाइड करनी है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं मानता हूँ कि जो हमारे एक तो जो डेफ के अराउंड जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म हमारे आरपीएससी के द्वारा भरवाया जाता है, जिसमें हमारी बेसिक जानकारी होती है, हमारे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स, हमारे जो

0: इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट्स होते हैं, हमारा अगर कोई प्रोफेशन है तो उसके बारे में उसमें जानकारी होती है, हमारी हॉबीज़ के बारे में उसमें लिखा होता है। तो एक तो ये जानकारी आपको अपडेटेड होनी चाहिए, इसके अलावा जो करंट अफेयर्स हैं, जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं हमारे आसपास, चाहे राजस्थान में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे वर्ल्ड लेवल पे हो, उनकी हमें एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए।
1: बिल्कुल, आपके आसपास क्या घट रहा है उससे आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है।
0: बिल्कुल,
1: राजस्थान का होने का कोई फ़ायदा या कोई ऐसा एज मिलता है आपको, क्योंकि इसमें राजस्थान से संबंधित काफ़ी सवाल आते हैं, राजस्थान की संस्कृति और भाषा से संबंधित सवाल भी होते हैं।
0: बिल्कुल सर, तीनों ही स्टेजेस पे, चाहे हम प्रीलिम्स की बात करें, मेंस की बात करें या इंटरव्यू की, तो तीनों के जो, हालांकि इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता, पर फिर भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें राजस्थान के अराउंड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस में भी राजस्थान का एक पोर्शन जो है वो अलग से दिया गया है। तो राजस्थान से जो लोग अवेयर हैं या जो राजस्थान का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उससे जो लोग अवेयर हैं उनको निश्चित रूप से इसमें फ़ायदा मिलेगा सर।
1: बिल्कुल यशवंत जी, ये जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि तैयारी से लेकर के और अंतिम चयन तक की जो यात्रा है, ये यात्रा हमें ऐसा लगता है जो भी बाहर से हम देख रहे होते हैं कि बहुत सरल रास्ता रहा है, आप इसको कैसे समराइज करेंगे इस यात्रा को? बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं और मानसिक रूप से कई बार द्वंद्व की स्थिति भी होती है।
0: बिल्कुल सर, ये मेरे ख्याल से हालांकि थोड़ा चैलेंजिंग तो होता ही है, पर ये बहुत ही एक इंजॉयबल फेस भी हो सकता है। अगर आप अपनी पढ़ाई को इंजॉय कर रहे हैं तो एक बहुत ही अच्छी जर्नी ये हो सकती है, क्योंकि अलग अलग स्टेजेस पे आपकी अलग अलग स्किल्स जो है वो परखी जाती है। और इसके साथ ही जैसा कि आपने बताया कि कई बार वो जो द्वंद्व भी होता है या हताशा भी होती है, तो मैं मेरा ही एग्जांपल दूंगा। जैसे पिछली बार मेरा रिजल्ट आया था और मैंने देखा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, इस बार मुझे कोई सर्विस एलोकेट नहीं होगी, तो कुछ दिन, बिल्कुल ह्यूमन टेंडेंसी हमारी होती है कि हम कुछ दिनों के लिए हताश हो जाते हैं, हम सोचने लगते हैं कि भाई मैं कैपेबल हूँ या नहीं हूँ, मुझसे होगा या नहीं होगा। पर उस टाइम में हमें थोड़ा सा खुद को गैदर करने की ज़रूरत होती है, हमें खुद को संभालना होता है, और हमें थोड़ी सी और मेहनत की, थोड़े से और एफर्ट्स की ज़रूरत वहाँ पर पड़ती है। तो अगर हम उस फेज़ को अच्छी तरीके से निकाल पाएँ, अगर हम वहाँ पर भी अच्छी तरीके से हमारी तैयारी को कंटिन्यू कर पाएँ और जो हमारी गलतियाँ हैं उनसे हम सीख कर अगर आगे बढ़ें, तो निश्चित तौर पर जो सफलता है आज नहीं तो कल मिल ही जाती है सर।
1: बिल्कुल, एक चीज़ ये भी है कि आपने कहा अपने आप को एकत्रित करने की आवश्यकता है।
0: जी सर,
1: और RPSC के मामले में जब आप सेलेक्ट नहीं होते हैं तो एक मन में ये होता है कि अगला एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, और कब होगा, अगर होगा तो इस तरह की जो स्थितियां होती हैं उनसे दो चार होने की बड़ी एक चुनौती रहती है।
0: हाँ सर।
1: और ये चुनौती अपने आप में बहुत बड़ी है, आपने सफलतापूर्वक निर्वाह किया इस चुनौती का और आप डिगे नहीं, उसके लिए हम आपको फिर से बधाई देंगे। और साथ ही ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि फैमिली का जो सपोर्ट है इस पूरे के दौरान, जैसे आपने कहा कि फैमिली वाले एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, यानी उनको कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी कि अगर नहीं हुआ तो भी वो निराश या हताश नहीं होते और आपको सपोर्ट ही करते। ये जो जर्नी में कितना इम्पॉर्टेंट होता है पेरेंट्स का और मित्रों का जो सहयोग और सपोर्ट होता है वो?
0: सर मेरे ख्याल से बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब भी कोई कैंडिडेट तैयारी कर रहा होता है तो उसका मतलब एक दिन का करीब 2/3 पोर्शन उसकी तैयारी को डेडिकेटेड होता है, बाकी का 1/3 जो है वो खुद के लिए डेडिकेटेड होता है। और उस समय में अगर उसको फैमिली का सपोर्ट मिलता है, उसको अगर वहाँ से थोड़ा सा मतलब प्यार दुलार भी मिलता है, और अगर उसको कोई मोटिवेट करने वाला उस समय में होता है, तो जो तैयारी का फेज़ है वो काफ़ी आसान हो जाता है, बजाय कि जब उसको बार बार घर से ये सुनना पड़े कि तुमसे तैयारी नहीं हो रही, तुमसे पढ़ाई नहीं हो पा रही।
1: पिछले अटैम्प्ट की तैयारी जब आपने शुरू की थी, पिछले अटैम्प्ट जिसमें आपकी 799 भी रही थी, और अब ये करीब 4-4.5 साल का वक्फा रहा होगा लगभग?
0: हाँ, लगभग 3 साल का टाइम हो गया सर।
1: तो इस दौरान आप निरंतर पढ़ाई में ही लगे रहे या फिर आपने बीच बीच में कुछ ऐसे ब्रेक्स लिए जिनसे आप अपने आप को रिचार्ज करते रहे, रिजुविनेट करते रहे, कहीं आप अपने आप को फिर से उस तैयारी के लिए तैयार करते रहे?
0: सर बिल्कुल, ब्रेक्स तो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हमें जैसा कि मतलब एक आम धारणा होती है कि भाई आपको अगर परीक्षा पास करनी है तो 18 घंटे पढ़ना होगा, 16 घंटे पढ़ना होगा, वैसा ज़रूरी नहीं। पर इसमें अगर आप कंसिस्टेंटली डेली के 9-10 घंटे भी अगर आप पढ़ाई करते हैं, पर वो कंसिस्टेंसी उसमें इंपॉर्टेंट है कि आप एक भी दिन उसमें मिस नहीं करें। और अगर आपका जैसे पढ़ने का मन नहीं है तो भी आपने 2-3 घंटे में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए, कुछ करंट अफेयर्स का पढ़ लिया, या कुछ इन्फॉर्मेशनल आपको लग रहा है तो आपने वो कंटेंट पढ़ लिया। तो इस तरीके से जब आप कंसिस्टेंटली और हार्डवर्क दोनों साथ में आप करते जाते हैं तो आपको सफलता जो है वो जरूर मिलती है सर।
1: और इसमें युवा को क्या अपने आप को झोंकना पड़ता है, एक एक नंबर के लिए, एक एक मार्क के लिए काया होना पड़ता है कि कहां से ये नंबर जो है कहीं छूट नहीं जाए, इस नंबर को भी मुझे अर्जित करना है?
0: बिल्कुल सर, इसमें जो खास तौर से जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती है, इसमें जो 0.25 मार्क्स हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। 0.25 मार्क्स भी है जो आपकी रैंक जो है ऊपर नीचे कर देता है, और

0: रैंक ऊपर नीचे होती है तो सर्विस भी ऊपर नीचे हो जाती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि 0.25 की वजह से जो आरएस में सेलेक्ट हो रहा था वो आरपीएस में सेलेक्ट हो गया, या आरपीएस में हो रहा था वो नीचे वाली जो सर्विस है उसमें सेलेक्ट हो गया। तो हर एक जो फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स हैं वो अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमारा जब भी तैयारी करें तो मकसद यही होना चाहिए कि कोई भी ऐसी चीज़ पीछे ना छूट जाए जिससे हम आधा मार्क्स भी गैदर कर पाएं।
1: जी यशवंत जी, जब भी हम किसी सेवा की तैयारी कर रहे होते हैं, एक सेवा का भाव भी होता है, हम अपने पर्सनल गोल के लिए तो करते ही हैं, अपने आप को भी हम साबित करना चाहते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए जो हमारे परिजन हैं उनके लिए, लेकिन साथ ही एक लार्जर गोल होता है कि हम सोसाइटी को भी कुछ दें। तो आपके मन में क्या था प्रतिष्ठित सेवा में आने के पीछे? कुछ ऐसा आपने सोच रखा था कि ये चीज़ें हैं जो शायद मैं चेंज कर पाऊँ या चेंज न कर पाऊँ, तो कुछ ऐसी पॉलिसीज जो सरकार बनाती है उनको एग्जीक्यूट करने में यहाँ का निवासी होने के नाते और बेहतर तरीके उसको अंजाम दे सकता हूँ मैं?
0: बिल्कुल, ये जो आप बता रहे हैं, ऐसा जब भी हम तैयारी करते हैं या कोई भी जो तैयारी करता है वो यही सोचता है कि जब मैं भी सेवा में आऊँगा या जब मेरा चयन हो जाएगा, तो कोशिश यही होती है कि भाई जो एक तो सबसे पहले जो प्रशासन और जनता के बीच में गैप है उसको कम करने की कोशिश की जाए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो आम पब्लिक होती है वो किसी बड़े अधिकारी के पास जाने में कतराती है, या वो सोचती है, उसे चार बार सोचना पड़ता है कि मैं जाऊँ नहीं जाऊँ अपनी शिकायत लेके। एक तो वो गैप कम होना चाहिए, और इसके अलावा जो एक डिफ़िकल्टी होती है किसी को भी कोई प्रोसेस स्टार्ट करने में, अगर किसी को कोई कंप्लेन करनी है, किसी को अपना काम करवाना है, तो उसमें जो लंबा एक प्रोसेस होता है जिसको हम रेड टेपिज़म भी कहते हैं, जो लाल फीताशाही, वो मेरे ख्याल से थोड़ी कम होनी चाहिए। कोशिश ज़रूर करूँगा सर कि ये ऐसी चीज़ें
1: हों। पूरी उम्मीद है मैं कि आप जैसे युवा इस तरह की प्रतिष्ठित सेवाओं में अगर आते हैं और निरंतर आते रहेंगे तो जो प्रशासन और लोगों के बीच का गैप है, जो एक संवाद का एक बड़ा अंतराल है, वो भर पाएगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई आने के लिए, और इस एग्ज़ाम में आपने हम सब के लिए गर्व करने का मौका दिया है, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ।
0: थैंक यू सर।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुनी राजस्थान राज्य सेवा परीक्षा में 11वां स्थान प्राप्त करने वाले यशवंत सांधू से संजय व्यास की बातचीत। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के प्रोग्राम की ओर।

0: मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। वो शख्स जिसने मोहब्बत, तन्हाई, रिश्ते और ज़िंदगी को इतना आसान लेकिन गहरे अल्फाज दिए कि हर पीढ़ी खुद को उनकी शायरी में ढूंढ लेती। आज उर्दू अदब की दुनिया में एक ऐसी खबर आई जिसने हर दिल को बेहद उदास कर दिया। मशहूर शायर, गज़लकार और पद्मश्री सम्मानित बशीर बद्र साहब आज हमारी दुनिया को अलविदा कह चले।
1: और इन्हीं की याद में अब हम आपको सुनवाएंगे बशीर बद्र साहब की लिखी ये गज़ल, जिसे गाया है उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन ने।

0: बशीर बद्र वो शख्स जिसने मोहब्बत तन्हाई रिश्ते और ज़िंदगी को इतने आसान लेकिन गहरे अल्फाज दिए कि हर पीढ़ी खुद को उनकी शायरी में ढूंढ लेती थी। उनका एक मशहूर शेर आज भी हर दिल में बसता है, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, ना जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए।
1: बशीर बद्र साहब सिर्फ एक शायर नहीं थे, वो एहसासों की आवाज़ थे। उनकी गज़लें किताबों तक सीमित नहीं रही बल्कि लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई।
0: और सच कहूँ कुछ लोग जाते नहीं, बस अल्फाज बनकर हमेशा हमारे साथ रह जाते हैं।
1: इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त आपके अपने कार्यक्रम युव वाणी से, जहाँ हम दोनों थे, यानी कि मैं स्वस्ति और आज मेरे साथ थी
0: और मैं आयुषी। प्रस्तुति थी राजेश लामरोड द्वारा और संयोजक था मनीष सोलंकी का। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे युव वाणी कार्यक्रम आकाशवाणी जोधपुर का। ये
3: युव वाणी कार्यक्रम अभी आपने सुना, ये एफएम सेंसिटी है, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजे हैं, हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अब सुनिएगा।
4: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने पार्टी की राज्यसभा सीट की पेशकश विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दी है। उन्होंने कहा कि वे राज्य की जनता के लिए काम करते रहेंगे। कांग्रेस की विधानसभा चुनावों में जीत के बाद सिद्धारमैया मई 2023 में दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे। उनके इस्तीफे के साथ ही राज्य में चल रहा लंबा सत्ता संघर्ष समाप्त हो गया है। श्री डीके शिवकुमार को 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से हर घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास

0: परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमीशन कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की भी चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आशीष शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान विधायक अभिषेक देवरॉय को पार्टी की त्रिपुरा प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि देवरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर कल रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्ण पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थागंडी के SIRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने येनेज यांशा को स्लोवानिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया और प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिरला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिरला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज दिल्ली नगर निगम के भलसवा अपशिष्ट निपटान स्थल संबंधी सुधार कार्यों की समीक्षा की। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया कि अपशिष्ट की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आई है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर के रक्षा सचिव जोसेफ लियोंग के साथ 16वीं रक्षा नीति वार्ता की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस वार्ता ने भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की पुष्टि की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु ने अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की पुरुष डबल्स जोड़ी तथा ध्रुव कपिला तनिषा क्रास्टो की मिक्स डबल्स जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सेंसिटी चैनल है, FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:05 हुए हैं और ये वक्त है सुनने का। गुड इवनिंग जोधपुर।

दोस्तों नमस्कार, शाम का समा और कुछ मेलोडियस गाने। आज की शाम एफएम सनसिटी पर मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ। हाजिर ये प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है गुड इवनिंग जयपुर। बातें होंगी पूरी एक घंटे, बने रहिए 102.1 एफएम सनसिटी।

0: दोस्तों, गर्मी अपने शबाब पर है और हम सब पूरी कोशिश करते हैं कि इस आग की बारिश से खुद को बचाए रखें। इसके लिए हम तमाम संसाधन इकट्ठा करते हैं, कूलर, एसी और तमाम तरह की दूसरी चीजें। लेकिन जो हम नहीं करते वो है प्रकृति का साथ लेना। जी हाँ, इसी से हम वंचित हैं। कोशिश करें कि अपने आप को जोड़े रखें कुदरत से, इस प्रकृति से और इसके दिए तमाम तरह के वरदानों से।
1: ओ शाम, कुछ

दोस्तों, इस छांव और धूप के खेल में और भी एक खेल है रेल का। जी हाँ, अजमेर मंडल में जो ब्रिज निर्माण हो रहा है उसका असर कुछ ट्रेनों पर पड़ा है, उसके बारे में आपको बता दें। अजमेर मंडल के मदार पालनपुर रेलखंड पर आहुआ स्टेशन यार्ड में ब्रिज संख्या 506 पर आरसीसी बॉक्स डालने के इस काम के चलते रेल यातायात प्रभावित रहेगा। तकनीकी काम के लिए इन ब्लॉक्स के डाले जाने के कारण 28 से 30 मई तक आपको कुछ रेल

सेवाओं का संचालन प्रभावित दिखेगा। जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया है कि काम के दौरान कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि 5 प्रमुख ट्रेनों का संचालन परिवर्तित मार्ग से किया जाएगा। किस तरह की रहेगी इनकी संचालन व्यवस्था, ये आपको बता दें, रेलवे के अनुसार ट्रेन संख्या 14,821 जोधपुर साबरमती एक्सप्रेस, 28 व 29

दी एक्सप्रेस 28 व 29 मई को रद्द रहेगी। फिर से सुनिए, 14821 जोधपुर साबरमती एक्सप्रेस 28 व 29 मई को रद्द रहेगी। वहीं वापसी में ट्रेन संख्या 14822 साबरमती जोधपुर एक्सप्रेस 29 व 30 मई को संचालित नहीं होगी। रणकपुर एक्सप्रेस, बांद्रा एक्सप्रेस, हड़पसर जोधपुर एक्सप्रेस और जम्मू तवी एक्सप्रेस सहित 5 ट्रेनों को 29 मई शुक्रवार को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। ये ट्रेनें लूणी, भीलड़ी, महसाणा होकर संचालित होंगी। परिवर्तित मार्ग से चलने वाली ट्रेनों का समदड़ी, जालौर, मारवाड़, भीनमाल, भीलड़ी और पाटन स्टेशनों पर अस्थायी ठहराव रहेगा। मार्ग परिवर्तन के कारण पाली मारवाड़, मारवाड़ जंक्शन, फालना, सुमेरपुर, पिंडवाड़ा, आबू रोड और पालनपुर स्टेशनों पर इन ट्रेनों का ठहराव नहीं होगा। रेल प्रशासन ने सभी यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी लेने की अपील की है, इसलिए खास तौर पर ध्यान रखिएगा इस रूट पर अपनी यात्रा के बारे में अगर आप प्लान करने वाले हैं।

दोस्तों, जो हम ये महसूस करते हैं ना, दिन का ढल जाना, सूरज का शिद्दत के साथ रोशन होना, सुबह की ताजी हवा, और अगर आप खुशकिस्मत हैं तो शाम को घर लौटकर सोने की तैयारी करते पंछियों का कलरव, यकीन मानिए ये सारी खुशियां बहुत बड़ा उपहार हैं इस प्रकृति का हम इंसानों को। हमें बचे रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए इन सब की बहुत जरूरत है। ये सिर्फ फिलर्स नहीं है। जब तक इंसान अपने साथ साथ इन सब की कीमत करना नहीं सीखेगा, कुदरत का कहर कई तरह से हम पर पड़ता रहेगा। ये जो गर्मियां, ये सर्दियां शिद्दत के साथ पड़ती हैं, इनका होना बहुत जरूरी है, लेकिन कहां सीमा रेखा है और कहां हमें अपने रहने के तौर तरीकों में बदलाव लाना होगा, आइए इसी यात्रा पर चलते हैं।

साथियों, विकास की अंधी दौड़ में हमने जो दौड़ना शुरू किया है, न जाने कहां जाकर हम रुकने वाले हैं। कहीं तो ठहर कर हमें सोचना होगा, आत्मचिंतन करना होगा कि किस राह पर हम चलें, किस दूरी तक हम चलें और किसे साथ लेकर चलें।

0: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS व चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: 102.1 FM Sun City पर ये है प्रोग्राम गुड इवनिंग जोधपुर। जी हाँ दोस्तों, वक्त की और विकास की इस बढ़ती हुई दौड़ में और वक्त के साथ चलते हुए एक दूसरे को पीछे छोड़ देने की होड़ में हम ये भूल जाते हैं कि अगली पीढ़ी को हम क्या देकर जाने वाले हैं। क्या ये कंक्रीट की बिल्डिंग्स या साफ सुथरी हवा, क्या वो सक्षम होंगे ये नीला आसमां देखने में, या फिर काली कलूटी घटाएं उनका स्वागत कर रही होंगी। सोचना आपको और हमें है किस राह पर हम चलने वाले हैं।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: दुनिया का सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न सुख एक तरफ,
3: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियारी उम्मीद। विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर। कागज

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: 102.1 FM Sun City। जी हाँ, आपके क्षेत्र में भी आपके एरिया में भी कोई ना कोई प्रगणक जरूर पहुंचा होगा

या तो हाउस लिस्टिंग करते हुए या आपके घर में मौजूद सुविधाओं के बारे में पूछताछ करते हुए। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी उन प्रगणकों का सहयोग करेंगे ये पुख्ता करते हुए कि क्या वो वाकई सरकार द्वारा भेजे गए प्रगणक हैं, क्योंकि फ्रॉड से सावधान रहना खुद हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन साथ ही एक नागरिक के तौर पे ये भी खास जिम्मेदारी है कि जब ये साबित हो जाए कि वो ठीक आदमी हैं और बिल्कुल सही व्यक्ति है जिन्हें आप एक प्रगणक के तौर पर मानकर उन्हें अपनी सूचनाएं दें और पूरी तरह से उनका सहयोग करें, ये सब किया जा रहा है हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि हर 10 साल में हो जाने वाली ये जो जनगणना है, इस बार थोड़ी सी लेट है, लेकिन डिटेल के साथ ये सारी चीज़ें पूछने का मोटो ये है कि जो भी सरकार हो केंद्र में और राज्यों में, उन्हें अपनी नीतियों के निर्माण के लिए इनसे विजन मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी का सहयोग रहेगा इस काम में।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: 102.1 FM सेंसिटी पर एक जानकारी जनगणना के बारे में और भी आपको दे सकते हैं हम, वो ये कि अगर आपने 15 मई तक की जो सरकार ने आपको अवधि दी थी सेल्फ इन्यूमरेशन करने के लिए यानी स्वगणना करने के लिए, अगर आपने की हो तो अपनी आईडी बिल्कुल सहज अपने पास रखें ताकि जब भी प्रगणक यानी इन्यूमरेटर आपके घर का दरवाजा खटखटाए वो आईडी आपके हाथ में हो और आपको एक मिनट से भी कम वक्त में फ्री कर दिया जाएगा। ये दोनों की सुविधा के लिए बहुत बेस्ट तरीका है। लेकिन अगर किसी भी कारण से आप ये 15 मई तक वो प्रोसेस करना भूल गए हैं जो ऑनलाइन सेंसस ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर किया जाना था, तो अब और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सिर्फ यही कि जब प्रगणक आपके घर के दरवाजे को खटखटाए तो उनका सहयोग करें और उनके प्रश्नों के उत्तर दें। बहुत आसान से सवाल जिनके उत्तर देकर आपको भी खुशी मिलेगी।

0: 27 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: जी हाँ साथियों, इन पत्थरों के जंगल में रहते हुए हमें सोचना होगा कि क्या हम इंसान भी धीरे धीरे पत्थरों में तब्दील होते जा रहे हैं। अपने आसपास बसर कर रहे कुदरत के नायाब जीवों को देखिए, एक नजर इन पर डालिए, ये अपने मूक आंखों से कुछ न कुछ बयां करते मिलेंगे। कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि कुदरत के साथ अपनी समानता, अपना संबंध, अपना साहचर्य बनाए रखें। हम कुदरत से जुड़े हैं और कुदरत से बाहर जाकर या उससे पावरफुल हम हो नहीं सकते। ये बात हमें बहुत ही सादगी और विनम्रता के साथ स्वीकार कर लेनी चाहिए। ये बरसती हुई आग और कई जगहों पर सर्दियों में ठिठुरते हुए लोग, अचानक से गरजते हुए बादल, बढ़ती हुई बाढ़, भूकंप और कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं हमें बार बार ये संकेत देती हैं कि हमें प्रकृति से दोस्ती करनी ही होगी। हम इससे ऊपर अपने आप को मान नहीं सकते।

दोस्तों, येसुदास की मीठी मधुर आवाज के साथ आज का गुड इवनिंग जोधपुर प्रोग्राम यही खत्म करने की अपने दोस्त सिद्धार्थ शर्मा को इजाजत दीजिए।

आप सुन रहे थे गुड इवनिंग जोधपुर एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये एफएम सन सिटी है, शाम के 7 बजने वाले हैं। जयमाला, ये कार्यक्रम सुनिएगा बस थोड़ी ही देर में।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

फौजी भाइयों के कार्यक्रम जयमाला में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। आज फिर कार्यक्रम की शुरुआत होगी देशभक्ति के साथ, तो चलिए आपको सुनवाते हैं ये देशभक्ति गीत, जिसे आपने लिया है फिल्म मिशन मजनू से। इसे गाया है सोनू निगम ने, गीत मनोज मुंतशिर का है, संगीत रोचक कोहली का।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

अभी आपने सुना भारतीय सेना का गीत, गीत संगीत और गायक कलाकार थे कैलाश खेर। कार्यक्रम में अगला गीत है लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में। फिल्म का नाम है किंग अंकल। गीत लिखा इंदिवर ने, संगीत से सवारा राजेश रोशन ने।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।

0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात। तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
1: कार्यक्रम का अगला गीत कुमार सानू और पूर्णिमा की आवाजों में है। फिल्म का नाम है गोपी किशन, गीत समीर का है, संगीत आनंद मिलन का।

गणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

अभी आपने तवायफ फिल्म का ये गाना सुना, इसे गाया था आशा भोसले और साथियों ने, गीत हसन कमाल का था, संगीत रवि का। जयमाला कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे अंतराल के बाद।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: संगीत विजू शाह का है।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: आप हैं विविध भारती के संग, इनसे मिलिए।
1: श्रोताओं, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज टीवी और फिल्म अभिनेत्री प्रकृति नौटियाल से यूनुस खान की बातचीत आपको सुनवा रहे हैं प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई।
0: इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं अभिनेत्री प्रकृति नौटियाल। प्रकृति, बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में।
2: थैंक यू।
0: ये बताइए, कहाँ की रहने वाली है, परवरिश कहाँ पर हुई है?
2: मैं वैसे गढ़वाल की हूँ, उत्तराखंड, और जन्म मेरा दिल्ली में हुआ था, लेकिन मैं बहुत जगह रही हूँ, जैसे गुजरात भी रही हूँ, चंडीगढ़ भी रही हूँ, दिल्ली भी रही हूँ, बॉम्बे भी, उत्तराखंड भी, मतलब बहुत जगह रही हूँ मैं।
0: अच्छा, कितना लगाव है गढ़वाल की वादियों से?
2: बहुत ही ज्यादा, पहाड़ को कभी भूल नहीं सकता, ऐसा लगता है कि पहाड़ में ही वापस बस जाए, लेकिन इंडस्ट्री यहाँ पे है, सिंस तो बॉम्बे में ही रहना पड़ रहा है।
0: अच्छा, ये बताइए, ये जो अभिनय की यात्रा है, अभिनय का शौक है, ये कहाँ से शुरू हुआ था आपका?
2: मुझे ऐसा लगता था कि बच्चे बहुत नौटंकी होते हैं, तो मैं शीशे में देख के बड़े नाटक करती थी।
0: ये किस उम्र से शुरू किया था?
2: ये पता नहीं, काफी बचपन से शुरू हो गया था। तो एक मुझे ऑफर आया, डीडी नेशनल का ही आया, उसमें एक डॉक्यूमेंट्री था, गुजराती डॉक्यूमेंट्री, तो मम्मी ने बोला कर लो ट्राई, अगर तुम्हें करना है तो।
0: तब आप कितने वर्ष की थी?
2: मैं तब 15 साल की थी।
0: अच्छा,
2: तो मैंने ट्राई कर लिया, उसके बाद से फिर शॉर्ट फिल्म्स वगैरह सब शुरू ही हो गया, फिर म्यूजिक वीडियोस।
0: अच्छा,
2: हाँ।
0: तो पहली जो एक्टिंग थी वो की आपने 15 वर्ष की उम्र में एक डॉक्यूमेंट्री के लिए।
2: हाँ,
0: जब कैमरे का सामना किया तब क्या हो रहा था?
2: तब दिल की धड़कनें बड़ी हुई थी, अभी भी है।
0: जब परफॉर्म करना होता है या किसी अनजान एक्सपीरियंस से गुजरना होता है तो दिल की धड़कनें तो बड़ी ही होती है। स्कूल के जमाने से भी चल रही थी एक्टिंग, मतलब ये जो डॉक्यूमेंट्री के पहले से भी?
2: हाँ, मतलब थिएटर होता था हमारे स्कूल में, प्लेज होते थे, ड्रामा क्लासेस तो चलता ही रहता था, ड्रामा तो कभी।

0: योगा वैसे बंद नहीं होता है। हमने सोचा इसे प्रोफेशनली किया जाए फिर।
1: बिल्कुल सही है। पढ़ाई और एक्टिंग का बैलेंस किस तरह से होता था?
0: पहले तो मतलब इतना काम नहीं होता था, तो मैंने कर लिया, मतलब स्कूल इतना जाती नहीं थी मैं, साइड बाय साइड जॉब भी कर रही थी एक पार्ट टाइम, तो मैनेज हो गया। घर पे पढ़ लेते थे, मम्मी भी प्रिंसिपल रहती थी, मम्मी भी पढ़ा देती थी हमें। और कॉलेज में थोड़ा सा दिक्कत हुई, कॉलेज में शूट भी है, एग्जाम्स भी है, बहुत मुश्किल हुई लेकिन कर लिया,
1: एडजस्ट हो गई सारी चीजें।
0: हाँ, हो गई।
1: मुझे बताइए कि आपने थिएटर की दुनिया में क्या क्या किया है और कदम कब रखे थे रंगमंच की दुनिया में?
0: थिएटर मैंने 2012 में शुरू किया था, चंडीगढ़ में मैंने थिएटर स्टार्ट किया था, कुछ टाइम वहां किया थिएटर, 3 साल वहां किया और 2 साल मैंने दिल्ली में किया।
1: अच्छा। हाँ। तो जब थिएटर में शुरुआत हुई चंडीगढ़ में, रंगमंच की अच्छी परंपरा है, वहाँ स्कूल भी है, वहाँ की यूनिवर्सिटी में, मुझे वहाँ के एक्सपीरियंसेस के बारे में बताइए। कौन से नाटक किए, किन लोगों के साथ किए थे?
0: मेरा सबसे पहला नाटक रामलीला था एक, तो उसमें मुझे कुछ पता ही नहीं था ये राम लक्ष्मण के बारे में, मैंने कुछ सुना ही नहीं, और मैंने सोचा रामलीला मतलब आज के जमाने में कौन रामलीला करता है, और वो 8-9 दिन चला और हमारा जो सेक्टर का ग्रुप था वो फर्स्ट आता था हमेशा की तरह, और इस बार भी आया ही था, तो मेरा शबरी के बचपन का रोल था, तो बहुत सारे प्लेस किए हमने।
1: अच्छा।
0: हाँ।
1: और इसके अलावा क्या किया?
0: इसके अलावा तो मैं फिर पंजाबी म्यूजिक वीडियोस में किया, फिर मैंने एक पंजाबी फिल्म भी करी चंडीगढ़ में रह के, फिर मैं हिंदी फिल्म्स की तरफ आने लगी, मैंने हिंदी फिल्म भी करी दिल्ली में आके।
1: अच्छा। पंजाबी फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा था? वो फिल्म कौन सी थी और उसको किस तरह का रिस्पॉन्स मिला था?
0: उसमें मेरा एक कैरेक्टर था छोटा सा, मुंडिया तो बच के रही फिल्म का नाम है, और ज्यादा बड़ा कैरेक्टर नहीं था, छोटा ही था, लेकिन मजा आया। मुझे पंजाबी बोलनी आती नहीं थी, इस तरीके से मैंने पंजाबी भी सीख ली।
1: ओ, तो पंजाबी बोलनी नहीं आती थी लेकिन पंजाबी फिल्म की थी और इसलिए पंजाबी सीखने मिल गई। मुंबई कब आना हुआ था?
0: मुंबई वैसे तो मैं पहले 4 साल 1 महीना रही, बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, नहीं हो पाया मुझसे, मैं कुछ टाइम मैंने कुछ थोड़ा सा काम किया फिर वापस चली गई मैं, फिर मैं अभी 2 साल पहले आई हूँ और हो गई, मैं अब तो सेटल हो गई हूँ, मैंने काफी काम कर लिया, मैंने बहुत सारे एड्स कर लिए, रियलिटी शो कर लिए और टीवी मतलब फिल्म वगैरह, यहाँ पे मैंने एक ऑस्ट्रेलियन फिल्म भी करी, उसके बारे में ज्यादा बता नहीं सकती।
1: ये बताइए कि मुंबई का एक्सपीरियंस किस तरह का है, क्योंकि जब यहाँ कोई स्ट्रगल करने के लिए आता है तो उसे तरह तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
0: मुझे ऐसा लगता है कि जो मुंबई में आके रह लिया 5-6 महीने, अगर वो खुद से रह लिया तो मतलब वो पक्का बन गया, बस अब यहाँ रह लिए तो दुनिया के किसी भी कोने में रह लेंगे।
1: तो मुंबई में जो पहला काम आपने सेकंड दौरे में मतलब पहली बार तो आप लौट गई थी, वो क्या किया था?
0: मैंने टीवी में किया था, मैंने एक जजमेंट किया, मैंने सीरियल, वो भी उसमें भी कुछ टर्म का मेरा रोल है, और मोबाइल फोन का एड्स का, ये सब बहुत किया।
1: टेलीविजन के लिए और फिल्मों के लिए काम करने में किस तरह का फर्क है एक एक्टर के लिए?
0: टेलीविजन में ये होता है कि आपको एक कैरेक्टर मिला है तो वही आपका चलता रहेगा, वही आप करते रहते, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी बोरियत ऐसे हो जाता है वही करते हुए। फिल्म में क्या होता है कि आपको बहुत वैरायटीज हैं, कि 1 महीने बाद अब आपको दूसरा काम मिल रहा है तो आपको एकदम से ही दूसरा रोल मिल जाएगा, थोड़ा प्ले करने को मिलता है फिल्म में, और सीरियल में एक ही चल रहा है वो चलता ही रहता है।
1: अपने आप को किस तरह से अपने रोल्स के लिए आप तैयार करती हैं? इतनी जरा सी हैं और इतनी बड़ी एक्टिंग की और फिल्मों की दुनिया है।
0: जब हमें ऐसे कोई पता लगता है कि हमें एक कैरेक्टर आ रहा है तो हम एक तो उस कैरेक्टर में हमें रहना है, अपने आप को आइसोलेट कर देना पड़ता है पूरी दुनिया से, क्योंकि फिर हम लोग थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं फिर, और ऐसा होता है कि हम पूरे एकदम तैयार हो रहे हैं, मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं, पूरा दिन आप उसी कैरेक्टर में हो कि वो कैरेक्टर हल्का सा छूट ना जाए और अपनी हम बेस्ट परफॉर्मेंस दे कैमरे के आगे।
1: घर वालों का कितना रोल है आपको यहाँ तक लाने में?
0: घर वालों का तो पूरा रोल है, पूरा सपोर्ट है, और अगर मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी नहीं होती तो शायद मैं ट्राई भी नहीं करती, फिर मैं एक नॉर्मल एक जॉब कर रही होती, क्योंकि मम्मी ने मुझे पुश किया कि तुझे करना चाहिए, तेरे में है वो बात, तू कर सकती है, तो फिर मुझे तब हिम्मत आई कि हाँ।
1: बिल्कुल। अभी मुझे बताइए कि वो कौन कौन से सीरियल्स हैं जिन्होंने थोड़ा आपको नाम दिया, आपको पहचान दी है?
0: एक तो ये मैंने किया था स्वाभिमान किया मैंने, और मैंने जो रियलिटी शोज किए फिर बिंदास का भी किया था और कुछ एक दो और भी हैं, तो उनसे मुझे काफी वो हुआ, और एक एड था मैंने किया था फोन का, तो उससे भी मुझे काफी हुआ।
1: क्या अब जिस तरह की फिल्में आ रही हैं और जिस तरह के सीरियल्स आ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि सब्जेक्ट्स के मामले में और अपॉर्चुनिटीज के मामले में पहले से बहुत ज्यादा फर्क आ गया है और अब मामला थोड़ा ज्यादा डिटेल्ड हो गया है?
0: पहले मुझे ऐसा लगता है कि पहले इतनी लोगों की एंट्री नहीं होती थी फ्रेशर्स की, अब इतना सब कुछ बन रहा है, मतलब फटाफट, मतलब हमें रोज कास्टिंग के लिए कुछ ना कुछ आ जाता है कि कभी ये कास्टिंग करे कभी वो कास्टिंग करे, और अच्छा भी है कि सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इतने सारे लोग हैं, बहुत टैलेंटेड लोग आज भी बॉम्बे में भटक रहे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है।

0: और टैलेंट इतना है कि जिन्हें काम नहीं मिल रहा और मिलना चाहिए उनको।
1: एक लड़की के लिए मुंबई में स्ट्रगल करना कितना मुश्किल काम होता है और किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है?
0: ये तो बहुत ही अच्छा सवाल पूछ लिया आपने। एक लड़की जब बॉम्बे आती है तो सब लोग सोचते हैं कि ये अपना खर्चा कैसे चलाएगी, तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है गंध, ये कहाँ जा रही है रात को, क्या हो रहा है, लेकिन अब ऑफ स्क्रीन किसी को मेहनत दिखती नहीं है।
1: यही मैं कह रहा हूँ कि किस तरह की मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ता है।
0: वही सबके सामने, आप कितने भी मेंटली डिस्टर्ब्ड हो, सबके सामने आपको नॉर्मल दिखाना है कि आप नॉर्मल हो, आप खुश हो, आपको बहुत काम मिल रहा है। अगर किसी को नहीं भी मिल रहा, हम दिखा नहीं सकते हैं लोगों को, तो बहुत शो ऑफ भी है इस इंडस्ट्री में, करना भी पड़ता है ताकि काम भी मिलते रहना चाहिए। तो नॉर्मल ही रहो, सबके सामने हंसते खेलते रहो
1: जी। और आपको ये बताइए, शूटिंग से जुड़ी हुई कोई बहुत खास बात जो आप हमारे साथ बांटना चाहें, जो आपकी जिंदगी की यादगार बात रही हो अब तक के आपके अपने एक्सपीरियंस से?
0: अभी तक तो मेरा भी रिसेंटली हुआ था, ये जब मैं स्वाभिमान कर रही थी तो मेरे कैट का ना एक्सीडेंट हो गया था, तो उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। उस दिन मैं शूट पे थी और वो सीन चल रहा था कि जब बहू घर पे आ रही है और मैं थाली लेके, मेरा कामवाली का रोल था, तो मैं थाली लेके जा रही हूँ उसका स्वागत करने के लिए, उसमें दिया वगैरह सब रखा हुआ है और खुशी का माहौल है, मैं रो रही हूँ, मैं लिटरली आंसू रो रही हूँ और वो खुशी का माहौल है, और मैं रोते रोते मेरा पैर ऐसे फिसला और वो प्लेट गिरी और वहाँ पे कारपेट पे वो आग लग गई।
1: ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ।
0: और मैं बैठे बैठे रो भी रही हूँ और हंस भी रही हूँ। बहुत फनी भी लगा था और थोड़ा डिप्रेसिंग भी था, मतलब अजीब सही था। ये सबसे यादगार था एक्चुअली मैंने अभी तक।
1: ये बताइए कि सीनियर्स का बर्ताव नए एक्टर्स को लेकर किस तरह का होता है?
0: अच्छा होता है। अगर एक एक्टर अच्छा है तो सीनियर्स बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, सिखाते हैं। बल्कि जिन जिन के साथ मैंने काम किया, मैं पहले डरी हुई थी, थोड़े बहुत बड़े बड़े एक्टर्स थे मेरे सामने और मैं थोड़ा सा घबरा गई थी, तो वो लोग जब थोड़ा सा समझाते थे तो मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं, मैंने देखा है।
1: सीख कर आना कितना मायने रखता है?
0: बहुत ज्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि पहले आपको थिएटर करना चाहिए, फिर आपको इस इंडस्ट्री में आना चाहिए। अगर आपने थिएटर नहीं किया तो आप टेक पे टेक लेते जाओगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर करके ही आपको आगे सिनेमा में आना चाहिए।
1: अब मुझे ये बताइए कि आपने अपने लिए क्या सोच रखा है, मतलब क्या गोल्स हैं? टेलीविजन ज्यादा करना है, फिल्में करना है, डायरेक्शन करना है?
0: मुझे वैसे फिल्म्स करनी है, आर्ट फिल्म्स करनी है।
1: आज के जमाने में एक्टिंग कितना फ्लरिशिंग करियर है या इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल है?
0: नहीं, फ्लरिशिंग करियर तो बहुत है, अगर आप एक बार चल पड़े, आपकी गाड़ी चल पड़ी तो वो चल पड़ी, पर लेकिन वो चलाने के लिए गाड़ी आपको इतनी मेहनत करनी है, आपका रोज एक आपको जंग लड़नी है, हजारों एक्टर्स में से आप सिलेक्ट होने चाहिए, क्योंकि वहां पर लाखों एक्टर्स हैं जो आपके बराबर है और आपके जितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, लेकिन आपको ये दिखाना है कि आप किसे सबसे हटके हो, तो मतलब ये रोज एक जंग है
1: और इस जंग के लिए आपको रोजाना तैयार होना पड़ता है।
0: रोज बहुत टफ है।
1: ऑस्ट्रेलियन फिल्म आपने की, आपने बताया कि बहुत ज्यादा उसके बारे में आप रिवील नहीं कर सकती। मुझे बताइए कि फॉरेन क्रू के साथ काम करना कितना डिफरेंट था भारत के लोगों की बजाय?
0: मुझे ऐसा लगा कि वो ज्यादा बेटर है। वो बहुत प्रोफेशनल है अपनी चीज को लेके, अगर उन्हें वो चीज करनी है तो वो बहुत प्रोफेशनली करेंगे। यहाँ पे थोड़ा खिचड़ पिचड़ रहता है कि यू नो, मुझे ज्यादा बेटर लगा उस क्रू के साथ काम करना।
1: उनका काम ज्यादा सिस्टमेटिक आपको लगा?
0: हाँ, प्लस जो उसमें लीड एक्टर्स थे वो लोग भी दे वर गुड टू एवरीबडी, मतलब जूनियर एक्टर्स भी अगर वो देख रहे तो उनको भी वो ग्रीट कर रहे हैं। मैंने थोड़ा बॉलीवुड में देखा है ये कि जूनियर एक्टर्स को या जूनियर आर्टिस्ट जो भी होता है बैकग्राउंड में, वो लोग ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कौन है वो, पता नहीं कहां से वो उठा के आ गए, जबकि वो भी एक फिल्म का हिस्सा है, अगर वो नहीं होते तो एक फिल्म नहीं बनती है, मतलब वो बहुत मायने रखते हैं। पर वो हॉलीवुड वाले उनकी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बॉलीवुड वाले मैंने नहीं देखे रिस्पेक्ट करते हुए।
1: और टेलीविजन की दुनिया में?
0: टेलीविजन में भी सबकी इज्जत है।
1: अच्छा। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि बहुत सारे लोग हैं जो छोटे छोटे शहरों से स्ट्रगल करने के लिए मुंबई आने को तैयार रहते हैं, और हम जब विविध भारती से एक्टर्स या अलग अलग पर्सनालिटीज के इंटरव्यू सुनवाते हैं तो लोगों को लगता है कि अगर ये लोग मुंबई में कामयाब हुए हैं तो हम भी चांस ले सकते हैं। ऐसे लोगों को अपने एक्सपीरियंस से आप क्या सलाह देंगी प्रकृति?
0: अगर आप एक साल थिएटर कर लिया आपने तो आप जरूर बॉम्बे में सर्वाइव कर लोगे।
1: यानी रंगमंच का बहुत ठोस अनुभव होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर आप एक्टिंग की दुनिया में आगे आए तो बेहतर रहेगा। आपको रंगमंच का अनुभव कितना काम आया है, क्योंकि आपने बताया कि आपने चंडीगढ़ में काफी सारा थिएटर किया था, तो यहाँ आकर वो वाली जो तैयारी है वो कितना याद आती है?
0: बॉम्बे में बहुत कॉम्पिटिशन है तो इजिली आपको थिएटर मिलता भी नहीं है, क्योंकि बहुत एक्टर्स फिल्म एक्टर्स भी जो अभी यहाँ पे थिएटर कर रहे हैं, तो आपको पहले यहाँ पे प्रोडक्शन में मिलेगा। और मैंने सोचा था कि यहाँ पे थिएटर आके करूंगी, लेकिन थिएटर में पैसा नहीं है, थिएटर में काम अच्छा है, तो फिर मैंने थिएटर का आइडिया ड्रॉप कर दिया।
1: प्रकृति, ये बताइए कि एक एक्टर के लिए ट्रेनिंग कितनी इम्पोर्टेंट होती है? आप ये मानती हैं कि एक्टिंग जो है वो एक नेचुरल प्रतिभा है?

0: या फिर उसको ट्रेनिंग के जरिए संवारा निखारा जा सकता है, बेटर बनाया जा सकता है?
1: नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग बहुत अच्छे एक्टर हैं, हम सब लोग रोज अपनी लाइफ में एक्टिंग करते हैं रियल लाइफ, लेकिन जब कैमरा आता है तो कॉन्शियस हो जाता है क्योंकि हमें पता होता है कि वो सामने वाला हमें देख रहा है. लेकिन अगर हमें पता ही ना चले कि कोई हमें देख रहा है तो हम लोग बहुत अच्छे से एक्टिंग कर लेते हैं. तो वी ऑल आर बॉर्न एक्टर्स, लेकिन उसे ट्रेनिंग के थ्रू हम लोग और शार्प कर सकते हैं. जैसे एक पेंटर होता है, अगर वो रोज पेंटिंग करे तो वो और अच्छी पेंटिंग बनाता है. तो ऐसे ही एक्टर है, अगर वो रोज एक्टिंग करे तो वो और बेहतर हो सकता है अपनी ट्रेनिंग से.
0: यानी ट्रेनिंग के आज के एक्टिंग की दुनिया में मायने हैं, वो आपको बेटर बना सकती है. अब मुझे ये बताइए कि आज टेलीविजन या फिल्मों में जो रोल्स आपको मिलते हैं अपने करियर के इस स्टेज पर, तो वो रोल किस तरह से आप चुनती हैं, या आपके मन में एक इमेज होती है कि मुझे इस तरह के रोल्स करने हैं, आपने तय कर रखा है कि इस तरह के रोल्स करना चाहती हूँ लेकिन आज उस तरह के सब्जेक्ट नहीं आ रहे हैं?
1: मैं बहुत ऑनेस्टली बताना चाहूंगी, अभी इस टाइम मुझे जो आ रहा है मैं कर रही हूँ, बिकॉज मुझे भी अभी सर्वाइव करना है बॉम्बे में. मेरे पास कोई ऐसे खजाना नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, तो हमें भी अभी बहुत पैसे चाहिए मेंटेनेंस के लिए. वैसे भी इस इंडस्ट्री में बहुत पैसा चाहिए, अपने ऊपर ही बहुत खर्चा होता है. तो फिलहाल अभी जो आ रहा है मैं ले रही हूँ, लेकिन आगे जाके मैं बहुत चूजी होने वाली हूँ कि चाहे एक दो साल में एक काम करूँ.
0: बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और आपने हमसे बातचीत की, बहुत धन्यवाद.
2: जानी मानी टीवी और फिल्म अभिनेत्री प्रकृति नौटियाल से यूनुस खान की बातचीत अभी आपने सुनी. प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई. इसी के साथ आज का इनसे मिलिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है.
3: इनसे मिलिए.

दोस्तों, हवामहल कार्यक्रम में आजकल आप सुन रहे हैं सुरेंद्र गुलाटी का लिखा नाटक यादों की परछाइयां। आइए आज सुनते हैं इस नाटक का चौथा और अंतिम भाग। निर्देशक हैं दीनानाथ।

0: डैडी से बात हुई?
1: डैडी घर पे नहीं थे, नीना ये बात पहले से ही जानती थी।
0: तो
1: बस नीना जो चाहती थी उसने पा लिया, हम लोग ऐसे ही मिलते रहे, लेकिन डैडी से कभी भी मुलाकात ना हो सकी। फिर नीना ने शादी का जिक्र भी छोड़ दिया। मुझे भी लगा मैं अब उसके लिए कोई खास कशिश नहीं रह गया हूँ, बस जैसे मिले थे वैसे ही अचानक मिलना जुलना बंद हो गया। वैसे कविता का ख्याल है हम दोनों को करीब लाने के लिए नीना ने सेक्रीफाइस की है, लेकिन अपनी उतरन किसी को दे देना दान तो हो सकता है, सेक्रीफाइस नहीं।
0: तो तुम्हें इस आदमी के साथ नीना को देखकर हैरानी क्यों है?
1: इसलिए भाई कि दौलत की जिसको कमी ना हो, खूबसूरती से प्यार करने वाली औरत आखिर इस किस्म के आदमी से शादी करे तो क्यों?
2: क्या पता उसके लंबे चौड़े अरेंजमेंट में ये आदमी महज एक ढाल हो। और
1: वो लोग इधर ही आ रहे हैं।
3: कॉन्फ्रेंस कर रही हो?
4: विक्की नीना आई है।
1: हेलो नीना।
3: हेलो विक्की, अच्छे तो हो?
1: फाइन थैंक यू।
3: इनसे मिलो, माय हस्बैंड मिस्टर लाल।
1: वेरी प्लीज टू मीट यू मिस्टर लाल। हाउ डू यू डू?
5: वेरी नाइस टू मीट यू मिस्टर लाल।
3: अच्छा भाई अब आप लोग बाहर चलिए, जैदा ने तो पूरा मुशायरा जमा रखा है।
6: हाँ, चले ना कभी।
1: आइए मिस्टर लाल,
5: शेर सुनकर आपकी तबीयत खुश हो जाएगी मिस्टर लाल।
1: चलिए आइए।

0: हो?
1: सिर्फ इतनी सी बात पूछने के लिए तुमने मुझे रोका था।
0: यूं ही मैं जानना चाहता था शादी के बाद तुम कैसा महसूस कर रही हो।
1: शादी के बाद जिंदगी बदल जाती है क्या?
0: लोग कहते हैं।
1: मुझे तो ऐसा नहीं लगा।
0: बहुत खुश हो?
1: बेहद। कौन किसी को क्या खुशी दे सकता है? खुशी तो अपने मन से होती है। वैसे मिस्टर डाल से मुझे सब कुछ मिल जाता है।
0: सब कुछ?
1: और अगर कहीं कमी रह जाती है तो आंखें बंद करके तुम्हें याद कर लेती। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आया? छोड़ो, और सुनाओ कीवी से कैसी निभ रही है?
0: कुछ समझ में नहीं आता। कीवी दिन पर दिन शक की और बेहद डोमिनेटिंग होती जा रही है।
1: क्योंकि वो तुम्हें अपना, सिर्फ अपना समझती है।
0: अपना समझने से तो एतबार बढ़ना चाहिए।
1: कोई दूसरा उसकी खुशी में शरीक ना हो, डर भी तो लगा रहता है।
0: जाने क्यों मुझे लगता है जैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए शायद नहीं बने।
1: तो क्या हुआ, शादी के बाद बन जाओगे?
0: और अगर ना बन सके तो?
1: तो आंखें बंद करके तुम उसके बारे में सोच लेना जिसके बारे में तुम्हारा ख्याल है कि वो बिल्कुल तुम्हारी अपनी।
0: दूसरे लफ्जों में जिंदगी भर हम एक दूसरे को धोखा देते रहे।
1: मैं इसे अरेंजमेंट कहती हूँ। इस जमाने में जिंदा रहने के लिए एक सूझबूझ के अरेंजमेंट की जरूरत भावनाओं से ज्यादा है। जिस रफ्तार से हम आगे ही आगे बढ़ रहे हैं वहाँ रुककर पीछे देखने वाला इंसान कुचला जाएगा। गुजरा हुआ हर मोमेंट मर चुका है, खत्म हो चुका है। विकी, जहाँ खड़े हो उसी को स्टार्ट मानकर नई दौड़ शुरू करो।
0: शायद तुम ठीक कहती हो।
1: कम से कम मैंने यही किया है और मेरा ख्याल है आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन।
0: लेकिन कीवी,
1: बिल्कुल परफेक्ट लड़की दुनिया में कोई है? कीवी में बहुत कुछ है। और फिर मत भूलो कि उसके बाप की क्या पोजीशन है।
0: मुझे उससे क्या लेना देना?
1: कीवी उनकी इकलौती बच्ची है।
0: लेकिन मुझे उसके रुपए पैसे से कोई मतलब नहीं।
1: ना सही, वो तुमको बेहद चाहती भी तो है। तुम क्या उसे पसंद नहीं करते?
0: ना करता होता तो इतना सभी क्यों?
1: सिर्फ इसलिए कि उसके पास पैसा है तुम उससे भागना क्यों चाहते हो?
0: मेरी कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं।
1: क्योंकि तुम वक्त की रफ्तार के साथ नहीं हो। विकी, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। वो तुम्हारे साथ नहीं लुढ़केगा, तुम्हें उसके साथ भागना होगा।
2: तुम लोगों की कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाए तो जरा बाहर आ जाना, सारा प्रोग्राम फीका पड़ रहा है।
0: नहीं नहीं, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है। आओ नीना, बाहर चले।
1: चलो। अरे भाई, मैं तो तुम्हारी ही वकालत कर रही थी कीवी।
2: लेकिन किसी को हमारी परवाह हो तभी तो।
0: कीवी, तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करती?
2: क्या समझूं, समझने को रखा ही क्या है। खुद ही ऐसी गलती कर रही हूँ, खुद ही इसे भुगतूंगी भी।
1: क्या बात है कीवी?
2: कुछ नहीं, कुछ भी नहीं।
0: कीवी, कीवी आखिर हुआ क्या है? तुम ये तो बताओ, तुम चाहती क्या हो?
1: बताओ ना कीवी, आखिर क्या चाहती हो?
2: तुमसे क्या छुपा है? अब तो सारा जमाना जान चुका है कि मैं क्या चाहती हूँ, किसे चाहती हूँ। लेकिन लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये
0: वो तुम्हें तो वहम हो गया है कीवी।
2: हाँ हाँ, मुझे ही वहम हो गया है। और तुम क्यों नहीं डैडी से बात करते हो? मम्मी बार बार मुझसे पूछती है, विकी ने प्रपोज किया, विकी कब प्रपोज करेगा, विकी के सारे कब तक बैठी रहोगी। फ्रेंड्स मिलती है तो किसी भी रिंग को देखकर टोंट करती है, कीवी ये तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग है। तब मेरा जी चाहता है मैं कहीं कूद कर जान दे दूं।
0: ओ कीवी, सुनो कीवी, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ। मेरे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि तुम्हारे पेरेंट्स को इतनी जल्दी है। मैं खुद बात करना चाहता था लेकिन मैं किसी अच्छे से मौके की तलाश में।
2: मौका मौका मौका, आज से अच्छा मौका और क्या हो सकता था? लेकिन तुमने जान बूझ कर देर से आए ताकि ये चांस अवॉइड कर सको।
0: चलो आज की बात छोड़ो कीवी, मैं जल्दी ही किसी रोज।
2: मैं जानती हूँ वो दिन कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा।
0: आएगा कीवी, आएगा।
2: आज ही क्यों नहीं?
0: आज बात ये है, वक्त नहीं रहा। देखो 7:30 बज रहे हैं और 8 बजे तक मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है।
2: मैं पहले ही जानती थी तुम जरूर कोई ना कोई बहाना ढूंढ निकालोगे।
0: सुनो तो सही
2: कीवी। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम जाना चाहती हो तो जाओ, मेरे कहने से कौन रुकता है?
0: ओफो, अब तुम ही बताओ नीना।
3: नीना डार्लिंग, अब इजाजत लो। याद है कुमार के यहाँ डिनर है?
1: यस डार्लिंग, आइए चले। अच्छा भाई विकी, गुड नाइट।
0: गुड नाइट नीना। गुड नाइट मिस्टर लाल।
3: कभी आइए मिलने।
0: जरूर जरूर। डार्लिंग,
4: तुम डार्लिंग कहते हो तो मुझे यूं महसूस होता है जैसे हम दोनों एक दूसरे से उकताए हुए पति पत्नी हैं। मुझे इस लफ्ज से सख्त बनावट की बू आती है।
5: अरे विकी, तुम यहाँ अकेले ही खड़े हो और वो भी अंधेरे में।
0: हाँ यार, तुम ही रोशनी कर दो।

0: अब क्या और रुकने का इरादा है या चलना है?
1: अरे भाई मुझे तो जाना है, 8 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है।
0: तो फिर चलो ना, 7:30 तो कभी के बज चुके हैं। आओ
2: हैंडसम, हमसे तो आज बात भी नहीं की।
1: कभी इतना बोर करूंगा मैडम कि कान पकड़ लोगी।
2: किसके?
1: अपने और किसके?
0: वेल सेड विकी।
2: चुप करो हार्टबीट।
1: ज़ाहिदा, कीवी कहाँ है?
2: लीजिए, वो हमसे पूछते हैं उनका दर्द दिल कहाँ है।
1: मजाक छोड़ो, मुझे जाना है भाई।
2: गेट पर होगी नीना को सी ऑफ करने के लिए।
0: तो चलो, चले मैं।
2: तुम भी जा रहे हो हार्टबीट?
3: तुम कहो तो रुक जाओ।
2: कहा
0: विकी, गुड नाइट। गुड नाइट, अपनी फ्लाइट अभी लेट है।
1: अच्छी बात है तुम्हारी किस्मत। गुड नाइट।
2: गुड नाइट हैंडसम।
1: गुड नाइट ज़ाहिदा।
2: जा रहे हो विक्की?
1: अरे भाई इतनी जल्दी?
4: मजबूरी है अंकल, मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर आ रहे हैं बॉम्बे से, 8 बजे फ्लाइट आनी है, एयरपोर्ट उनको रिसीव करने के लिए पहुंचना है।
5: फिर तो जरूर जाओ।
4: अच्छा केवी,
2: थैंक्स फॉर कमिंग।
4: गुड नाइट एवरीबॉडी।
5: गुड नाइट।
4: ये लड़कियां इतनी ना समझ क्यों होती हैं?
2: तारीफ तो तुम क्या करोगे, बस कदर ही कर लो, हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारी तरह के भूतों का खतरा होता है ना, न मिले तो सूना सूना लगता है, मिल जाए तो ऐसा जादू करते हैं कि घर बार फूल जाता है।
6: गुड इवनिंग सर।
7: गुड इवनिंग विक्रम, how are you?
6: Very fine sir, how was your journey?
7: Comfortable, very comfortable indeed.
6: Gaadi idhar hai sir, aapka saman?
7: Bas yahi handbag hai.
6: To aaiye chale, pehle hotel hi chale na?
7: No, pehle main kumars ke yahan dinner ke liye jana chahunga, wahan party se baat cheet karke hi hotel jaunga, hotel ko telephone wahi se kar denge.
6: Right sir.
7: विक्रम, तुम्हारी सेल्स की प्रोग्रेस अच्छी चल रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि तुम थोड़ी सी मेहनत और करो तो हम सेल्स को और बढ़ा सकते हैं।
6: यस सर, मैं कोशिश करूंगा।
7: आई डोंट बिलीव इन कोशिश विक्रम, ये होना ही चाहिए। मैं कल सुबह तुम्हें इसका तरीका बताऊंगा। विक्रम, तुम्हारा ऑफिस अभी भी कई मामलों में बहुत ढीला है, उसे टाइट करो विक्रम, टाइट, खूब टाइट करो।
6: यस सर।
7: मुझे सुस्त रफ्तारी बिल्कुल पसंद नहीं विक्रम, तुम गाड़ी बहुत स्लो ड्राइव करते हो।
6: सड़कें ठीक नहीं है।
7: सड़कें ठीक न होने से क्या होगा, गाड़ी जल्दी पुरानी हो जाएगी। अगर हिसाब लगाकर सोचो तो तुम समझोगे कि वक्त की कीमत गाड़ी की कीमत से ज्यादा है।
6: यस सर।
7: हमने एक बार एक पूरा डिपार्टमेंट खोला था जिसका काम सिर्फ यही था कि हिसाब लगाए और देखे कि किस काम में कितना वक्त लगता है।
8: फिर उस वक्त से हम आगे ही आगे भाग रहे हैं, वहां रुककर पीछे देखने वाला इंसान कुछ क्या जाएगा। विकी, जहां खड़े हो उसी को स्टार्ट मानकर नई दौड़ शुरू करो, नई दौड़ शुरू।
9: लेकिन सभी थोड़े तो रेस में बस नहीं
8: आए, और तुम फिर उसके पीछे भागते रहोगे, जीवन भर भागते रहोगे। विक्रम, ये दौड़ कभी खत्म नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, वो तुम्हारे साथ नहीं लुटकेगा, तुम्हें उसके साथ भागना होगा, भागना होगा।
9: मम्मी बार बार मुझसे पूछती है विक्की ने प्रपोज किया, विक्की कब प्रपोज करेगा, विक्की के सहारे कब तक बैठी रहोगी, कब तक बैठी रहोगी। मुझे खड़खड़ाते हुए कारखाने की तमन्ना नहीं, मैंने तो एक छोटे से पुरसुकून घर का सपना देखा है, पुरसुकून घर का सपना।
8: और इसी भावुकता में अंधे होकर हम ये भूल जाते हैं कि प्रेमिका और बीवी तो अलग अलग चीजें हैं। कमला इज हार्डली अ मैच फॉर यू, कमला इज हार्डली अ मैच फॉर यू।
9: ये शोर, ये हंगामा, ये कह-कह, इतनी भीड़ भाड़, क्या कोई इसलिए पार्टी अरेंज करता है कि खुद अकेले पन का शिकार होकर एक कोने में दुबका पल पल किसी के आने का इंतजार करता रहे, किसी के आने का इंतजार।
8: बहुत कुछ है, और मत भूलो कि उसके बाप की क्या पोजीशन है, मत भूलो कि उसके बाप की क्या पोजीशन है।
9: कई तरीके हैं लेकिन तुम जानबूझ कर, हटो हटो, देखो कोई आया है, देखो कोई आया है।
7: अरे ये क्या हुआ विक्रम, तुम रुक क्यों गए?
4: सामने ट्रैफिक लाइट में स्टॉप सिग्नल है।
7: ओ, देखा, ये भी वक्त के गलत इस्तेमाल की बात है। अगर इंसान सही वक्त पर स्टार्ट करे तो तमाम ट्रैफिक लाइट्स ठीक मिले। गो, चलो।
4: यस सर।
7: और अब तेज चलो, फास्टर विक्रम, फास्टर।
4: यस सर।
8: विक्रम, ये दौड़ कभी खत्म नहीं होगी।

0: भी खत्म न होगी कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, वो तुम्हारे साथ नहीं लुढ़केगा, तुम्हें उसके साथ भागना होगा।
1: मम्मी बार बार मुझसे पूछती है विक्की ने प्रपोज किया, विक्की कब प्रपोज करेगा, विक्की के सहारे कब तक बैठी रहोगी, कब तक बैठी रहोगी।
2: विक्रम आई से फास्टर।

0: क्या हुआ विक्रम, तुम अचानक रुक क्यों गए? तुमने तो गाड़ी भी बंद कर दी।
1: यस सर।
0: अरे क्या हुआ, तुम परेशान से दिखाई देते हो।
1: सर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ, सर हाँ। मैं शादी करवा रहा
0: हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। कहाँ?
1: कविता।
0: कविता
1: स्ट्रॉन्ग टायर्स वाले मिस्टर गिडवानी की लड़की।
0: ओह स्ट्रॉन्ग टायर्स, गुड गुड वेरी गुड मैच विक्रम, कंग्रेचुलेशन।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।
2: गाड़ी फिर से स्टार्ट करो वरना देर हो जाएगी।
1: यस सर, यस सर।

यादों की परछाइयां। इस नाटक का अभी आपने चौथा और अंतिम भाग सुना। लेखक सुरेंद्र गुलाटी और निर्देशक दीनानाथ। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं प्रीति शर्मा के साथ। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है फिल्म केदारनाथ से। इसे गाया है अरिजीत सिंह ने, गीत अमिताभ भट्टाचार्य का, संगीत अमित त्रिवेदी का।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: ये FM सेंसिटी है FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 8:45 होने को हैं। समाचार संध्या और न्यूज़ एट 9 अब सुनिएगा दिल्ली केंद्र से।
1: मैं लवलीन निकम। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
3: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देबराय को पार्टी के प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष

किया है। श्री अभिषेक देबरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साह ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देबरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थगंडी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: अभियान निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते टीबी रोगी व परिजन को पोषण जांच इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है आपको जानकर हैरानी होगी हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है हर फैसले से पहले एक सवाल क्या मैं तैयार हूँ अगर जवाब है हाँ तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे
4: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए शहरी आवास योजना के मकान अलग है उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं तो राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें
3: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई कोयला खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के

नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिरला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिरला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज छठे दिन भी संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस क्षेत्र में छिपे होने की आशंका है। छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर गोलीबारी की गई। आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
2: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
3: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई जब मशहूर शायर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। 15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र की गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों की नजाकत और इंसानी जज्बात की गहरी झलक दिखाई देती है।
2: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
3: जी हाँ, ऐसे ही कालजई अशरार ने उन्हें करोड़ों दिलों तक पहुंचाया। उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। उर्दू अदब की ये आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।
2: अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे।
1: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35-37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23-25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
4: जो हीटवेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण पश्चिम भारत के क्षेत्रों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का

0: कंडीशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है, और नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूरी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीट वेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया है।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निम्हान ने श्योक मेहिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

कानूनी सहायता टेलीलॉके ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4454 से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: धन गणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसी बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

0: के फनकार कार्यक्रम में सभी दोस्तों को यूनुस खान का नमस्कार। आज उस फिल्मकार की कहानी जिसकी फिल्में इस शेर के साथ शुरू होती है।
1: मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।
0: बहुत बरस पहले की बात है, गुजरात में बड़ौदा के पास एक गांव में एक गरीब परिवार में एक लड़का रहता था। उस लड़के को फिल्मों का ऐसा शौक था कि बड़ौदा से निकलने वाली किसी ट्रेन में सवार हो जाता और आसपास के गांव या कस्बे में पहुंच जाता, लाइन से एक दो फिल्में देखता और लौटती ट्रेन से चुपचाप वापस आ जाता। किसी को कुछ पता नहीं चलता। घर वाले ये सोचते कि ये लड़का यहाँ वहाँ भटकता रहता है, जाने किन किन के साथ खेलता रहता है। ऐसे ही एक दिन वो ट्रेन में बैठा, मुंबई की तरफ जाने के लिए इरादा ये था कि वो कभी वापस नहीं आएगा। पिताजी को पता चल गया, पिताजी ने जमकर कुटुम्बस की और वापस ले आए। आज के फनकार कार्यक्रम में आज रोचक दास्तान महबूब खान।

महबूब खान का जन्म 9 सितंबर 1906 को बड़ौदा के पास सरार गांव में हुआ था। बहुत सामान्य सा परिवार था, छोटा मोटा काम था, बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, जिंदगी खुशनुमा थी। जैसा कि हमने आपको बताया, महबूब खान की बचपन की जिंदगी में ट्रेनें चला करती थीं और उन ट्रेनों पर सवार होकर वो आसपास जाते, फिल्में देखते और वापस लौट आते। जहन में बस ये चलता रहता कि किसी तरह से वो खुद को पर्दे पर देख पाए, शौक अभिनय करने का था। तो भाई ये सिलसिला जारी रहा। पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी थी नहीं, इसलिए कायदे से पढ़ाई लिखाई हो न सकी और फिर हुआ यूं कि आसपास के शहरों में फिल्में देखना होता रहा। समय बीतता गया। हुआ यूं कि महबूब खान की दोस्ती एक रेलवे गार्ड से हो गई थी और उस रेलवे गार्ड ने उनको पूरी तरह से यकीन दिला लिया कि उनके भीतर फिल्मी पर्दे पर अभिनेता बनने के गुण हैं और उन्हें भाग जाना चाहिए मुंबई। हुआ यही, 16 बरस की उम्र में महबूब खान मुंबई भाग आए और सिनेमा में अपना नसीब आजमाने लगे। कांस्टेबल पिता को पता चल गया, वो सीधे मुंबई आए, अपने बेटे को ढूंढा, उसका कान पकड़ा और उसको वापस बड़ौदा ले गए। वहां जबरदस्ती महबूब खान की शादी कर दी गई, ये सोचकर कि वो बस यहां बंध जाएंगे और सिनेमा के अपने जुनून को जहन से निकालकर फेंक देंगे। बहुत जल्दी महबूब खान एक बेटे के पिता भी बन गए, लेकिन जिम्मेदारी नहीं आनी थी सो नहीं आई और आखिरकार महबूब खान ट्रेन में सवार होकर आ पहुंचे

मुंबई में महबूब खान उस जमाने के वीटी स्टेशन के पास ज्योति स्टूडियोज के बाहर खड़े रहते और इस फिराक में रहते कि किसी तरह से स्टूडियो में घुसने का मौका मिल जाए, बाकी का काम वो निपट लेंगे और किसी तरह से अभिनेता तो बन ही जाएंगे। लेकिन ये हो नहीं रहा था। दिन पर दिन बीत रहे थे, महबूब खान रातें प्लेटफॉर्म पर सोते हुए गुजारते, तरह तरह की परेशानियां होती। वो हौसला नहीं हारते, हर सुबह ज्योति स्टूडियोज के सामने खड़े हो जाते। एक दिन गार्ड सचमुच इम्प्रेस हो गया और उसने महबूब खान की मुलाकात करवाई आर्दशीर ईरानी से, जो उन दिनों भारत की पहली बोलती फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ से महबूब खान की गाड़ी चल पड़ी क्योंकि आर्दशीर ईरानी ने उन्हें बतौर एक्स्ट्रा काम दिया। सन 1927 में ये फिल्म थी अली बाबा और 40 चोर। इसके बाद वो क्राउड का हिस्सा बनते रहे, फिर जूनियर आर्टिस्ट बने, फिर सपोर्टिंग रोल्स मिलते रहे और फिर ऐसा मौका आया जब भारत की पहली बोलती फिल्म के हीरो के तौर पर आर्दशीर ईरानी ने महबूब खान को बस चुन ही लिया था। लेकिन फिल्मों में पैसा लगाने वाले और तब के विशेषज्ञ ये मानते थे कि ऐसे लड़के पर दांव नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि बोलती हुई फिल्में बनाना अपने आप में एक बड़ा दांव है। महबूब खान को इस रोल से हटा दिया गया। वहीं उन्हें समझ में आ गया कि अभिनय में वो कुछ ज्यादा तीर नहीं मार पाएंगे, उन्हें जिंदगी में कुछ और करना चाहिए। यहाँ से एक नया जुनून शुरू हुआ, अपनी एक स्क्रिप्ट लिखने और उसका निर्देशन करने का। उन्होंने आखिरकार अपनी एक स्क्रिप्ट पूरी की और अलग अलग स्टूडियोज के चक्कर फिर से काटने लगे। प्रोड्यूसर्स उनकी कहानी सुनते, उन पर हंसते और उन्हें दरवाजा दिखा देते। आखिरकार सन 1935 में एक प्रोड्यूसर को उनकी कहानी पसंद आई और तब आई महबूब खान की निर्देशित पहली फिल्म अल हिलाल। ये फिल्म सीसिल बी डिमेलो की जानी मानी फिल्म साइन ऑफ द क्रॉस से प्रेरित थी। फिल्म चल पड़ी और महबूब खान की गाड़ी भी चल पड़ी। लगभग यही दौर था जब चिमनलाल देसाई के सागर मूवी टोन में महबूब खान बतौर विलेन काम करते थे और अच्छे खासे पैसे बना रहे थे। इसी दौरान सागर मूवी टोन ने उन्हें निर्देशन का मौका दिया। सन 1936 में महबूब खान ने डेक्कन क्वीन फिल्म बनाई। सन 1939 में आई एक ही रास्ता। सन 1940 में अली बाबा। सागर मूवी टोन के लिए उन्होंने सन 1940 में बनाई अपनी फिल्म औरत।

इसके बाद महबूब खान सागर मूवी टोन और नेशनल स्टूडियोज की फिल्मों का निर्देशन करते रहे। सन 1940 में आई फिल्म औरत महबूब खान के करियर की एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। सन 1942 में महबूब खान ने बनाई फिल्म रोटी और उसके बाद फिल्म नजमा का निर्देशन किया। ये फिल्म साल 1943 में आई थी। इसके बाद उन्होंने तकदीर और हुमायूं जैसी फिल्में बनाई। सन 1946 महबूब खान के निर्देशन में आई फिल्म अनमोल घड़ी।

अनमोल घड़ी के कलाकार थे नूरजहां, सुरैया और सुरेंद्र। इस फिल्म के गाने तनवीर नकवी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था। 11 नवंबर 1946 को रिलीज की गई

1949 महबूब खान के करियर की एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म आई अंदाज। कलाकार थे दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर फरीदुन ईरानी थे। 26 अगस्त 1949 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। ये फिल्म एक प्रेम त्रिकोण थी। इसके गाने मजरूर सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था।

सन 1952 महबूब खान लेकर आए अपनी बेमिसाल फिल्म आन। इसके कलाकार थे दिलीप कुमार, निम्मी, प्रेमनाथ और नादिरा। संगीत नौशाद का था। ये फिल्म 4 जुलाई 1952 को रिलीज की गई थी।

सन 1954 महबूब खान की फिल्म आई अमर। 1 अक्टूबर 1954 को रिलीज इस फिल्म के कलाकार थे दिलीप कुमार, मधुबाला और निम्मी। संगीत

ऐसा कलाकार जिसने अपनी यात्रा बतौर स्पॉट बॉय शुरू की हो और जिसके जहन में हो अनमोल ऊंचाइयों को छूने के सपने, उस कलाकार ने मुंबई फिल्म उद्योग को दिया हॉलीवुड स्टाइल का पहला फिल्म स्टूडियो महबूब स्टूडियोज। महबूब स्टूडियोज का आगाज सन 1952 में हुआ। मुंबई के बांद्रा में स्थित इस स्टूडियोज में आज भी फिल्मों की शूटिंग की जाती है।

भारत के इतिहास में 1957 का अक्टूबर महीना बड़ा मायने रखता है। इसी साल 3 अक्टूबर को यानी 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती अस्तित्व में आई थी और विविध भारती पर प्रसारण शुरू होने के कुल 23 दिन बाद रिलीज हुई थी महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया। रिलीज डेट है 25 अक्टूबर 1957। भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक कालजयी फिल्म। कलाकार नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार। दिलचस्प बात ये कि ये फिल्म महबूब खान की ही 1940 में आई फिल्म औरत का रीमेक थी। इस फिल्म की पटकथा और संवाद एस अली रजा, वजाहत मिर्जा और महबूब खान ने मिलकर लिखे थे। संगीत नौशाद का था, गीत शकील बदायूनी के। मदर इंडिया भारत की एक बेमिसाल फेमिनिस्ट फिल्म। महबूब खान एक स्त्रीवादी फिल्मकार माने जाते हैं, एक ऐसे फिल्मकार जो महिलाओं के पक्ष में खड़े नजर आते हैं, चाहे उनकी फिल्म आन हो, अमर हो, मदर इंडिया हो या औरत। सशक्त नायिकाओं की भूमिकाओं वाली ये फिल्में सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद की जाएंगी। मदर इंडिया को तो एकेडमी अवार्ड्स के लिए शॉर्ट लिस्ट भी किया गया था। ये अलग बात है कि ये फिल्म पुरस्कार जीत नहीं पाई, लेकिन विश्व स्तर पर जितना हंगामा मदर इंडिया ने उस जमाने में किया शायद ही किसी फिल्म ने किया होगा। कुछ गानों की झलक।

मदर इंडिया जैसी बड़ी लकीर खींचने के बाद महबूब खान ने ज्यादा फिल्में नहीं बनाई। सन 1962 में आई उनकी निर्देशित फिल्म सन ऑफ इंडिया।

एक फिल्मकार जिसे अभी और आसमान छूने थे, जिसे कामयाबी की और बुलंदियां छूनी थी, जिसके सहन में सपनों की फसल लहलहा रही थी, लेकिन वक्त ने उसकी रफ्तार को रोक लिया। 28 मई 1964 को सिर्फ 56 बरस की उम्र में महबूब खान ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। रह गया महबूब खान का सिनेमा और सिनेमा की महबूब खान की विरासत महबूब स्टूडियोज। आज भी महबूब खान को अपने समय से आगे का फिल्मकार माना जाता है। महबूब खान के सम्मान में भारत सरकार ने एक पोस्टल स्टैंप जारी किया था, जो डाक टिकट के संग्रहकर्ताओं के लिए एक अनमोल विरासत है। महान फिल्मकार महबूब खान को हमारा

0: ये फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था फिल्मकार महबूब खान पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती देश की सुरीली धड़कन छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती पेस्ट।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

इंतजार भी अजीब शय है, हर पल दिल उनके हुजूर ही रहता है। खास कुछ बेताबियों के निशा देखे कहीं कहीं हमने, है चांदनी के शरारों सा शफाक हुस्न उनका। कलियों की सादगी कांधों पे करवटें लेती जुल्फें, लबों पे मुस्कुराहट, तो भला फिर ऐसी तस्वीर कहाँ।

जब जब पुकारा है, बात क्या चाहिए, सब कुछ मोहब्बत पे वारा है। ये ख्वाब नहीं अफसाना, ये हकीकत है। दो घड़ी मिल बैठे, चांद से आंखें मिलाएं, चलो कुछ देर के लिए दुनिया से जुदा हो जाएं।

खूबसूरती से इस वक्त आप सुन रहे हैं छाया गीत। छाया गीत कार्यक्रम के कुछ और नगमे आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। ये खुशबू ए नसीम, ये सितारों की रोशनी, ये शबनम के कतरे, ये फूलों की बहारें हैं फिजाओं में, ये नजारे जैसे चनार के पत्तों पे लिखी मोहब्बत की कोई इबारत हो। क्या जानिए क्या दिल का हाल होता है, बूंद जब लरसती है बादलों की घटाओं से।
1: न झटको जुल्फ से।

ये कश्मकश, ये उलझने बहुत मुश्किल है, ये दुनिया की रवायतें बहुत मुश्किल है, दिल का मामला है हरफों में कब बयां होता है, ये जिगर का तीर है मुश्किल से निकलेगा, जहाँ भी साथ

ये कश्मकश ये उलझने बहुत मुश्किल है, ये दुनिया की रवायतें बहुत मुश्किल है, दिल का मामला है हरफों में कब बयां होता है, ये जिगर का तीर है मुश्किल से निकलेगा, जहां भी साथ निकलेगी अगर ये दिल से निकलेगा।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: 39 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साह ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य और संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच

का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। हांगकांग में आज से शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। 4 दिवसीय ये चैंपियनशिप 31 मई को संपन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।